इसको सीखना यानी कि हम उसको बहुत ही तल्लीनता से देखते हैं, हम बिल्कुल उसको समझने लगते हैं। समझ के सीखना और अनुभव करके सीखना दोनों में बहुत ही अंतर है। तो इसी प्रकार आज अनुभव भुजंग आसन जो हम आपको हम सभी मिलकर के करने वाले हैं वो है अनुभव भुजंग आसन। जीवन में अनुभव का क्या महत्व है हम उसे भी जान लेते हैं और उसके बाद हम सीधे करेंगे भुजंग आसन। हमारे अनुभव हमें सीखने, समझने और स्वयं को समृद्ध करने का मौका देते हैं। वे हमें एक संवेदनशीलता और आत्म परिवर्तन की गहरी अनुभूति प्रदान करते हैं। अनुभवों को महसूस करना हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने में मदद करता है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो विशेषकर अनुभव चार भेद हैं: सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो ज्ञान और अनुभव। ज्ञान और अनुभव के बारे में हम सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि अनुभवों द्वारा प्राप्त वैवाहिक ज्ञान से संबंधित है। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन में जितने अधिक तथा जितने व्यापक अनुभव होते जाते हैं उनका अनुभव अधिगम का क्षेत्र उतना ही व्यापक होता चला जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं अनुभव भुजंग आसन। सबसे पहले हम जान लेंगे कि भुजंग आसन है क्या। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंग आसन या सर्पासन यानी कि संस्कृत में भुजंग आसन कहा जाता है। भुजंग आसन सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में से सातवें नंबर आने वाला एक आसन है। भुजंग आसन में भुजंग का अर्थ होता है सांप और आसन का अर्थ होता है योग मुद्रा। तो ये है भुजंग आसन का अर्थ, यानी कि एक सांप की तरीके से आकृति जिसे हम कोबरा आसन भी कहते हैं। कोबरा आसन जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह एक सांप का नाम है कोबरा, और कोबरा जिस तरीके से अपना फन फैलाता है और उसकी लंबी पूंछ होती है गर्दन ऊपर, ठीक उसी तरीके से इस आसन का आकार भी कुछ सांप की आकृति की तरह होता है। परंतु हम आपको बता दें यह आसन करने से आपके संपूर्ण शरीर पैर से लेकर के बालों तक पूरे आसन को हम बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं भुजंग आसन की विधि पर। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले आपको एक योगा मैट पर आराम से बैठ जाना है, यानी कि किसी चटाई या योगा मैट पे या कोई साफ सुथरी चद्दर पर आप बैठ जाएं। अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन करने से पहले आप अपने मन की सारी वृत्तियों को एकाग्रचित होकर के बिल्कुल आसन को करने से पहले शांत हो जाएं, ताकि आप जिस आसन को करने जा रहे हैं उसका संपूर्ण लाभ आपको मिल सके। तत्पश्चात हम किसी भी आसन को जब करते हैं तो हमें उसका लाभ दुगना मिल जाता है। भुजंग आसन करने से पहले हमें पूर्णतः 2 से 2.5 मिनट तक ओम का उच्चारण और आराम से एक शांत वातावरण में बैठ जाना है, कुछ इस तरह। लंबी गहरी सांस लेने के बाद में हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।

ठीक इसी तरीके से दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करने के बाद में हम सीधे अब अपने योग अभ्यास की ओर चलेंगे, यानी कि भुजंगासन की ओर। भुजंगासन करने के लिए आपको सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। अपने दोनों पैरों के अंगूठों और एड़ियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को सीने के सामने जमीन पर रख दें। अब श्वास लेते हुए हथेलियों पर दबाव डालें और सिर, छाती, नाभि तक पेट को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में आसमान की तरफ देखें, यानी कि गर्दन को ऊपर उठाते हुए, और गर्दन को सीधा रखें।

भुजंगासन करने के लिए जैसा कि बताया है कि सबसे पहले हम किसी मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद में हम सीधे अपने हाथों को पीठ के पास रख देंगे ताकि हम ऊपर उठ सकें। पैरों को दोनों बराबर स्थिति में हाथों की सहायता से ऊपर उठते हुए पैर बिल्कुल सीधे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आकार यानी चंद्र आकार की तरह हो जाएगी। मध्यम गति से श्वास को लेते हुए मध्यम गति से श्वास को छोड़ें। भुजंग आसन कितनी देर करना चाहिए? शरीर को इस स्थिति में करीब 15 से 30 सेकंड तक रखें और श्वास की गति सामान्य बनाए रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका पेट फर्श की तरह दब रहा है और लगातार अभ्यास के बाद आप इस आसन को 2 मिनट तक भी कर सकते हैं। भुजंग आसन में कितने कदम होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ भुजंग आसन के चरणों के साथ एक मार्गदर्शिका भी दी गई है जो आपको कोबरा मुद्रा करने का तरीका सीखने में मदद करेगी। पहला, पहले पेट के बल लेट जाएं और माथे को जमीन पर टिकाएं। अपने पैर की उंगलियों को एक साथ रखें और अपने पैरों के तलवों को ऊपर की ओर रखें। भुजंग आसन को हम जिस भी तरीके से कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। भुजंग आसन करने से हाइट भी बढ़ती है, यह एक बहुत ही बड़ा उपचार है। आइए अब हम जान लेते हैं भुजंग आसन करने के लाभ और सावधानियां। तो सबसे पहले हम लाभ जानेंगे। योग और आयुर्वेदिक का जन्म भारत में हुआ, यहीं से इनका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता चला गया। योग और आयुर्वेद दोनों विद्याओं को मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति में उगने वाली जड़ी बूटियों से खुद को स्वस्थ बनाने के लिए मानव ने आयुर्वेद का निर्माण किया, जबकि विभिन्न पशु पक्षियों की मुद्राओं से सीखकर मनुष्य ने योग विद्या भी रचना की। योग और आयुर्वेदिक सिर्फ मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं, वे सरल जीवन जीने का सही तरीका भी बताते हैं। जिस तरीके से मानव ने विभिन्न पशु पक्षियों की मुद्राओं से सीखकर योग सीखा, उसी में एक मुद्रा आती है भुजंगासन, जो कि एक बहुत ही, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि खतरनाक पशु यानी कि कोबरा सांप की स्थिति से लेकर के हमने योग विद्या में उसे भी सीख लिया। तो है ना बढ़िया बात कि एक सांप की स्थिति को भी हम लोगों ने एक योग के माध्यम से आकृति का रूप दे दिया। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं कि भुजंग आसन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लें। जैसा कि बताया कि सूर्य नमस्कार के 12 आसनों में 8वां भुजंग आसन है, जो कि सर्पासन, कोबरा आसन या सर्प मुद्रा का भी कहा जाता है। भुजंग आसन का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। भुजंग आसन करने के वक्त कम से कम 4 से 6 घंटे पहले किया जाना चाहिए। इससे हमारे पेट में गए भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। पचे हुए भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से आपको आसन करने में आसानी होती है। भुजंग आसन के अभ्यास का सबसे सही समय सुबह का होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह इस आसन को नहीं कर पाते हैं तो आप इस आसन का अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बता देते हैं सावधानियां। भुजंग आसन का अभ्यास तभी करना चाहिए जब आपको ये सारी चीजें आपके शरीर में ना हो। हर्निया, पीठ में चोट, कानल टनल, सिर दर्द, पेट के निचले हिस्से में सर्जरी, अगर आपको नया नया आसन का अभ्यास करना शुरू किया है तो आपको इस आसन को पूरी करने के लिए अच्छे से कोशिश करनी चाहिए और बड़े ही आराम से करना चाहिए। आपकी कमर और गर्दन में दर्द अगर शुरू हो जाए तो इस आसन को ना करें। आसन के दौरान अपनी हाइट उतनी ही रखें जो आपको सूट करे। फिर से तय कर लें कि उतना ही आसन करें जितने में आपको कमर में और गर्दन में दर्द शुरू ना हो जाए। आइए अब हम इसके फायदे बता देते हैं, यानी अनुभव भुजंग आसन के फायदे। रीढ़ की हड्डी में मजबूती और लचीलापन बढ़ता है। पेट के निचले हिस्से में मौजूद सभी अंगों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। पाचन तंत्र, मूत्र मार्ग की समस्याएं दूर होती हैं।
वजन को कम करने में मदद मिलती है। कमर का निचला हिस्सा मजबूत बनाया जा सकता है। फेफड़ों, कंधों, सीने और पेट के निचले हिस्से को अच्छा सा खिंचाव मिलता है, जिसके कारण से यह स्वस्थ रहते हैं। टेंशन दूर होती है। डिप्रेशन में भी इसका फायदा मिल सकता है। फेफड़ों और हार्ट की नसों के ब्लॉकेज खोलने में भी यह काफी मदद मिलता है। तो भुजंगासन योग विज्ञान के सबसे विविधपूर्ण आसनों में से एक है, इसीलिए ये योग मुद्रा इतनी महत्वपूर्ण बताई गई है। बहुत सारे फायदे बताए गए हैं और साथ ही साथ हमारे पाचन और प्रजनन तंत्र को भी मजबूत करता है। तो देखा आपने, हम सभी मिलकर के आज जो कि प्राणायाम और आसन हम लोगों ने किया वह है अनुभव भुजंगासन। तो इसी तरीके से हम कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द, एक नए आसन के साथ में। तब तक दोस्तों, करें योग, रहें निरोग।

नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, योग की योग पाठशाला के 8 दिवसीय शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। और 8 दिवसीय योगशाला में रोज सवेरे उठ करके जुड़ने से और करने से आपको लाभ भी मिल रहा होगा। आज 8वां दिन यानी कि शिविर का अंतिम दिन। आज के दिन यानी कि हम आज के 8वें दिन पे 8 मुख्य प्राणायामों में से जो आखिरी प्राणायाम है वो है अनुपम उद्गीत प्राणायाम। आज हम बताएंगे कि उद्गीत प्राणायाम अनुपम कैसे बना। अनुपम का अर्थ होता है उपमा रहित, सर्वोत्तम, बेजोड़, यानी कि जिसका कोई जोड़ नहीं होता है। अनुपम एक भारतीय पुल्लिंग नाम है जिसका संस्कृत में अर्थ अतुल्य, उत्कृष्ट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि अतुल्य क्यों? क्योंकि जिसकी कोई तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। ठीक वैसे ही उद्गीत प्राणायाम की भी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, इसीलिए इसका नाम अनुपम उद्गीत रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि अनुपम का क्या अर्थ होता है और विस्तार से। आपको बता दें कि अनुपम का अर्थ अतुल्य, कीमती, अद्वितीय होता है। अतुल्य कीमती यानी कि जिसका कोई मोल नहीं और सबसे अच्छा माना जाता है, और इसकी झलक अनुपमा नाम के लोगों में दिखाई देती है। अनुपम क्या है या अनुपम किस तरीके से हम इसका नाम के अर्थ को जान सकते हैं? तो आइए हम बताते हैं कि उद्गीत प्राणायाम में हम अनुपम नाम शब्द क्यों जोड़ा गया। अनुपम जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया अतुल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसकी तुलना किसी और प्राणायाम से की ही नहीं जा सकती है। तुलना मात्र से ही याद आया कि यदि हम किसी भी प्राणायाम को किसी और की तुलना से करते हैं तो हर एक प्राणायाम अपने आप में अतुल्य है। ठीक वैसे ही शिविर के 8वें दिवस में आज अनुपम उद्गीत प्राणायाम की हम आपके साथ में करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं उद्गीत प्राणायाम करने के लिए? स्वच्छ वातावरण में साफ जगह पर बैठ जाएं और वातावरण को और पवित्र करने के लिए एक सुगंधित वातावरण को बनाएं। यानी कि आप एक साफ सुथरी जगह पर बैठ करके आप एक अगरबत्ती या धूप को भी जला सकते हैं, जिससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो आइए हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को ओमकारी नाम भी यानी कि ओमकारी जप भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही सरल प्रकार का प्राणायाम ध्यान अभ्यास है। जो व्यक्ति सुबह उठकर हर रोज उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करता है वह कई शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों का आनंद पाता है। यह आपको चिंता, अपराध बोध, नाराजगी, उदासी और भय से निपटने में सहायता प्रदान करता है। सबसे अच्छा प्राणायाम यह क्यों है, आइए हम आपको बताते हैं। इसके नियमित अभ्यास से स्ट्रेस दूर होता है और साथ ही साथ आपका मन भी शांत होता है। उद्गीत प्राणायाम के बारे में हम और भी जानकारी से जानेंगे। उद्गीत प्राणायाम दूसरे प्राणायामों के प्रकार से हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले आप किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करके उंगलियों की सहायता से मुद्रा बनाएं, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम का गुंजन, तत्पश्चात श्वास की गति को मध्यम करते हुए श्वास को छोड़ें और श्वास को लें। ठीक इसी प्रकार जब आप श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे तो साथ ही साथ यानी कि मन में आंतरिक गतिविधियों के साथ में ओम का उच्चारण चलता रहेगा। यदि आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भवरे का गुंजन या फिर हम किसी भी ऐसे नाम को जो श्रुति से जोड़ करके आपकी अंतर आत्मा के साथ में जुड़ करके चलता रहे, कोई भी हम नाम ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह जान लें कि इस प्रकार के गुंजन से हमारी आंतरिक जितनी भी गतिविधियां हैं वह शांत होती हैं। तो आइए अब आगे जानेंगे उद्गीत प्राणायाम के फायदे। इस प्राणायाम के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। यह प्राणायाम मुख्य उद्देश्य जिसका है शरीर में ऊर्जा वहन करने के साथ मुख्य स्रोतों को शुद्धिकरण करता है, अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है। साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है, यह कफ विकार को भी कम करता है। यह प्राणायाम कितने समय तक करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। जानबूझकर श्वास को अंदर नहीं लेना है, मध्यम गति और मध्यम तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए भी श्वास को लेना है। यह रोज कम से कम 5 मिनट
से लेकर के आप 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप 2 से 2.5 मिनट ही कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से ना तो कोई नुकसान है और ना ही कोई होने वाली कोई चिंता, इसीलिए आप इस प्राणायाम को आराम से किसी भी समय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। अनुपम उद्गीत प्राणायाम जो है वह सभी वर्ग के लोगों को करना चाहिए, खास करके विद्यार्थियों को तो बिल्कुल विशेष तौर पर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह प्राणायाम उतना ही अच्छा है जितना कि किसी भी छोटे बच्चों से लेकर के किसी भी स्तर पर जाने के लोगों के लिए है। तो आइए हम आज 8 दिवसीय योग के शिविर में अनुपम उद्गीत प्राणायाम को किया और साथ ही साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि 8 दिवसीय रोज सवेरे आकर के आप हमारे इस शिविर में जुड़े और आपने लाभ प्राप्त किया। इसी तरह दोस्तों आगे फिर से शिविर में आएंगे और तब तक के लिए आप अपने जो भी फीडबैक हैं, कुछ प्रश्न हैं, जरूर से सवेरे 8 करके योगशाला में 6 से 7 आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिसका निवारण और उत्तर हम देंगे। तो दोस्तों बस इतना ही, शिविर में करें योग, रहें निरोग।

नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, आज समता और आपकी योग की योगिनी समता योग शिविर लेकर के आज आपके समक्ष आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग शिविर जब हम बिना देखे हुए कैसे करेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आप सभी को शिविर के माध्यम से बताएंगे कि हमारा एक एक प्राणायाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये 8 दिवसीय योगा शिविर में आप सभी का योगिनी समता स्वागत करती है। ये 8 दिवसीय योग शिविर कैसे है मैं आपको बता दूं। प्रथम दिवसीय योग शिविर में हम आज आपको बताने वाले हैं अनुलोम विलोम के बारे में, लेकिन अनुलोम विलोम के बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक नया नाम, जैसा कि अद्भुत अनुलोम विलोम। अब आप सोचने वाले हैं कि ये अद्भुत अनुलोम क्यों हुआ, अद्भुत चीज क्यों होती है। कोई अद्भुत चीज असामान्य, अद्भुत और लगभग चमत्कारी होती है। किसी भी मानक के हिसाब से सोने का बैग ढूंढना अद्भुत होगा, लेकिन कोई चीज जो अच्छी हो या बस अच्छी हो वह अद्भुत नहीं होती। वह अद्भुत चीज को वास्तव में आश्चर्यजनक, असाधारण या विश्वास करना कठिन हो पाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यह अद्भुत है। ठीक वैसे ही हम आज आपको बता रहे हैं कि अद्भुत क्यों अद्भुत है। आपने अभी अभी सुना कि कोई चीज जब असामान्य होती है या अद्भुत होती है, या मान लेते हैं कि लगभग चमत्कारिक होती है, ठीक वैसे ही आज हमने नाम दिया है अनुलोम विलोम को अद्भुत अनुलोम विलोम। यह वैसे ही इतना ज्यादा चमत्कारिक और अद्भुत है जैसे कि हम अपने शरीर में एक अपूर्ण अंग, यानी कि जो कि हम चाहते हैं कि हम उसे पूर्ण करना, पर वो हमसे हो नहीं पाता है। अद्भुत यानी कि सबसे पूर्ण होने वाली एक प्रक्रिया। तो आज हम जानेंगे कि अनुलोम विलोम अद्भुत क्यों है। अद्भुत अनुलोम विलोम में ऐसी क्या बातें हैं जो कि करने से वाकई में अनुलोम विलोम एक अद्भुत माना गया है। अद्भुत यानी असामान्य, यानी सामान्य से कहीं परे। आपने अपने आप से प्यार करना है तो अद्भुत अनुलोम से जुड़े, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से जुड़े। और आगे हम बताने जा रहे हैं आपको कि अद्भुत अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। योगा मैट या चटाई या कोई साफ चद्दर को जमीन पर बिछा लें। उसके बाद में आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। चित्त प्रसन्न और एकांत अवस्था में आपको योगासन करना है। कोशिश करें दोस्तों कि अगर हम योग अभ्यास सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभ और इसका जो परिणाम होता है वह दुगना होता है। योग अभ्यास करते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम योग अभ्यास का जो लाभ है उसके बारे में अपने मन में, अपने चित्त में एक बार जरूर से बैठा लें कि इसका लाभ हमें दुगना मिलता है। आइए अनुलोम विलोम के बारे में मैं बताऊं आपको कि हमें कैसे करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाएं नाक के छिद्र से बाहर श्वास को निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से श्वास को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगीगण नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को साथ में करते हैं। इसमें आपको

गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, ए

सब जानता है, वो सब देख रहा है, और जब अपने किसी को ठगता है तो भूल जाता है कि ऊपर बैठा ये भी देख रहा है। कितना भी छिपा लीजिए, साधक कहता है,

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

हायो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9186 9276, 9260 9817 9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: मिठी चाशनी।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: वाह क्या बात है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल आइए, आज वक्त है फ्राइडे स्पेशल। सो आज का थॉट भी वैसा ही होने वाला है। वैसे आप सभी को बता दें कि आज तारीख देखते ही देखते 21st of August आ गई है, यानी यार अब महज 9 दिन से 10 दिन बचे हुए हैं इस मंथ को भी जाने में। तो चलिए जाने से पहले कुछ यादगार मंथ बनाते हैं इस अगस्त 2026 को। फिलहाल आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे यादगार थॉट की तरफ जो आपको काफ़ी ज़्यादा मुतासर करने वाला है, पसंद आने वाला है। सो थॉट्स तो ऐसे होते हैं कि सुनने के बाद भाई दिल खुश हो जाता है और कहते हैं कि वाह ऐसे थॉट अगर वक्त वक्त पे मिल जाया करे तो क्या ही बात है। वैसे एक साथ कई सारे थॉट्स भी अच्छे नहीं होते क्योंकि फिर किसी का समझ में ही नहीं आता है, लेकिन जब एक बार में एक थॉट और प्रॉपर मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी बातें जो है वो समझ में आ रही है। सो फिलहाल आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या कह रहा है आइए बताते हैं आपको।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो क्या है आज का थॉट ऑफ द डे? दरअसल आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि जब तक किसी बात का प्रमाण ना हो, जब तक किसी बात का प्रमाण ना हो, उसे अपने मन की सच्चाई मत बनाइए। जी हाँ, जब तक किसी बात का प्रमाण ना हो, यानी किसी बात का सबूत ना हो, तब तक उसे सच्चाई अपने मन की मत बनाइए, क्योंकि बेबुनियाद शंकाएं, यानी शक, बेबुनियाद शंकाएं मन को सबसे गहरे घाव देती है। वाह, क्या बात है। आज का ये थॉट समझ लिया तो आपके कई सारे घाव आज के आज ही भर जाने वाले, इस थॉट को समझते ही हुए और महसूस करते हुए। कितना प्यारी बात कह रहा आज का थॉट कि जब तक किसी बात का प्रमाण ना हो, उसे अपने मन की सच्चाई मत बनाइए। बेबुनियाद शंकाएं मन को गहरे घाव देती है। अक्सर हम बहुत सारी शंकाओं को लेकर चलते हैं। इस वक्त भी अगर आप सोचेंगे कई सारी ऐसी घटनाओं को या कई सारी ऐसी बातों को जिसका कोई सबूत नहीं है आपके पास, जिसको आप सच में नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप मान रहे हैं, आप जान तो नहीं रहे हैं लेकिन आप मान जरूर रहे हैं कि यही है, ऐसा है, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है और आप खुद भी डाउट में हैं। तो ऐसे जो डाउट्स होते हैं, ऐसी जो शंकाएं होती हैं, वो मन को सबसे गहरे घाव देती हैं। बिला वजह की घाव हम लिए घूमते रहते हैं और शायद इससे छुटकारा पाने का और ख़ुद को खुश रखने का एक बेहतरीन थॉट है आज का ये कि जब तक कोई प्रमाण ना हो, तब तक ये जो शंकाएं हैं ये बेबुनियादी है और ये मन को गहरे घाव देती है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। देखिए ना, कई बार रिश्तों में ऐसा ही हुआ, कई बार हमने जिनको लगा कि ये गलत थे, एक वक्त बाद समझ में आया कि अरे नहीं, इसके पीछे तो ये चीज़ थी, है ना। तो जिन बात का कई बार प्रमाण नहीं होता है और हम उसको मान रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही बात है। सो इसलिए इस बात को इंश्योर करना ज़रूरी है, इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं, हमारे मन में जो भी डाउट्स हैं, दरअसल वो कितने सच हैं और कितने सच्चे हैं। जिस पल, जिस लम्हे ये बात समझ में आ जाएगी, उस पल हमको समझ में आएगा कि यार ऐसी कितनी बातें, ऐसे कितने रिश्ते हैं, ऐसे कितने डाउट्स हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, और उसके बावजूद भी हम उसको मानते चले आ रहे हैं। तो मानना सिर्फ नहीं यहाँ पे बात मैटर करता है, बात यह है कि उसको मानते मानते हमने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा असर उस पर डाला है, और इतना गहरा असर कि कई बार हम बेसाख्ता से हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, और न जाने क्यों हर कोई हमको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन शायद उस लम्हे हम खुद भी कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो ये जो बिला वजह की शंकाएं हैं, जो बिना सबूत के शक करने की आदत है, वो हम सब में होती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। सो अगर हम में भी है तो इस बात पर ज़रा गौर करें और समझने की कोशिश करें यार कि अगर ये शंकाएं हम ऐसे ही रखेंगे तो इस तरह के मन में कितने सारे हमारे ज़ख्म हैं, फिर ये कौन भरेगा, ये कैसे बेहतर होगा, ये एक सोचने वाली बात है। सो इसलिए हमेशा इस बात का आज से ही हमको ध्यान रखना है कि जब तक किसी बात का प्रमाण नहीं होगा, उसे अपनी मन की सच्चाई नहीं बनाना है। मन की सच्चाई का मतलब है जब आप पूरी तरह श्योर हों, आप पूरी तरह से ये पता हो आपको कि हाँ ये सच है, ये हर तरह से देख नाप जोख लिया है, फिर आप मानते हैं कि ये सच है। लेकिन हम जब मानने पे आते हैं तो सिर्फ हमको शक होता है कि ऐसा होगा, अंदाज़ा होता है, और उस अंदाजे के बल पे हम खुद को भी परेशान करते रहते हैं। इसलिए आज का थॉट ऑफ द डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आज का थॉट ऑफ द डे आपको इम्पॉर्टेंस इसकी समझ में आ रही होगी। चलिए, अगर आपको भी इस थॉट की इम्पॉर्टेंस समझ में आई है तो चलिए फटाफट से इस थॉट को लेकर के जो भी आपके मन में विचार हैं वो आप लिख सकते हैं चैट पर, क्योंकि चैट पर जो कुछ लिखेंगे वो हमको दिखेगा। फिलहाल आप सभी इस बात से अग्री कर रहे हैं कि हाँ, आपके जीवन में भी और आपके इस समय में भी
ऐसी कई सारी शंकाएं हैं जो किसी को लेकर है और बिना सबूत के है, और कहीं ना कहीं उसको अपने मन की सच्चाई मान लिया है, हालांकि वो नहीं है क्योंकि अभी तक उसका प्रमाण नहीं मिला है, और उसकी वजह से हम अपने मन को गहरे घाव दे रहे हैं, और इस बात को समझ करके शायद दूर करने की अब ज़रूरत है। फिलहाल आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे तो यही कहता है। अब आपका क्या है मानना, आप इस बात को कैसे देखते हैं, आप भी जाहिर कर सकते हैं जो भी देखते हैं, जैसे भी आप समझ रहे हैं इस थॉट ऑफ द डे को। चलिए फिलहाल इस गाने को एंजॉय करिए, वापस से आइए और उसके बाद हम आकर बताते हैं कि चैट पर किसने क्या कुछ लिखा है।

0: हाँ जी, वाजिब तो है भाई इश्क में। और फिलहाल आपको ले आए हैं आज की मॉर्निंग में। सो चलिए हम बताते हैं क्या क्या मैसेजेस आपने चैट बॉक्स पर लिखे हैं अपने मॉर्निंग वाले शो के मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के पास, सिर्फ और सिर्फ अपने गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो फिलहाल आपको अब हम बताते हैं चैट बॉक्स पर लिखे हुए मैसेजेस के बारे में, आखिर क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं। तो चलिए भाई शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं क्या क्या मैसेजेस फिलहाल आज के मॉर्निंग वाले शो में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ऑफ कोर्स क्रिकेट लवर का है, गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी, आपका भी स्वागत है, मॉर्निंग है मॉर्निंग वाले शो में। और इसके बाद जो है अगला मैसेज सुनील यादव जी का है और लिखा है गुड मॉर्निंग ऑल गोंडा वासियों, गुड मॉर्निंग टू यू, और मैं उत्तर प्रदेश से लाइव सुन रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है सुनील जी, आपका स्वागत है लाइव शो के लाइव वाले लिसनरशिप में। इसके बाद प्रीति जी का बहराइच से, सर जी सुप्रभातम, सुप्रभातम आपको भी। अनूप जी लिखते हैं वजूद तो हर इंसान का अपना होता है, जैसे सूरज के सामने दीपक कुछ नहीं होता, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक की बहुत कीमत होती है। क्या बात है आप, बहुत प्यारी बात कही आपने, गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं। और अनूप जी ने थॉट ऑफ द डे पे देखिए रिएक्शंस दिए हैं, क्या लिए हैं आइए बताते हैं कि थॉट ऑफ द डे गुड एज ऑलवेज अदनान भाई, मॉर्निंग वाला सुपर डुपर हिट थॉट, बहुत ही सही बात कही है आपने, बिना सोचे समझे मन में ही निर्णय ले लेना बहुत घातक होता है और हमें नेगेटिविटी भी भर देती है। सो कीप अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ थॉट्स, स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, है ना, कितनी प्यारी बात आपने बता दी सच में। आशु जी है लखनऊ से, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी, आपने लिखा है कि अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुप्रभात का वंदन करना जो मेरे समक्ष ना होते हुए भी मेरे हृदय के बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं, क्या बात है, वाओ। प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं ऑसम थॉट, आज का थॉट को अब से मैं फॉलो करूंगी, अब से मेरे लाइफ में जो ये है शामिल हो जाएगा और लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। दैट्स वेरी ग्रेट, सुपर थॉट लिखा है क्रिकेट लवर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आशु जी लिखती हैं भाव इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो ज़मीन पर बैठे इंसान को भी आसमां की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इंसान की उड़ान उसके पंखों से नहीं उसके भावों, विश्वास और हौसले से तय होती है। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। महेंद्र लिखते हैं कुछ लोग होते हैं जो कि आज का थॉट उन लोगों पर सटीक है, मुझे लगता है सटीक ये थॉट हम सभी पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिना प्रमाण के अपने रिश्तों में अपने क्लोज लोगों पर भी कई बार शक कर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, और उसको मानने भी लग जाते हैं, हालांकि उस बात का कोई प्रमाण नहीं होता है। बहरहाल इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास गोंडा से आ गए हैं, सर जी गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, जुमे की नमाज मुबारक हो, और परखो तो अपना कोई नहीं, समझो तो पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो, क्या बात है। गीता श्रीवास्तव जी लिखती वेरी नाइस थॉट, मैं ऐसे फॉलो करती हूँ, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मुझे यकीन नहीं होता है, मेरा दिल भी कानून की तरह जहाँ पे सबूत चाहिए तभी फैसला होगा, क्या बात है, ये तो बहुत सही आपने अपने दिल को अदालत बना रखा है। एंड एक्चुअल में ये होना चाहिए कि जब तक जिस बात का प्रमाण सच में नहीं है, जिस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हुए क्लियर नहीं हुए हैं, उसको हम ऐसे सच कैसे मान सकते हैं। उस बिहाफ पे अगर हम किसी को से नफरत कर रहे हैं या किसी पे शक कर रहे हैं या कोई डाउट है, तो वो हमारी चीज़ों को बिगाड़ ही तो रहा है, अनटिल एंड अनलेस हम उस चीज़ का कोई सबूत ना पाए हुए हों। क्योंकि हमको भी पता है, कई बार हम पे भी किया जाता है और हमको अंदर ही अंदर पता होता है कि यार इस पे शक मत करो, क्योंकि ये इस वजह से है और मेरी वजह वाजिब है, राइट। ऐसी कई बार सामने वाले की वजह भी वाजिब होती है, उसके पीछे की बात को शायद हम समझ नहीं पाए हुए होते हैं या वो दिखी नहीं होती है, इसलिए हम मान लेते हैं। खैर, इस थॉट को अगर फाइनली हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे रिश्ते वापस से मिठास लेकर आ जाएंगे।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: तो चलिए, अगर आपको कुछ ऐसा सुनने का शौक है जिसको सुनने के बाद आप कहें वाह वाह वाह वाह, तो एक ऐसा ही सॉन्ग आपका इंतजार कर रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो में। और फाइनली अब हम मिल करके इस सॉन्ग को एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये सॉन्ग जो है वो मधुर शर्मा की आवाज़ में, लेकिन है नुसरत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ। तो चलिए, इस ओल्ड क्लासी सॉन्ग को अगर हम मॉडर्न एरा में लेकर आते तो कैसा दिखता है, ये सॉन्ग से हम जरूर समझ लेंगे।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम। वैसे एक बात बताएं, अगर आपका रंग भी गहरा है और आप सोचते हैं कि भाई कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जिससे कि रंग को और ज़्यादा निखारा जा सके, तो ज़रा रुक जाइए। आपको हम बता रहे हैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जहाँ जिन लोगों का रंग निखरा हुआ है वो पहले से ही अब वो डार्क रंग चाह रहे हैं, यानी गहरा रंग कर रहे हैं। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, दरअसल ये ट्रेंड चल रहा है। अब आप सोचेंगे, हैं खुद को गहरा रंग करने का कौन सा ट्रेंड है? भाई मैंने भी सुना तो मेरे भी होश उड़ गए, तो चलिए अब क्यों ना आपकी होश उड़ाया जाए।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि डार्क स्किन के लिए धूप में खड़े होने का ट्रेंड चल पड़ा है, एंड लिटरली ये सुनने के बाद आपको भी लगने वाला है कि यार ये क्या ही बात कर रहे हैं, पर इसका बाकायदा हम सबूत देने वाले हैं। सो डोंट वरी, अब आप भी कहीं इस ट्रेंड को फॉलो ना करने लग जाए। अब आप कह रहे हैं अरे छड़ो जी मैनू की करता, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर ये ट्रेंड क्या है और क्यों फॉलो कर रहे हैं लोग। सो अब तक लोग जो है, देखिए यही हमने सुना है, हमेशा आपने भी देखा है कि धूप से बचने के लिए छाता, टोपी, सनस्क्रीन का सहारा लेते हैं। अब वो चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, अक्सर ये देखा है कि लोग जो है वो छाता लेकर निकल रहे हैं, कुछ नहीं तो कैप लगा लिया है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई सनस्क्रीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल अभी एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। अब लोग जानबूझकर तेज धूप में घंटों खड़े या लेटे रह रहे हैं ताकि उनकी स्किन का रंग और भी ज्यादा गहरा हो जाए। जी हाँ, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस ट्रेंड का नाम भी है, इस ट्रेंड का नाम है टैन मैक्सिंग। जी हाँ, टैन मैक्सिंग कहा जा रहा है इस ट्रेंड को। सो बिना सनस्क्रीन धूप में बिताते हैं वक्त लोग। सो टैन मैक्सिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोग गहरी टैनिंग पाने के लिए लंबे वक्त तक धूप में रहते हैं, सो बिना सनस्क्रीन धूप में बिताते हैं अपना वक्त। कई इन्फ्लुएंसर्स इसे बेहतर लुक पाने का तरीका बता करके प्रमोट कर रहे हैं। वीडियो में धूप में लेटने और खड़े रहने की अलग अलग रूटीन भी शेयर की जा रही है। सो ऐसे हम बता दें कि डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है, यानी इसी ट्रेंड के बीच में डॉक्टर्स तक जब ये बात गई, सो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भी अपनी कुछ बातों को रखा। सो स्किन एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैनिंग जो है यूवी किरणों से त्वचा में होने वाले नुकसान की एक प्रतिक्रिया होती है। सो लंबे वक्त तक तेज धूप में रहने से आपकी स्किन वक्त से पहले बूढ़ी दिख सकती है अगर आप बहुत देर रहते हैं तो। सो स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर बिना सुरक्षा के इस ट्रेंड को अपनाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये ऐसी बात है जो थोड़ा सा अजीब लगी, लेकिन मुझे भी लगा यार जब दुनिया अभी तक क्रीम बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो आकर के गोरेपन को ऐसे प्रमोट करते हैं, हालांकि गोरापन और कालापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये पिगमेंटेशन की वजह से होता है और स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो नेचुरल होता है। हाँ, साफ और ऑफ कोर्स इसको किया जा सकता है कि आप जितना क्लीन रखें उतना इवन स्किन दिखती है, उतनी साफ दिखती है। फिलहाल ये नया ट्रेंड था जिसमें रंग को गहरा करने के लिए घंटों घंटों धूप में या तो बैठे हैं या तो लेटे हैं, वो भी बिना सनस्क्रीन के। ठीक है, अच्छी बात है कि भाई आपको गहरा रंग, डार्क कॉम्प्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिनका नेचुरली वैसा नहीं है और अगर वो कोई ऐसी ज़बरदस्ती अपने स्किन के साथ या बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ करते हैं तो जाहिर है वो सही नहीं होता। तो एक सही प्रोसेस क्या होता है जिसमें आपकी त्वचा को नुकसान ना हो, जिसको लेकर के हमने बताया कि स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अगर आप ये वक्त बिताते हैं इस चक्कर में तो इसको छोड़ दिए बाबू भैया, क्योंकि ये नुकसानदायक हो सकता है। फिलहाल इस अनोखे ट्रेंड के बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस दौर से और इस बात से तो हर कोई गुजरा है कि अरे लाओ कोई ऐसी क्रीम लगा ले जिससे कि स्किन और साफ हो जाए या थोड़ा सा और ग्लो बढ़ जाए, है ना, है ना, है ना।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

हाँ जी, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके मॉर्निंग वाले शो में। तो चलिए भाई, अब हम कुछ और बता रहे हैं और हम जो अब बताने वाले हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। सो फिलहाल अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो 1 अक्टूबर से फिलहाल बैंक से कैश निकालना महंगा होने वाला है। जी हाँ, सो कई ऐसे हमारे ऑफ़ कोर्स सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं जिनका अकाउंट SBI में होगा, उनके लिए ये ख़ास

0: खबर आज आपको मॉर्निंग वाले शो में हम बता रहे हैं। सो चलिए, बात है क्या पूरी, यानी किस तरह से SBI अकाउंट होल्डर्स को पैसे निकालना क्यों महंगा पड़ने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक RJ अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ अदनान।

आपको हम बता दें कि फिलहाल अगर आपका अकाउंट भी SBI में है और आप महीने में कई बार बैंक की ब्रांच में जाकर के कैश निकालते हैं, तो आपको कैश निकालने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। जी हाँ, सो SBI ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी BSBD बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से ब्रांच के जरिए कैश निकालने को लेकर के चार्ज में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2026 से ये लागू हो रहा है। BSBD अकाउंट के ब्रांच चैनल से महीने में 4 कैश विड्रॉ तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद हर विड्रॉल पर ₹15 का चार्ज लिया जाएगा और GST भी साथ में जुड़ सकती है। जी हाँ, अब इस बदलाव का असर क्या होगा? इस बदलाव का असर खास तौर पर उन कस्टमर्स पर पड़ेगा जो अपने BSBD अकाउंट से बार बार ब्रांच जा कर के पैसे निकालते हैं। फिलहाल ये SBI ने लागू कर दिया है। BSBD यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट से ब्रांच के ज़रिए कैश निकालने को लेकर के चार्ज में बदलाव किया गया है। यानी 4 बार अगर आप जाते हैं एक महीने में तो उस पर चार्ज नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 5वीं बार जाते हैं, उसके बाद जाते रहते हैं, तो हर बार निकालने पर आपको ₹15 एक्स्ट्रा, साथ ही साथ GST भी देना पड़ सकता है। फिलहाल ये उन कस्टमर्स के लिए थे जिनका अकाउंट SBI में है। SBI ने ये लागू करने का कहा है और ये अगले महीने ऑफ कोर्स अगस्त के बाद सितंबर से 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इसको अक्टूबर से लागू किया जाना है। फिलहाल ये अपडेट्स थी उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स SBI में हैं। फिलहाल आई होप कि भाई आपको ये ज़रूरी जानकारी मिल गई है और अगर आप भी ब्रांच जा कर के बार बार कैश निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। फिलहाल आइए चलते हैं अगले म्यूजिकल ट्रैक में, एंजॉय करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में आपके मॉर्निंग वाले जॉक RJ Adnan के साथ मिलकर के। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सुने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72-34-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दो।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अगर मैं आपसे कहूं कि सेहत के साथी भी होते हैं पेट्स, यानी जिन पालतू जानवरों को हम पालते हैं ये हमारे सेहत के साथी भी होते हैं, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? अब आप कहेंगे हाँ, खुश तो रखता है। चलिए एक्चुअल रीजंस क्या क्या हैं हम आपको बताते हैं आज आपके मॉर्निंग वाले शो में कि भाई पेट्स किस तरह से हमारे सेहत के भी साथी होते हैं। ओनली ऑन गुड मॉर्निंग गोंडा शो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सुबह देखिए, फ़िलहाल पेट्स जो है बच्चों के सबसे करीब होते हैं, और ख़ास बात यह है कि उनकी सेहत के साथी भी बन जाते हैं। ये तो हमने देखा है, कई सारी रील्स आप स्क्रॉल करते होंगे या अपने घर के बच्चों को खुद ही देखा होगा। अब एक ताज़ा एक स्टडी हुई है, उसमें पाया है कि घर में रहने वाले जो पालतू डॉग्स हैं वो अपने साथ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस लाते हैं जो छोटे बच्चों के हेल्थ पर सकारात्मक असर डालते हैं, यानी एक अच्छा असर पड़ता है। सो इन डॉग्स से जुड़ा माइक्रोबायोम जो है बच्चे में सांस से जुड़ी संक्रमण जो होते हैं, बुखार, एंटीबायोटिक ज़रूरत को कम करने में मददगार होते हैं। सो स्टडी कहती है कि घर का ये वफ़ादार साथी जो है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक सहारे के साथ सेहत का भी प्रहरी बन सकता है। जी हाँ, यानी डॉगी डस्ट में छिपे हैं कई सारे राज। इस बात को आप अगर जान लेंगे तो आप भी अपने घर में पले इस वक्त डॉग को और भी ज़्यादा चाहने लगेंगे। दरअसल एक स्टडी जो कि फिनलैंड के पीडियाट्रिक एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी जर्नल में छपी हुई है, इसमें जो स्टडी करने वाले रिसर्चर्स हैं उन्होंने 368 बच्चों के हेल्थ पर पालतू कुत्तों के जो एक प्रभाव होता है उसका विश्लेषण किया। सो बच्चों को जन्म से लेकर एक साल तक ट्रैक किया गया। इसमें करीब एक तिहाई बच्चे ऐसे घरों में रहते थे जहां पालतू पेट कुत्ता था। सो दो महीने से एक साल तक हर हफ्ते बच्चों की सेहत की जानकारी पेरेंट्स ने दी, जिससे उनका हेल्थ रिकॉर्ड तैयार हो गया। सो दो महीने की उम्र में घरों के फर्श की धूल का जेनेटिक जो है वो विश्लेषण भी किया गया, और पाया गया कि डॉग्स वाले घरों में पाए जाने वाले कुछ ख़ास बैक्टीरिया फंगस बच्चों की सेहत से जुड़े थे, और ये सूक्ष्म जीव जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत को कम होने पर संक्रमण से बचाव में भी बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। सो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा अध्ययन है, और कहीं ना कहीं पेट्स को लेकर के ये आया है, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जहाँ पे पेट्स होते हैं, मे बी आपके पास भी हो। सो आपके लिए भी ये जो एक स्टडी हुई है ये हमारे ख्याल से खुशखबरी की तरह है आपके लिए, राइट। इसके अलावा हम बता दें कि स्टडी में पेस्टुरेला और कॉलिनसेला जैसे बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका में सामने आया है। पेस्टुरेला बैक्टीरिया जो है वो अगर जनरली देखें तो कुत्तों और बिल्लियों के मुंह पर पाए जाते हैं, जो कि बच्चों में कम बुखार और कम एंटीबायोटिक इस्तेमाल से जुड़े मिले। वहीं कॉलिनसेला बैक्टीरिया का जो रिलेशन है वो ज़्यादा हेल्दी पूरे पूरे हफ्ते और कम थकान और इसके अलावा एलर्जी और कम बुखार में पाया गया है। सो स्टडी जो करने वाले थे यानी रिसर्चर्स, उनके हिसाब से ज़िंदगी के पहले साल में प्रतिरक्षा प्रणाली तेज़ी से डेवलप होती है। इस दौरान बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के संपर्क से बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है प्रभावित होती है। ऐसे में पालतू जानवर बच्चों की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद साथी साबित हो सकते हैं, ऐसा स्टडी में सामने आया है। और ये स्टडी बहुत बड़ी है, क्योंकि भाई जिस भी घर में पेट है वो इस बात को अच्छे से जानता है कि वो कितना उसको चाहता है, कितना ज़्यादा मानता है, वो एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाते हैं। एंड यस, अगर आपके घर में भी डॉग्स या कैट्स हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपके छोटे बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारी सावधानियां तो हर कोई बताता ही रहता है, लेकिन इस तरह की रिसर्चेस जो हैं वो कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ कितनी ज़्यादा अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात है कि हम जिन पेट्स को अपने लिए लेते आते हैं कि भाई वो हमारी तन्हाई को दूर करेगा, साथ ही साथ वो ऐसी भी चीज़ें उनके पास होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। सो आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं इस जानकारी के बाद मैं अब आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ चलिए अब मैं भी ले ही आता हूँ घर पे आपने तो चलिए अगर नहीं लाए थे अब तक तो ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये पेट्स को पालना बहुत अच्छा रहता है, एंड आपको भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आती है। सो अगर जिनके घर में हैं, मैं तो लगता है कि भाई वो ज़रूर इस बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो उसकी केयर भी करते हैं और उसको अपने आसपास भी रखते हैं। तो ये बहुत अहम स्टडी थी। स्टडी से आपको भी क्या भाई
समझ में आया ये आप हमको ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये किसी एक घर या किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये घर घर और कई शख्स की बात है।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ओए छोटे, आजकल तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: अरे भले वही तो पता नहीं चला कि चलते चलते कितने दूर चले गए।
0: ओए क्या?
1: अरे वही पढ़ाई।

0: हाँ जी, अगर आपका फोन भी पानी में भीग जाए या अगर आप बारिश में निकले हैं और अचानक से बारिश होने लगे और आपको याद आया कि यार फोन है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम पैनिक इसीलिए होते हैं कि अपने फोन को कहाँ संभाल के रखे। अगर पानी कायदे से चला गया तो मोबाइल कायदे से खर्चा देकर जाएगा या हो सकता है डेड ही हो जाए, और डेड होने का खतरा तो कम, उसमें जो डेटा लॉस हो जाने की बात होती है, इतने सारे नंबर्स, इतने सारी आपकी काम की चीज़ें, वो खौफनाक हो सकती है। सो अगर आप भी बारिश में भीग रहे हो और आपका फ़ोन भी भीगने वाला हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक अपने फ़ोन को आप जो है वो सेफ कर ले जाएंगे। तो चलिए, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम बारिश में मोबाइल को लेकर के दें तो अपने फ़ोन को हम सेफ कर सकते हैं, आइए जानते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सोच के ही डर लगता है कि भैया अगर बारिश हो रही हो और फोन साथ में हो तो फिर क्या करना होगा, राइट? सो सच में जितनी जल्दी हो सके आप एक काम करिए कि आप फोन को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। अगर पानी अंदर चला गया तो फोन चालू रखने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और मदरबोर्ड या दूसरे जो सेंसिटिव हिस्से हैं उसको हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। सो भले ही सब कुछ ठीक से काम करता हुआ दिखे, फिर भी आप इसे पहले पूरी तरह सूखने देना ही बेहतर होता है। और अगर ये पहले से बंद हो गया है तो चालू करने की कोशिश आपको फौरन नहीं करनी है जब तक वो सूख ना जाए। कई बार ऐसा होता ना कि पानी जाने से खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसको स्विच ऑन करने की कोशिश उस टाइम बिल्कुल ना करें, सूखने देने का वक्त दे। और अगर आपके हाथ में है पहले से ही तो आप उसको स्विच ऑफ कर दें। सो ये देखने का मन हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है या नहीं, लेकिन गलती से भी ऐसा नहीं करें। गीले फ़ोन को चार्जर से जोड़ने पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सो चार्जिंग पोर्ट, बैटरी या मेन बोर्ड जो है वो ख़राब हो सकता है। सबसे बुरे मामले में इससे आग लगने का ख़तरा भी हो सकता है। अगर आपको मॉइस्चर डिटेक्टर यानी नमी का पता चले और या चेतावनी दिखे तो इसे गंभीरता से लीजिए और फ़ोन को पूरी तरह सूख जाने पर ही उसे चार्ज करिए। यानी कि भीगा हुआ फ़ोन चार्ज करना किसी ख़तरे से खाली नहीं हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए कभी भी भीगे हुए फ़ोन को चार्जिंग पर मत लगाएं। इसके अलावा केस, सिम या मेमोरी कार्ड को निकालना होता है। सो फ़ोन को बंद करने के बाद फ़ोन का कवर केस हटा देना होता है। इसके बाद सिम ट्रे, सिम कार्ड और अगर उसमें कोई माइक्रो एसडी कार्ड है तो उसे भी निकाल लेना होता है। इससे फ़ोन के अंदर हवा बेहतर तरीके से जा पाती है और नमी बाहर निकल आती है। साथ ही आपके कार्ड्स भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर हो सके तो फ़ोन के सूखने तक ट्रे को बाहर ही रहने दें। इसके अलावा अपने फ़ोन को मुलायम कपड़ों से ही पोंछना होता है। सो पूरे फ़ोन को पोंछने के लिए साइफ, माइक्रोफाइबर या फिर सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ोन की स्क्रीन, बटन, पिछले हिस्से, कैमरा लेंस, स्पीकर, ग्रिल, सिम कार्ड ट्रे और चार्जिंग पोर्ट को हल्के हाथों से थपथपा करके पोंछना होता है। सो ध्यान रखना होता है कि ज़ोर से नहीं रगड़ना होता है। पानी निकालने की कोशिश में फ़ोन को हिलाएं या फिर पटके नहीं, बल्कि इससे इसकी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है और पानी अंदर और गहराई में जा सकता है। सो चार्जिंग पोर्ट या स्पीकर की तरफ पानी हो तो फ़ोन को पोर्ट नीचे करके हल्के से टैप करें ताकि पानी निकल जाए। कोई भी चीज़ यानी टिश्यू, कॉटन बर्ड, पिन, इन सब का पोर्ट के अंदर मत डालें क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हेयर ड्रायर का कई लोग इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं अपने फ़ोन को सुखाने के लिए, हालाँकि इसको मना किया गया है। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करने देना है, इसे अपने आप सूखने देना है। सो हेयर ड्रायर से गर्म हवा इस पर नहीं डालना होता है। ये एक आम गलती है जो ख़तरनाक हो सकती है। इससे चिपकाने वाला जो एडहेसिव है वो पिघल सकता है। सो बैटरी ख़राब हो सकती है या फिर डिस्प्ले में दरार भी आ सकती है। इसके बजाय आप अपने फ़ोन को किसी ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर आप रख सकते हैं। सो अगर ऐसा कुछ होता है, बारिश होती है, तो फ़ोन का इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना है आपको, ताकि अपने फ़ोन को आप सुरक्षित रख सकें, क्योंकि आपका डेटा जो है वो बहुत अहम होता है और आप हमेशा अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऐसे होते हैं जो कभी शायद दोबारा ना मिल पाए, या ऐसे सारी फाइल्स होती हैं जो आपके बहुत काम की होती है, ऐसी चैट्स होती है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके काम का होता है आपके फ़ोन में। इसलिए बचाने के लिए हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आई होप कि भाई ये ज़बरदस्त जानकारी जो है वो आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी। चलिए फिलहाल ले रहे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूज़िकल ब्रेक, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि अब की बारिश में क्या करना है फ़ोन के साथ?

0: कितनी बार एक ही बात समझाएं पर तुम्हें समझ में ही नहीं आता है। ना ना ना ना, ऐसे वर्ड्स जो है अपने बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको। देखिए ना, जब भी हमको कुछ ऐसा मिलता है हम आपसे ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आखिर पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ है, किस तरह से पेरेंट्स बच्चों को डील करते हैं इससे बच्चों पर बहुत असर होता है, साफ साफ असर पड़ता है, इससे दिशा और दशा दोनों बदलती है। सो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको नहीं बोलना है, बल्कि उनको कैसे बोलना है, सही तरीका क्या है बच्चे से बात करने का, कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर के आइए हम आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो कितनी बार एक ही बात समझाया, अक्सर ये पेरेंट्स कहते हैं, इवन मुझे भी कहा गया कि कितनी बार समझाया तुम्हें समझ में नहीं आता है। खैर, ये तो एक बहुत आम स्टेटमेंट है जो हर घर में बोला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बदले एक और अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है। इस बात को इस तरह कहने से बेहतर है कि मैं एक बार कहूँगा, मुझे यकीन है कि तुम मान जाओगे। यानी बच्चे से अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं एक बार कहूँगा और मुझे यकीन है कि तुम मान जाओगे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा और सही तरीका है बच्चे से कहने का, बनिस्बत ये कि कितनी बार एक ही बात समझाए। ऐसे खींच करके बोलना जो है बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा है कि भाई बच्चा अक्सर रोता है तो हम लोग सीधे बोल देते हैं रोना बंद करो, सीधे बोलते हैं रोना बंद करो, ये क्या रोना तुमने चालू कर रखा है। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। अगर हम बच्चे को डील कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो उसको हम कह सकते हैं रोना आ रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन उसको ऐसा फील आता है कि उसके लिए कोई है, उसके साथ कोई है, फिर वो सारी चीज़ें शेयर कर पाता है कि भाई उसको रोना क्यों आ रहा है। सो अक्सर स्टेटमेंट बोला जाता है कि क्योंकि मैंने कहा है इसलिए इसको करो, क्योंकि मैंने बोला है इसलिए इसको खाओ, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए वहाँ जाओ। इसके बोलने से बेहतर है कि आप ऐसा बोले कि समझता हूँ तुम्हें बुरा लग सकता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग सकता है। सो इस तरह से डिसिप्लिन ये बताया जाता है। एक होता है थोपना कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, एक होता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें बुरा लग सकता है बच्चे, लेकिन तुम्हें ये करना है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं, लेकिन सही स्टेटमेंट के साथ में। इसके अलावा हम बोलते हैं कि फिर सब छीन लूँगा, धमकी से डर पैदा होता है, भरोसा नहीं होता है, पहली बात तो हम ये जान लें। फिर सब छीन लूँगा, फिर सब ले लिया जाएगा, बच्चे से हम ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अब फैसला तुम्हारा है, अच्छा बुरा तुम्हें ही डील करना होगा, धमकी नहीं, जिम्मेदारी आपको सिखाना होता है कि अब बेटा जो तुम्हें लगता है वो तुम करो, क्योंकि अच्छा होगा या बुरा होगा ये तुम ही जान पाओगे। तो इस तरह से कह करके बच्चे को हम डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को धमकी नहीं दे रहे होते, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बता रहे होते कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अक्सर हम बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना तंग क्यों कर रहे हो, बच्चे से हर कोई ये स्टेटमेंट बोल देता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना तंग कर रहे हो। इससे बेहतर है ये कहा जाए कि लगता है तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, चलो बताओ क्या बात है। अगर बच्चा परेशान है तो उसको ऐसे पूछा जा सकता है कि लगता है तुम्हें कुछ परेशान करना है, चलो क्या बात है बताओ। तो इस तरह से बच्चा जो है वो जान पाता है कि आप उसके साथ एम्पेथिसाइज कर रहे हैं, और वो बता पाता है कि एक्चुअल में उसको क्या लग रहा है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है वो ये है, जल्दी करो। जल्दी करो कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है बच्चों को डील करने का, बल्कि ये बोला जाए 2 मिनट बचे हैं फिर हमें जाना है। 2 मिनट बचे हैं फिर हमें जाना है, यानी अगर आप कुछ वक्त दे रहे हैं तो आप डेडलाइन के साथ बता दें कि बच्चे बस इतना मिनट बचा है, उसके बाद फिर हमको निकलना है। तो वो माइंडसेट आता है कि अच्छा इतनी देर में ही उसको सब कुछ कर लेना है और इतनी देर बाद वो रेडी हो जाएगा। तो ये एक बोलने का तरीका होता है। दूसरा होता है तुम सुन नहीं रहे हो, ये अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि तुम सुन ही नहीं रहे हो। उससे बेहतर है कि जब तुम्हारा मन बताने के लिए तैयार हो तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यानी ऐसा भी कहना चाहिए कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो ऐसा बोल दे कि जब तुम्हारा मन शांत हो तब तुम बताओ, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से बच्चे के अंदर जो शंका होगी, जो डर होगा, वो निकलेगा और वो आप तक बता पाएगा अपनी सारी बातें। अक्सर कह दिया जाता है बच्चों को डांट करके कि कमरे में जाओ। सो कमरे में जाओ से बेहतर ये बोला जाए कि पहले दोनों कुछ मिनट शांत बैठते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, जब आपको ये समझाना होता है कि भाई कुछ वक्त बाद अब बात करना है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ चलो पहले थोड़ा सा खामोश बैठते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। तो जब फिर हम लोग बात करते हैं ये कहेंगे आप, तो उसको ये पता है कि आप बात करोगे, इसलिए फिर वो खामोश हो जाएगा। तो ये भी एक सही तरीका होता है। और हमेशा आपको याद रखना है कि बच्चे आपकी बातें कम, आपका बोलने का तरीका ज़्यादा याद रखते हैं। तो शब्द बदलेंगे रिश्ता बदल जाएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है कि बच्चा जो है वो आप वर्ड्स क्या बोल रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा किस तरह से बोल रहे हैं ये ज़्यादा रीड करता है और ये ज़्यादा उस पर ध्यान देता है। तो
हमको कैसे बात करना है, हम कैसे बात कर रहे हैं या किस तरह से डील कर रहे हैं, इस बात को हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सही पेरेंटिंग भी है, एक सही तरीका है कि किस तरह से हम बच्चों को डील करते हैं, किस तरह से हम उनको सिखा पाते हैं या फिर समझा पाते हैं। सो ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगा कि भाई ये बातें क्यों ना आप तक बताई जाए और ऐसे स्टेटमेंट्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं उनको छोड़ करके हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसा कि हमने एक एक स्टेटमेंट के बारे में बताया कि कहाँ सम्मान सिखाना है, कहाँ सब्र सिखाना है, कहाँ टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ बच्चे को सिखाना है, लेकिन उन कॉमन स्टेटमेंट से नहीं जो हमारे साथ बोला गया, बल्कि उन स्टेटमेंट्स से जिससे बच्चा फील कर पाए, एम्पैथाइज कर पाए और हमको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर पाए और खुल करके वो अपनी चीज़ों को हमेशा हमेशा बयां करता रहे। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पेरेंटिंग का ध्यान बहुत ख़ास ख्याल के साथ रखना होता है। आई होप कि भाई आप भी अब अपने घर के नन्हे मुन्ने के साथ कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को नहीं, हमें सीखने की ज़रूरत है।

0: पसंद है। हाँ जी भाई, और आपको क्या क्या पसंद है चलिए बताइए, क्योंकि मुझे लगता है आपको सबसे पहले तो थॉट पसंद है, जिसको आप सुन लेते हैं और उसके बाद इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और कुछ ऐसे मैसेजेस जो आए हैं चैट बॉक्स पर बाद में, आइए चलते हैं पढ़ते हैं।
1: Now you're listening, good morning, Gonda, with your favorite, Arjay Khan.

सो थॉट से ले करके हमने आपको बताया सिम को कैसे बचाना है, पेरेंटिंग कैसे होनी है, इसके अलावा आपको और बहुत सारी बातें समझने और जानने को आज आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में मिली। आई होप कि आपने इन सारी बातों को सुना होगा, समझा होगा और कई सारी बातें आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रहती हैं। इसके अलावा पेट डॉग्स के बारे में भी आपने जाना और पेट कैट्स के बारे में भी कि भाई किस तरह से छोटे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिलहाल ऐसी कई और जानकारियों को लेकर के कल सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल शो में हम हाजिर होने वाले हैं, लेकिन आई होप कि आपको आज का ये गुड मॉर्निंग गोंडा शो पसंद आया होगा। फिलहाल घड़ी ने इशारा कर दिया है आपसे विदा लेने का, साथ ही साथ ये कहने का कि आपको बने रहना आपने गोंडा FM 89.6 FM पर, क्योंकि भाई ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल अब जाते जाते इस सॉन्ग को एंजॉय करिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के मॉर्निंग जॉक RJ अदनान के संग, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर। और हाँ, शो कैसा लगा ये मन ही मन ज़रूर सोच लीजिएगा। वैसे आज का थॉट मुझे लगता है कि अपने संग साथ में लेकर जाने वाला है, क्या ख्याल है आपका?

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: Hey, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो, या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर गांव की गूंज, जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि समाज का आईना होता है। हम हैं आपकी अपनी आवाज, आपके फेवरेट शो गांव की गूंज की टीम के साथ। आज हमारी 89.6 FM की टीम लेकर आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव गए थे, जहां हरियाली ही और सादगी थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच छुपी है एक कड़वी सच्चाई, बेटियों के प्रति भेदभाव। आज हम उसी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे।
7: जब हम माधोपुर पहुँचे तो सच कहूँ, ऐसा लगा जैसे किसी किताब के पन्ने में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ फैले हुए गेहूं के खेत, जिनकी बालियां हवाओं के साथ ऐसे झूम रही थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी थकान पल भर में उतर गई हो।
8: हाँ जया, यह सब बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने दिल को बेचैन कर दिया। हमने देखा कि यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो वही लोग, वही परिवार अचानक बदल जाता है।
6: मुझे याद है जब हमारी गांव की गूंज की टीम 89.6 एफएम की टीम एक घर में गई थी। वहां सब लोग खाना खा चुके थे, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब। और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे घर की बहुएं और बेटियां रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थीं। उनके चेहरे पर एक शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका हो।
9: हमार तो जियरा हिल के रहेगा। हम सोचित रहे कि ये का नियम है, का बेटी और बहू के पेट कम होते है, का वो लोग इंसान नहीं है का। ये सब देख के लगत है कि आज भी हम कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जहाँ प्यार है, अपनापन है, लेकिन बराबरी अभी तक ना पहुँची है।
10: ए

0: हमने माधवपुर में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं देखी, बल्कि एक सच्ची सोच देखी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जब हमने ध्यान से सुना तो कई जगह एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान बस बेटा देना। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तक कराते हैं सिर्फ इस इच्छा में कि घर में बेटी नहीं बेटा ही जन्म ले।
1: यह सुनकर मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को भी हम भेदभाव सिखा रहे हैं?
2: और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो दिल को झकझोर देने वाली थी। कानूनन यह गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की।
3: और अगर उनका पता लग जाए कि पेटे में लड़की है तो उनका जन्म ले के पहले ही खत्म करने की सोच लेते हैं। गांव की दाई या कुछ गलत रास्ते अपनावे वाले लोग हैं, महतारी का इसी दवाई दे हैं जो मासूम की जिंदगी का दुनिया देखे इनके पहले ही खत्म कर दे, जानू कि नहीं।
1: अरे बाप रे बाप,
2: सोचिए जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलता क्योंकि वो बेटी है।
1: यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। अरे हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज भी हम एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं?
3: अरे ये सब तो सुन के हम सन्न रह गए। हम सोचत रहे कि आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म से पहले रोक दियल जात है। का कसूर बाबू नन्ही सी जान के, सिर्फ इतना कि वो बिटिया बा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है।
1: बिल्कुल सही कहा था।
0: और जो बेटियां जन्म लेती भी हैं, उनका जीवन भी आसान नहीं होता। हमने देखा घर में लड़के आराम से बैठे हैं या पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहे हैं, और वहीं लड़कियां छोटी सी उम्र में रसोई में लगी हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम करना।
2: उनके लिए बचपन, खेल, सपने, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें घर का काम सीखना है।
1: और दूसरी तरफ बेटे चाहे पढ़ाई में अच्छे हों या नहीं, माँ बाप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि खेत तक बेच देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो बेटा है और उन्हें लगता है कि वही उनका भविष्य है।

0: हमारी 89.6 FM की टीम ने इस गांव में कई घरों में एक ही बात बड़े गर्व से सुनी। लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे तीन तीन बेटे हैं, तीनों शहर में नौकरी करते हैं। उनकी आवाज में गर्व था, एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन जब हमने धीरे से पूछा, क्या वे आपका ध्यान रखते हैं, क्या वे आपसे मिलने आते हैं, तो अचानक वही चेहरे जो अभी तक गर्व से चमक रहे थे एकदम शांत हो गए, आंखें झुक गईं और होठों पर एक मजबूर सी खामोशी छा गई।
1: हम उसी घर में कुछ देर बैठे और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि इनके तीन बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, लेकिन उस अच्छी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
2: वो तो ना उन्हें अपने पास बुलावत है, ना ही गांव आवे की उनका फुर्सत है। और सबसे दुखद बात ये है कि अपन माँ बाप का शहर बुलावे से भी कतरात है, क्योंकि उन्हें डर लागत है कि कहीं उनके सादे सीधे सादे माँ बाप उनकी सारी इमेज का खराब ना कर दें।
3: पूरा कहा तू बहनी, सोचिए जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की पढ़ाई में, उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगा दी, खेत बेच दिए, अपनी जरूरतें छोड़ दी, आज वही माँ बाप अपने ही बच्चों के जीवन में एक बोझ जैसे महसूस किए जा रहे हैं। यह सिर्फ दूरी नहीं है, यह भावनाओं की दूरी है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है।
0: लेकिन उसी घर में एक कहानी और भी थी, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे दिल को छू लिया।
1: उस घर की एक बेटी भी थी, रीमा।
3: रीमा? रीमा ने शहर में शादी करने से साफ मना कर दिया था। जब रिश्ते आए बड़े बड़े शहरों से, अच्छे घरों से, तो उसने एक ही बात कही, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी।
2: रीमा कहत रही कि जब हम शहर में जाइबे, हम बगल के गांव में शादी करब, ताकि रोज माई बाबू का देख सकी, उनका दवा पानी, उनका हाल चाल सब खुद देखी। और सच माँ वो अपनी जिद पर अड़ के रह गई और बगल के गांव में ही शादी करी से, जानियो कि नहीं?
3: हाँ, बगलियम करी से।
2: हाँ,
0: आज वही रीमा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। सुबह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और शाम को अपने माता पिता के पास आ करके उनका हाल भी पूछती है, उनको दवा देती है और उनके साथ बैठती भी है।
1: हमने अपनी आँखों से देखा, उसके माँ बाप उसे भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आँखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व और प्यार के आंसू थे।
3: और उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन असली सहारा हमारी बेटी निकली। उनकी आवाज में पछतावा था अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर।
2: देखो ना दीदी, जिन बिटवन की खातिर सब कुछ दे दिया गा, वो सब शहर में बड़े खुश हैं, लेकिन असली सुकून तो बिटिया से मिलत है। बेटी ना हुई होती तो घर खाली खाली लागत, और बेटी साथ अगर है तो बुढ़ापा में सहारा बन जाती।
0: अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जरूरी है या बेटी, सवाल यह है कि हम किसे क्या समझते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बेटा नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी जीवन रोशन करती है।

0: आज हम सब यहाँ पर एक परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामलाल के घर में 5 बेटियाँ हैं और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि उसे बेटा हो सके।
1: प्रधान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि हमारे कानून में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है? तो फिर हम गांव की सभा में ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है?
2: और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये न्याय है कि 5-5 बेटी होवे का दोष सिर्फ माँ पर डाल दिया जाए? हमें तो ये बात समझ में नहीं आवत है।
3: क्या किसी ने यह सोचा कि बेटी या बेटा होना उसके हाथ में नहीं है? विज्ञान कहता है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो फिर हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
1: एक नारी जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसके दर्द को सहती है, उसे ही दोष देना, क्या ये इंसाफ है या हमारी गलत सोच?
4: और क्या बेटियाँ होना कोई अभिशाप है? वो 5 बेटियाँ जो आज उस घर में हैं, क्या वो प्यार नहीं दे सकती? क्या वो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? यस।

0: दोस्तों, हम सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि हम पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि बेटी होना गलत है, और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी।
1: हमें यह तय करना होगा कि हम परंपरा को मानेंगे या सच्चाई को।
2: और अगर बदलाव यहीं से शुरू नहीं होगा तो कहीं से भी नहीं होगा।

0: आज हमने जो देखा सुना उसने सिर्फ हमारे मन को दुखी नहीं किया बल्कि हमें जिम्मेदार भी कर दिया। अगर हम सिर्फ सुनकर देखकर चले आते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हम भी उसी गलती का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से आती है।
1: जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे जितना खाना देती है, जब एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उतना ही सोचता है, जब एक परिवार बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।
2: हम हमेशा कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज बनता किससे है? हमसे, हमारे घरों से, हमारी सोच से। अगर आज भी हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम रसोई संभालो और बेटों से कहें तुम आगे बढ़ो, तो फिर हम किस बात की बराबरी कर रहे हैं?
1: एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव लाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और वो अपने माँ बाप का सहारा भी बनती है। इसीलिए बेटी को रोकना नहीं है, उसे उड़ान देना है।
3: देखो बहनी, बेटी का रोके के ना चाहिए, उके सपना ना तोड़े के चाहिए। वो भी चाहत है कि कुछ बन जाए, वो भी चाहत है कि माई और बाबूजी का नाम रोशन करे। जब वो बड़ा हो के उड़ना चाहत है, तब हम ओकर पंख कहे काट दे। अब उका उड़े देओ के रोक ना लगाओ, बेटी के पंखन में उड़ान भरो।
4: हमने हमेशा बेटों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली सहारा तो बेटी होती है।
5: आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दूंगा।

0: आज माधोपुर में बदलाव की जो लौ जली है उसे बुझने नहीं देना है। जया, किरण दी, हमें रुकना नहीं है, चलिए अब किसी और गांव चलते हैं, किसी और चौपाल पर बैठते हैं, क्योंकि यह संदेश जितना दूर तक जाएगा उतनी ही मासूम जिंदगियां खिल उठेंगी।
1: बेटी है तो भारत है, उससे ही हर आंगन है, उसके सपनों से ही रोशन है ये सारा जीवन। कलम पकड़ेगी, हल चलाएगी, रचेगी नया इतिहास, हर आंगन अब महकेगा, खुशियों का होगा वास। ऊंचाइयों को छुएगी अब, न डरेगी न ये झुकेगी, प्रगति की इस राह पर अब बेटियां ही नहीं रुकेंगी। शिक्षित होगी नारी तो जग में होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधकार, होगा खुशियों का बसेरा। बिल्कुल सही समता, हमारा सफर जारी है, और जब तक हर घर में बेटी को उसका हक नहीं मिलता, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी 89.6 FM की टीम का यही मिशन है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हमारी सोच बदलती है।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM गांव की गूंज, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे और आज से ही अपने घर की प्यारी सी बेटियों को ढेर सारा प्यार, सम्मान और दुलार अवश्य देंगे।
3: याद रखिएगा, बेटी है तो घर है, बेटी है तो प्यार है, बेटी है तो भविष्य है। नमस्कार।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब
11: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
13: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th।
12: आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं, क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 9840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
14: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
15: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
14: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
15: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234020202।
14: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
16: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहाँ पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
17: तो आइए NJPG कॉलेज, जहाँ 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
16: यहाँ होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
17: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
16: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना।

बहुत ही प्यारे और इस एनर्जी वाले सॉन्ग के साथ वेलकम वेलकम वेलकम और वार्म वेलकम आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा और पसंदीदा शो जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। तो भाई आज फिर से हम ज्ञान असली लाइव में आ गए हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आज भी हमारे पास है कुछ खास, लेकिन खास बताने से पहले आप सभी का बहुत बहुत बहुत स्वागत है अगेन एंड अगेन। तो आइए चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप सभी आएँ और अपनी फटाफट से हाज़िरी लगा दें और बताएं कि कैसे हैं आप सब। भाई हाल चाल देखिए, दोस्त जब मिलते हैं तो क्या होता है, पहले हम हालचाल लेते हैं और हालचाल लेने के बाद बातों की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का लेना चाहूँगी हालचाल कि आप सब कैसे हैं, फटाफट से बताइए। जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, आज की बात शुरू करते हैं। लेकिन आज की बात जो हम शुरू करेंगे ना, वो कुछ खास शुरू करेंगे। खास ये है कि बुक्स पढ़ना किसे नहीं पसंद होता, मतलब बुक्स पढ़ना तो मुझे लगता है सभी को पसंद होता है। किताबें जब हम पढ़ते हैं, किताबों की जो खूबसूरती होती है ना, वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे एडिशंस होते हैं, आप पढ़ सकते हैं सब कुछ, लेकिन जो किताबों की बात होती है वो कुछ अलग ही होती है। एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी उनमें खुशबू होती है। याद होगा ना आप सभी को कि किताबें कितनी हमारी अच्छी दोस्त होती हैं, स्पेशली तब जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। भाई मुझे तो, मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं, आप देखेंगे कि मेरी पूरी बुक शेल्फ भरी हुई है। तो जितनी भी बुक्स मेरे पास हैं, कुछ मोटिवेशनल हैं, कुछ स्टोरी है, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ लोगों पर हैं, तो उन सभी पे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। जब भी कभी होता है तो बुक्स, हमेशा कोई पोएम, कोई पोइट्री की बुक है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जब हमारी ही शब्दों को ज़बान मिल जाती है। हो सकता है बहुत परेशान हो किसी प्रॉब्लम से और ढूंढ रहे हो कि कैसे कैसे कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और हो सकता है कि आपने कुछ पढ़ा हो और आपको उसमें उसका सलूशन मिल गया हो। लेकिन फिर मन में आता है कि कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। हम ये तो कहते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए, बट कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है। हम आपको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताएंगे कि जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसी रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, कुछ आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हैं। तो आइए सबसे पहले जिस बुक की मैं बात करने जा रही हूँ वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, ये इस बुक का नाम है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको नॉलेज के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि ये बुक हमें ये सिखाती है, ये समझाती है कि किस तरीके से हम अपने आसपास की नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल करके अपने मन को शांत रख सकते हैं। क्योंकि ये होता है ना कि कई बार बहुत सारी नेगेटिविटीज़ होती हैं आसपास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे हटकर हमें तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक अच्छी तरफ ले जाना होता है ना, बनाना होता है। ये बुक आपको बताती है कि किस तरीके से आप अपनी मन में जो भी नेगेटिविटी चल रही है उसे आप निकाल सकते हैं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, और इससे आपकी जो स्ट्रेस है और आपकी स्ट्रेस आपका है वो दूर होता है। स्ट्रेस के साथ साथ इससे हमारी एंजाइटी भी दूर होती है। ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुक तो बहुत ही अच्छी है, नाम भी बहुत ही अच्छा बताया मैम ने, लेकिन ये बुक हमें मिलेगी कहाँ? तो बता दूं कि आप इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से ये बुक मिल जाएगी। आइए बताते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है थिंक एंड ग्रो रिच। ये जो बुक है इसमें 500 से भी ज़्यादा उन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, उन लोगों की सक्सेस की कहानी है जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया लेकिन आज वो बहुत बड़ा नाम है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो राइटर है उसने इस बुक में दुनिया के, मतलब पूरी दुनिया के 500 से भी ज़्यादा अमीर, और वो जो कि सक्सेस हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से जा कर के एक उन्होंने मकाम पाया है और आज उनका बहुत बड़ा नाम है, उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है, उनकी इंटरव्यूज़ को लिया है, उनकी लाइफ के बारे में बताया है, ताकि आप भी उनके बारे में पढ़ें और मोटिवेट हों। जैसा कि नाम ही है, थिंक एंड ग्रो रिच।
सेकंड आता है कि ये बुक आपके सोचने के नज़रिए को बदलती है और आपको पैसे कमाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक मेंटल हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए फिज़िकली प्रिपेयर होने से ज़्यादा है कि हम मेंटली प्रिपेयर हों। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली प्रिपेयर करती है, आपके सोचने के नज़रिए को बदलती है और आपको कैसे पैसे कमाने हैं और कैसे अपने करियर में आगे जाना है ये भी बताती है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे हमें अर्निंग करनी है, अपना करियर बनाना है, तो हम नेगेटिविटी की तरफ भी खिंच जाते हैं, लेकिन ये बुक आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाएगी। और नेक्स्ट जिस बुक के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत बहुत ज़्यादा ये बुक पसंद है और मैंने इसे कम से कम पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। तो अब उस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि है विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। ये किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ को तो बताती ही बताती है कि उनकी लाइफ में क्या कुछ था और कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने देश के राष्ट्रपति और बाद में मिसाइल मैन बनने का खिताब जीता वो तो बताती ही है, पर साथ साथ में ये भी बताती है कि भारतीय विज्ञान, स्पेस प्रोग्राम, मिशन मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब किस तरीके के चीज़ें हैं और कैसे स्पेस में काम होता है, क्या वहाँ की चीज़ें होती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, या कैसी एक लाइफ होती है मिसाइल मैन की, यानी कि स्ट्रेस है कैसा है सब कुछ इसमें पता चलता है। और उनकी लाइफ के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें आप जान सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से गाँव से आकर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग पहचान क्या कह लें, कैसी पहचान बनाई कि आज भी लोग उसकी मिसालें देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ में कहीं ना कहीं तो मोटिवेशन की ज़रूरत सभी को है। हम हमेशा सोचते हैं कि मोटिवेट होना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए, तो अगर आपके मन में भी है मोटिवेशन, अगर आप भी अपनी लाइफ की कुछ मुश्किल हालातों से कई बार थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करें, तो उसके लिए करना ये है कि इन बुक्स को लें, इन्हें पढ़ें और इनमें जो आपके लिए एक मैसेज है ना उसे समझें। तो आइए लिसनर्स चलते हैं फिलहाल एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यू गए यू आए, आप सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट शो जिसका कि नाम है ज्ञानस्ली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: तो वेलकम बैक, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। वही इससे पहले कि मैं शुरू करूं कि मैं आपको क्या बताने वाली हूं, उससे पहले मेरे पास एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब मैं अपने सभी लिसनर्स से चाहूँगी और खुद भी आपको दूँगी कि गेम किसे पसंद है। भाई गेम तो सभी को पसंद होगा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसे गेम पसंद ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी चॉइस अलग अलग हो, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता होगा, किसी को फुटबॉल, किसी को कैरम, किसी को चेस, या फिर जो बचपन में हम गेम खेला करते थे, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, बर्फ़ पानी, ऐसे कई सारे गेम्स होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसे गेम कभी पसंद ना हो। भाई गेम भी ऐसी चीज़ होती है ना कि आप कितने भी उदास बैठे हों, कितना भी हमारा मूड ख़राब हो, लेकिन अगर सामने से आकर के कोई कह देता है ना कि चलो ना यार कैरम खेलते हैं, तो बस मूड यूं ठीक हो जाता है। या सामने से आकर के कोई ये कह दे कि चलो अरे तुमने पता नहीं है क्रिकेट का मैच आ रहा है, आज फाइनल है, आज टेस्ट सीरीज़ आ रही है, और आज देखो फाइनल है, और देखो विराट ने ना आज कितने सारे सिक्सर लगाए, या फिर धोनी ने अर्धशतक पूरा किया, तुमने देखा नहीं, तो मूड जो होता है वो तुरंत से बिल्कुल फिट हो जाता है, और हम फटाफट से टीवी के सामने होते हैं और अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए चेयर करते हैं, हमारी टीम इंडिया के लिए चेयर करते हैं। ऐसे ही होता है ना, और जिस दिन इंडिया का मैच होता है भाई, उस दिन तो कुछ नहीं, बिल्कुल सोफ़ा छोड़ना नहीं है, टीवी छोड़नी नहीं है, मुझे तो देखना ही देखना है। और यही सेम हमारे साथ तब होता है जब ओलंपिक गेम्स चल रहे होते हैं। भाई ओलंपिक गेम तो ऐसे लगता है ना कि बस अब तो कुछ नहीं है, बस अब तो देखना है कि हमारे देश को कितने सारे पदक मिलते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, और फुल एंजॉय करना है ओलंपिक गेम्स को। ज़रा सा भी एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है, एक भी मैच मिस नहीं करना है, एक भी गेम मिस नहीं करना है, फिर चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। ऐसी ही कुछ दीवानगी होती है ना, ऐसी ही कुछ खुशी होती है, और अपने फेवरेट प्लेयर को चेयर करने का तो भाई अलग ही मज़ा है। अगर आप इमेजिन करें कि रोहित शर्मा आपके सामने स्टेडियम में खेल रहे हैं और आप उन्हें चेयर कर रहे हैं, तो फिर तो क्या कहना, मज़ा ही आ जाता है। कुछ ऐसा ही होता है ना। तो आज आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम ओलंपिक गेम की चर्चा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये कैसा टॉपिक अचानक से हमने छेड़ दिया। तो भाई अगर ऐसा हो कि आपको पता चले कि रोबोट्स के बीच में ओलंपिक गेम हो रहा है, तो कैसा लगेगा? क्या हम सोच सकते हैं कि रोबोट ओलंपिक भी हो सकता है? भाई आजकल जो हमने सोचा नहीं हो वो भी हो सकता है, वैसे ये भी हो रहा है। तो चलिए बताते हैं कि ये कहाँ हो रहा है। दुनिया भर के रोबोट्स के बीच होने वाला ये सबसे अनोखा और बिल्कुल हट करके मुकाबला है जो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, जिसे आमतौर पर रोबोट्स का ओलंपिक भी इस टाइम पर कहा जा रहा है, जो कि बीजिंग में हो रहा है इस समय। और मैं बता दूं कि इसमें जो भी रोबोट्स हिस्सा ले रहे हैं वो पूरी तरीके से इंसानों जैसे दिखने वाले हैं, मतलब पैरों पर चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ये खेल प्रतियोगिता है, और इसका जो मोटिव है यानी कि वो ये है कि इन रोबोट्स को परखना है, लैब से निकल करके अब इन रोबोट्स की जो टेस्ट होने वाली है वो असल लाइफ में होने वाली है, यानी कि असली ज़िंदगी में। इन्हें लैब में बना तो दिया गया है, और इन्हें सारा कुछ, मतलब जो भी इनके फंक्शंस हैं वो इन्हें दे भी दिए गए हैं, लेकिन मेनली इनका टेस्ट करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या ये असली दुनिया में इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, इस रोबोट ओलंपिक को बीजिंग में शुरू किया गया है। ये मैं बता दूं कि इस बार 16 देशों से 666 टीमें यानी कि 666 टीम जो है वो हिस्सा लेने वाली हैं, और इसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, चीन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे और जो कि दिग्गज कंपनियां हैं, देश हैं, वो भी इन सब में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग आने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत तरह के गेम्स होने वाले हैं, बहुत सारे इंस्टेंट्स होने वाले हैं जो कि इन रोबोट्स को परफॉर्म करने हैं। और आपको पता है कि इन्हें ये सब करना कैसे है? इन रोबोट्स को इस ओलंपिक में जो काम करना है वो अपने दिमाग से करना है, यानी कि अपने AI ब्रेन से। पूरी तरीके से ये रोबोट्स अपने AI ब्रेन का यूज़ करके जो भी इन्हें दिया जाएगा, मतलब जो भी स्टंट दिया जाएगा, जो भी गेम होगा, वो सब कुछ इन्हें परफॉर्म करना है सिर्फ और सिर्फ अपने AI ब्रेन का यूज़ करके। और यही इनकी असल एक तरीके से टेस्ट भी होने वाला है कि किस तरीके से वो अपने AI ब्रेन का यूज़ करके बिल्कुल इंसानों की तरह वो सारे काम कर सकते हैं, वो सारे गेम्स खेल सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि इंसान करते हैं, किस तरीके से, यही इनकी असल परीक्षा होगी। तो देखते हैं कि ये रोबोट्स किस तरीके से फुटबॉल, टेनिस या बाकी सारे गेम्स खेलते हैं और पलक झपकते ही खुद को तय करते हैं कि कब उन्हें कहाँ और कितनी स्पीड से रुकना है, चलना है, बैलेंस बनाना है, या फिर कब उन्हें सामने वाले को, बॉक्सिंग भी है, बहुत सारी इसमें गेम्स होने वाली हैं, तो किस तरीके से सामने वाले को हमें डिफेंड करना है, खुद को डिफेंड करना है, ये सारी ही चीज़ें इन्हें अपने AI ब्रेन से करनी होंगी। और इसके लिए इन्हें सारी इंस्ट्रक्शंस जो दी जाएंगी वो भी इन्हें इनका AI ब्रेन ही देगा। और बिना, बता दूं एक बात और है कि बिना किसी रिमोट कंट्रोल के या बिना किसी बाहरी इंक्यूमेंट्स के इन्हें अपने दिमाग से ही इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हाथ में रिमोट लेकर के इन्हें बाहर से कंट्रोल करेगा, कुछ भी नहीं, इन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा इंसानों की ही तरीके से, और ये अपने AI ब्रेन का यूज़ करके इनके सामने जो भी टेस्ट आएंगे, जो भी इशूज़ आएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और अपने लिए मेडल्स भी जीतेंगे। तो भाई बीजिंग में तो इस समय बहुत ही शोर है क्योंकि हर तरफ बस रोबोट की ही दौड़ है कि किस तरीके से सब देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी है कि मतलब कैसे, बहुत रोमांच भी है कि कैसे रोबोट्स चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। अब तक तो हमने सिर्फ इंसानों को ओलंपिक गेम में देखा था कि वो खेलते हैं, जीतते हैं, अपने लिए मेडल्स जीतते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब इस तरीके से एक रोबोट को हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने लिए गेम्स खेलते हैं, मेडल्स जीतते हैं। तो सो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय सभी करने वाले हैं क्योंकि भाई रोबोट्स हैं और रोबोट की मस्ती भी होगी, मस्ती के साथ में गेम्स भी होंगे और गेम्स के साथ होगा बहुत सारा इन्जॉयमेंट और ढेर सारी एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट तो हमें भी है बहुत सारी, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के उस पार आऊँगी तो बताऊँगी आपको कि वो कौन कौन से गेम और क्या क्या स्टंट्स होने वाले हैं जो कि ये रोबोट परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आप बने रहिए आपके अपने शो में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। तो आइए अब चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे से टॉपिक को, जिसको कि हम डिस्कस कर रहे थे रोबोट ओलंपिक की तरफ। तो रोबोट ओलंपिक में अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से स्टंट्स, कौन कौन से गेम्स होने वाले हैं जिनमें कि रोबोट्स हिस्सा लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर तो ये रोबोट्स लॉन्ग जंप, वेट लिफ्टिंग और टग फॉर वॉर जैसे खेलों में अपनी ताकत को यूज़ करने वाले हैं, अपने ब्रेन को यूज़ करने वाले हैं। और अब आते हैं कि स्टंट्स क्या हैं। तो स्टंट्स में अगर बात करें तो रोबोट्स आपस में कुंफू और असली बॉक्सिंग मैच भी लड़ने वाले हैं, जिसमें कि पंच मारना, साइड किक करना और नीचे गिरने पर वापस फुर्ती से उठने जैसे स्टंट्स इन्हें परफॉर्म करने होंगे। ओके भाई, मुझे तो लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब अब तक तो हमने सिर्फ ये देखा है कि दो लोग आपस में लड़ते हैं, बॉक्सिंग में डिफेंड करते हैं, मतलब दो इंसान डिफेंड करते हैं। आप सोचिए कितना मज़ा आएगा जब हम देखेंगे कि रोबोट्स आपस में बॉक्सिंग मैच लड़ रहे हैं, जिसमें पंच मारना, साइड किक करना और उसके साथ नीचे गिरने पर फिर से वापस उठ जाना, इतने सारे जब बहुत ही अमेजिंग वाले स्टंट्स रोबोट्स करेंगे तो भाई मुझे तो लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है देखने में। और इसके अलावा और कुछ हैं जिनमें रोबोट्स हिस्सा लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि रोबोट्स आपस में फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और साथ में ओ माय गॉड, इसे तो हम ये कहेंगे कि सोने पे सुहागा हो गया भाई, क्योंकि ये सिर्फ गेम स्टंट्स और फुटबॉल और टेबल टेनिस ही नहीं खेलने वाले हैं, बल्कि ये तो म्यूज़िक पे डांस भी करने वाले हैं, स्ट्रीट डांस। बिल्कुल सही सुना है आपने, स्ट्रीट डांस। मतलब अब रोबोट म्यूज़िक पे स्ट्रीट डांस करेंगे, वाह, मतलब ये तो कुछ अलग ही है। स्ट्रीट डांस खेल रहे हैं और साथ ही स्ट्रीट डांस जैसी मुश्किल कोरियोग्राफी भी करने वाले हैं। मतलब वाओ, मज़ा ही आ जाएगा ये देख करके कि किस तरीके की ये करने वाले हैं रोबोट्स, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब रोबोट्स इन सारी चीज़ों को करेंगे। और दूसरी चीज़ भाई ये कि खेल के अलावा इन्हें और भी बहुत सारे काम करने होंगे, यानी कि इस रोबोट ओलंपिक में सिर्फ खेल नहीं होने वाले हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टंट्स भी होने वाले हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए हैं। तो आइए बात करते हैं कि खेल के अलावा ये रोबोट्स फैक्ट्री में सामान असेंबल करना, घरों की सफाई करना, घर की आग बुझाना, यानी कि अगर घर में आग लग जाती है तो कैसे बुझाएंगे, और साथ ही साथ होटल में सर्विस देने जैसे असल ज़िंदगी में करने वाले काम भी करते दिखेंगे। ओ माय गॉड, मतलब क्या ही कहना, मतलब ऐसे कहते हैं ना एक्सेलेंट, कुछ वैसे ही है कि मतलब ये रोबोट सिर्फ खेल नहीं करने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रीट में डांस नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये खेल के अलावा फैक्ट्री में सामान असेंबल करना, घरों की सफाई करना, आग बुझाना और होटल में सर्विस देने जैसे काम भी करने वाले हैं जो कि असल ज़िंदगी में इंसान करते हैं। मतलब वाओ, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे या होटल में जाइए और वहाँ पे आपको सर्विस जो दे रहा हो वो एक रोबोट हो। आप रोबोट से कहें मुझे कॉफ़ी चाहिए, रोबोट आपको कॉफ़ी दे दे। आप रोबोट से कहें कि मुझे ये चाहिए, वो आपको ये दे दे। मतलब वाओ, क्या कहना। और घर की सफाई रोबोट्स करें भाई, मुझे तो ये सब सुन के ना इतना, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि मज़ा ही आ जाने वाला है देखने में। तो आप सभी भी ज़रूर इस रोबोट ओलंपिक को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और जब हम देखेंगे कि रोबोट्स किस तरह से ये सारे काम कर रहे हैं, भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि ये रोबोट्स अपनी गलतियों से सीखते भी हैं। अगर एक बार दौड़ते समय गिर जाते हैं तो इनका AI दिमाग तुरंत डेटा को प्रोसेस करता है और अगली बार खुद को बैलेंस करके सुधार लेता है। देखा आपने, गलती करके सुधारने की या सीखने की क्षमता उन रोबोट्स में भी है जो कि अपना AI ब्रेन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें और शायद स्पेशली यूथ्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीज़ नहीं है। जैसे आपने देखा ना कि रोबोट्स गलती से सीखते हैं, अगर एक बार गिर जाते हैं तो दूसरी बार खुद को संभाल लेते हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में ये प्रोसेस कम हो गया है ना। अगर हम एक बार गिरते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते बहुत ही कम है। हमें लगता है अगर हमें कोई हमारी गलती याद भी दिलाता है कि अरे आपसे ये गलती हो गई है, तो हमें लगता है वो मुझे मेरी गलती याद क्यों दिला रहे हैं, वो कौन होते हैं मुझे मेरी गलती रियलाइज़ कराने वाले। लेकिन अगर कोई आपको आपकी गलती रियलाइज़ करा रहा है तो इट मीन्स कि वो आपका भला चाहता है, आपकी खुशियाँ चाहता है। वक्त रहते अगर हम अपनी गलतियों को रियलाइज़

अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें सुधारें और आगे बढ़ें, बिल्कुल इन रोबोट्स की तरह। तो भाई अब तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को कुछ ऐसे ही फटाफट से यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए चलिए चलते हैं इस बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो

0: स्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9876 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट वाला शो जिसका की नाम है ज्ञान असली लाइव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो अभी तक हमने बात की रोबोट्स को लेकर, बहुत सारा फन भी करेंगे, बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे। रोबोट्स कौन कौन से गेम खेलेंगे, कैसा होगा ये रोबोट ओलंपिक, ये सारी ही चीज़ें हमने अभी तक बात की। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है ये मैं आपको आज, वैसे तो हर दिन खास होता है पर आज का दिन भी कुछ अलग और कुछ खास है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज ये एक पोएट्री के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो इस पोएट्री को सुनिए, समझिए और फिर हम बताएंगे कि आखिर आज का दिन खास है क्या। ओल्ड स्कूल है वो, पर स्वैग वही कड़क है, तजुर्बा है धांसू, बातों में भड़क है। हम गूगल पर रास्ता ढूंढते रहे, उनके पास ये असली सड़क है। रील नहीं बनाई पर रियल लाइफ हिट है, बिना जिम के वो एकदम फिट हैं। हम तो कभी कभी गलतियां करते हैं, उनकी एक डांट से सिचुएशन पूरी तरह सेट है, धूप में तप कर ही हमें छांव देते हैं, उन्हीं के कदम पर ऊंचा ये नाम है। सफ़ेद बाल कोई बुढ़ापा नहीं है यारों, जीत कर आए वो सिल्वर मेडल का इनाम है। चलो फ़ोन छोड़ो, उनके पास बैठो, दिल से कहें थैंक यू। फ़ोन छोड़ें, उनके पास बैठें, दिल से कहें थैंक यू। नखरे ना ऐंठ, वो घर की रीढ़ है, नखरे ना करें ना ऐंठ, वो घर की रीढ़ है, हमारी शान है। आओ आज उनका हाथ थाम कर बैठें, जो कहीं ना कहीं हमारे घर की जान है, बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे घर की जान जो होते हैं वो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे घर के बड़े। क्योंकि कहते हैं ना कि जिन घरों पर भी बड़ों की छांव होती है वहाँ कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ आ तो एक बार सकती है, लेकिन आपको तोड़ कभी नहीं सकती है। क्योंकि जब भी आप लड़खड़ाएंगे तो आपको हमेशा एक हाथ कांपता हुआ सा ज़रूर, लेकिन आप किस सहारे के लिए मिलेगा, और उन कांपते हुए हाथों में हमें इतनी इतनी शिद्दत मिलती है, इतना प्यार मिलता है कि लगता है कि अरे कोई बात नहीं, पहाड़ जैसी मुश्किल भी लगता है कि तिनके जैसी है यार, हम तो हैंडल कर ही लेंगे। लेकिन अगर वो ना हो तो उनका खालीपन कहीं ना कहीं पूरे घर को सालता है, और हमें भी महसूस होता है कि वो नहीं है। जब कोई अपनी मम्मी की, अपने दादा दादी की, अपने पापा की, अपने बाबा की या फिर नाना नानी की बातें करता है, तो जिन बच्चों के पास ये रिश्ते नहीं होते हैं उन्हें महसूस होता है ना कि काश मेरे भी नाना नानी होते, मेरे पास भी ये रिश्ते होते। इसीलिए कहते हैं कि वो नहीं है तो याद आती है, पर वो हैं तो तो उन्हें कभी फरियाद करने का मौका नहीं देना चाहिए, उनकी हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज है 21 अगस्त और आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये दिन बुजुर्गों के योगदान, उनके सम्मान और उनसे जुड़े मुद्दों के प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है, अवेयर किया जाता है कि किस तरीके से हम उन्हें एक सम्मान दे सकते हैं और जो भी उनके साथ जो भी मुद्दे हैं उन पर सोच भी सकते हैं। तो आज के दिन उन मुद्दों पर सोचने के लिए वाकई ज़रूरत है। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचें। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो उस चीज़ को लेकर एक बार सोचें। अगर हम ये सोच लें कि हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे मुझे तो उनकी वजह से ये है वो है, ये काम करना पड़ता है वो काम करना पड़ता है, मेरी दादी तो चीज़ें रखकर भूल जाती हैं, मुझे उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। या कई बार हम कहते हैं कि घर के बुज़ुर्ग तो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो देखिए उनकी तो उम्र है, इस उम्र में चिड़चिड़ा जाना, गुस्सा हो जाना, कुछ भी कह देना, चीज़ें भूल जाना, या अपनी हेल्थ से रिलेटेड ही बहुत टाइम से, मान लीजिए अगर वो किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनका थोड़ा सा स्ट्रेस होना, ये सब नॉर्मल है। कहीं ना कहीं हमें उन्हें संभालना होगा। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपको मेरे पास बैठो, मुझे टाइम दो, तो आपको थोड़ा सा उनके पास बैठ कर उन्हें टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत नहीं है, ये उनका हक है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। हर घर के बड़े बुज़ुर्ग को एक सम्मान, एक प्यार, एक सहारा नहीं कहेंगे हम, बट सम्मान, प्यार और आपका वक्त, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा नीड है, वो मिलना चाहिए। क्योंकि हक जो होता है ना, वो रिश्तों में हमें देना चाहिए। जब हम देते हैं तो उसी के बदले हमें प्यार मिलता है। सो अगर वो आपके पास हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें दें और एक ऐसी लाइफस्टाइल भी दें जिसकी वजह से वो खुश रह सकें। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव स्टेडियम।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

जाते हैं बिल्कुल, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। बातें होती ही कुछ ऐसी हैं कि जब हमारा कोई हमसे बातें करता है ना, कोई दोस्त आपका, कोई फ्रेंड या ऐसे भी, कई बार हम जब किसी से बातें करने लगते हैं तो मन इतना लग जाता है कि हम उसकी बातों में खो जाते हैं। और इसी बातें बातें आपसे बातें करते करते हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारा टाइम भी होने वाला है आपको बाय कहने का। लेकिन उससे पहले कि हम जाएं और फिर आएं, फिर आने के लिए जाएं, उससे पहले जाते जाते एक लाइन्स कह लीजिए, मोटिवेशनल लाइन कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप सभी के लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ और इस पर आप सभी की राय भी चाहती हूँ। तो आज का हमारा जो एक लाइन है, एक तरीके से एक सवाल है, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो क्योंकि असली नेक्स्ट लेवल की शुरुआत वहीं से होती है। यानी कि हमें हमेशा हमारी कंफर्ट जो एक लाइफ होती है ना, उसे छोड़ना चाहिए और नई नई चीज़ों को सीखने की और उस तरफ जाने की जो हमने कभी ना किया हो ना, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी तो आती है, पॉजिटिविटी तो आती ही आती है, साथ में हम कुछ नया सीख भी पाते हैं। तो इस पर आप सभी की राय क्या है लिसनर्स, ज़रूर बताइएगा मुझे। कल आऊँगी और फिर इस पर हम और भी बातें करेंगे, यानी कि आपकी राय जानेंगे कि आपकी राय इस पर क्या है। तब तक के लिए टाइम हो चला है तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी आपसे कल नहीं, अभी थोड़ी देर में आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM को सुनते रहिए। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान में नहीं आ पाती है। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था महिलाओं को कमजोरी, थकान या चक्कर आना, इन सभी लक्षणों के साथ तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए, कब जांच करानी चाहिए, और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। आप दोनों का स्वागत है। सेहतिया सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये एनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजे जी, सरल भाषा में कहें तो जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में ही हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब उसे एनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पूरी करनी होती है। ऐसे समय में आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिला पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर गर्भवती महिला और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव का, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान होगी उतना बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
1: और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हमें केवल बीमारियों का इलाज नहीं करना है, बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दुष्चक्र को भी तोड़ना है।
0: दुष्चक्र, वो कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद को कुपोषित और उसे खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में यदि बच्चे भी पर्याप्त पोषण ना मिले तो वो भी कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इस तरह कुपोषण और एनीमिया का एक दुष्चक्र पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, ये बात सचमुच सोचने वाली है। यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। सेहतिया सिंह जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं।
1: अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है, अगर उसे चक्कर आ जाते हैं, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज लगती है, या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगा तो ये केवल थकान नहीं हो सकती है, या आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की रीना की कहानी सुनिए। दूसरी बार वो गर्भवती थी, उसे लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती है। वहाँ खून की जाँच होती है, पता चलता है कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या रीना ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा और यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच कराना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिला को जांच कब करानी चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवाना चाहिए।
0: ANC यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच क्या है?
1: और पूरी तरह गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती है, लेकिन खून की जांच बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर की हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से या 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.0 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया कहा जाता है।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अगला, IFA यानी आयरन और फोलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरत विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोली खाने से ही बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण है।
0: किस तरह का भोजन?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता का ध्यान दे, खासकर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
0: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिलना चाहिए।
0: ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेहतिया सिंह जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, आखिर ये है क्या चीज?
1: सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिला के लिए नहीं होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी होने वाला एनीमिया पाया गया है और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
0: यानी पहले जांच फिर डॉक्टर की सलाह।
1: बिल्कुल, और भी सरल भाषा में कहें तो या आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नस के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी से होने वाला मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर तेज तथा निगरानी में इलाज को जरूरी समझें।
0: तो लोग अपने मन से इसकी मांग नहीं कर सकते?
1: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच के आधार पर होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता है जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई है, कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना बिल्कुल सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर कराइए, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
1: और याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANSC जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना बढ़ती है।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वो नियमित ANC की जांच करवा रही है, क्या वो IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषण, पूरक आहार और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर एनीमिया तथा IVFCM की भूमिका पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP यूपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सुजाता जी।
3: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
4: ये तो सुजाता जी, अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
3: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
4: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
3: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
4: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
3: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
4: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
3: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
4: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
3: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
4: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है, टीबी में हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
3: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
4: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
3: अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
4: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है, और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का आप प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
3: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
4: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
3: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
4: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
3: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
4: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें, कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
3: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
4: सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
3: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
4: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेंदु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका और आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली। मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
5: तो फटाफट शुरू करते हैं आपके पसंदीदा शो को और इस प्यारी सी दोपहर में आइए एक साथ एक ही फ्रेम में एक साथ बोलेंगे शुभ दोपहरिया। तो भाई शुभ दोपहरिया हो चुकी है और आज ब्यूटीफुल सा डे यानी कि फ्राइडे डे के दिन हम करते हैं अपने आप को और निखारने का काम, अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाने का काम। तो चलिए भाई, लेकिन आज का दिन जो है अपने आप को ब्यूटीफुल तो बनाएंगे, लेकिन आज आपकी जो पोयम जो कि मैं लेके आती हूँ, आज थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करते हुए आज के दिन आपकी प्यारी सी पोयम को आपको सुनाएंगी आपकी RJ अंशिका।
6: तो रोज सुनते हैं आप कविता की अनकही कहानी RJ समता की जुबानी। तो चलिए आज सुनाते हैं कुछ नई कहानी हमारी वाणी के साथ। ऐसा कुछ मैंने बिठाने की कोशिश की थी लेकिन बैठा नहीं। चलिए कोई बात
5: ठीक है, इट्स ओके, कभी-कभी हो जाता है,
6: कभी-कभी हो जाता है। तो कभी-कभी वाला है कि चलिए आज जो पोयम है उसका टाइटल है रिश्तों की मजबूती। रिश्ते केवल धागे नहीं, ये तो दिल का संगम है, सुख दुख के हर मौसम में जो बनते सुरमई सरगम है। दिखते हैं ये नाजुक, दिखते हैं नाजुक पर होते नहीं, हर तूफान सह लेते हैं। सच्ची चाहत और अपनेपन से बनते हैं और जन्म जन्म यूं ही रह जाते हैं
5: जी।
6: भरोसे की नींव पर ही टिकती है, भरोसे के नींव पर ही टिकते हैं और वही होती है अनमोल कड़ी। जहां टकरार भी हो जाए वहां माफी भी होती है बड़ी। वक्त की धूप चाहे कितनी भी बेदर्द और तीखी हो, वक्त की धूप चाहे कितनी भी बेदर्द और तीखी हो, रिश्तों की घनी छाँव में कट जाती है हर मुश्किल घड़ी। कड़वाहट को भूलकर जो अपनों को गले लगाते हैं, कड़वाहट को भूलकर जो अपनों को गले लगाते हैं, वही लोग रिश्तों की असली अहमियत को समझ पाते हैं। अहंकार की दीवार ढह जाती है, अहंकार की दीवार ढह जाती है पल भर में वहाँ जहाँ निस्वार्थ भाव से सब एक दूसरे को अपनाते हैं। दूरियां कितनी भी हों पर दिल कभी जुदा नहीं होते। सच्चे रिश्ते वक्त के थपेड़ों से कभी खफा नहीं होते। प्यार की सींच से जो हर पल महकते रहते हैं, प्यार की सींच से जो हर पल महकते रहते हैं, वो अनमोल रिश्ते जिंदगी में कभी फना नहीं होते। वो अनमोल रिश्ते जिंदगी में कभी फना नहीं होते।
5: बहुत ही प्यारी सी कविता और जैसा कि हर बार हम लोग कोशिश

0: यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट एंड बेस्ट आप सभी तक पहुंचाने का काम हमारा रहता है। तो आज की पोयम भी वैसी बेस्ट ऑन बेस्ट, बहुत ही प्यारी सी कविता जो कि अंशिका लेके आई थी आज। तो चलिए हम अब रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ मैं बता देती हूँ। आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आज की इस पोयम से ही कुछ मिलता जुलता है कि रिश्ते हमारे दिलों में होते हैं पहली बात तो, और वो इंसान अपना नहीं होता है जो हमारे साथ में रहता है। मतलब मेरा मानना ऐसा होता है कि हम अगर चार दीवारी में साथ रह रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता हमारा अपना है, हमारे साथ बिता रहे हैं या हमारे साथ रह रहे हैं। रिश्ता तो वो होता है जो दूर रह करके भी हमारे पास रहे। और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये है कि आजकल खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते जो होते हैं ना, वो कामयाबी की ओर जाते हैं। और ऐसे ही रिश्तों को वो मुकम्मल जहाँ भी मिलता है, चाहे वो एक दोस्त दोस्त का हो, चाहे वो घर में या दूर बैठे हुए एक फ़ोन कॉल से हमारा कोई फ्रेंड बनता है, या फिर किसी एक रिश्ते को लेकर के हो। तो साथ ही साथ में जैसा कि अभी मैंने बताया कि रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही एक सबका है कि अगर हमने कोई रिश्ता किसी से बनाया है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो ब्लड का हो, दिल का रिश्ता भी मायने रखा जा सकता है और सालों साल ये रिश्ता आजीवन भी चल सकता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना, हम अपनी बगिया फूलों से क्या महकाएंगे, हम अपनी बगिया फूलों से क्या महकाएंगे, ये दिल तो रिश्तों की महक से पहले ही महक रहा है। तो दिल के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि मेरा और मैम का, हमारा भी तो दिल का रिश्ता है।
0: Exactly, हमारा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी एक दिल का रिश्ता है। और दिल का रिश्ता कहा जाता है ना कि सबसे प्योर, आजकल के जमाने में ना दिल के रिश्ते ही हैं जो काफी हद तक और काफी आगे जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए फटाफट एक गाना सुना देते हैं और आज के टॉपिक को फिर हम लेकर के आएंगे। बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि कौन सी किस बात पे होता है वो हम अभी जानेंगे।
4: आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला ही टॉपिक है, जैसे कि आज रिश्तों का दिन है, रिश्तों को लेकर आज हमारा टॉपिक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। वैसे तो रिश्तों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ रिश्तों में पॉजिटिविटी की तरफ जाना बहुत

0: मुश्किल हो जाता है। हम कई चीज़ों को, जैसे कई बार अपनी नेगेटिव भावनाओं को भी देखना शुरू कर देते हैं। जैसे हर बार हम कहते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा मुस्कुराते रहो, ये सोच हमेशा हम नहीं रख पाते हैं। कई बार आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मानने लगते हो कि हाँ प्रॉब्लम है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक तरह से है कि इंसान के अंदर अचानक जो शुरू हो जाता है, जिसे अचानक हमारे अंदर नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो होता है, हम उसे दबाते रहते हैं, हमेशा खुद से ये कहते रहते हैं कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, बट ऐसा नहीं होता है। और वहीं शुरू हो जाता है कि हमें लगता है कि कैसे चीज़ें होंगी। और यही टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, यानी कि जो टॉक्सिक बातें हमारे अंदर होती हैं मैम, उन्हें हमें कभी दबाना नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा होगा या कुछ बुरा हो रहा है, तो उसको मानो कि अच्छा ये बुरा है तो ये बुरा होगा, अगर ये बुरा हो रहा है तो ठीक है ये बुरा होगा। इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा माननी चाहिए, समझनी चाहिए। कई बार जब हम उन्हें इग्नोर करते जाते हैं तो वही हमारे अंदर पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी की तरफ हो जाते हैं और चीज़ें अंदर भरना शुरू हो जाती हैं। इसे ही कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। ये एक तरह से इंसान में धीरे धीरे शुरू होती है मैम। जैसे कि बचपन से ही, अगर हम बात करें तो बचपन से ही रोना, गुस्सा होना या डांट पड़ी हो तो बच्चे कई बार अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं। जैसे कई बार आपको लगता है कि आपको डांट पड़ी है या हमें कुछ, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होती है तो हम उसे छिपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है। तो वो चीज़ है कि आपको अपने आप को छिपाना नहीं चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप इस तरह की चीज़ कहेंगे तो फिर ये लगेगा कि अरे ये कैसे। तो कभी भी अपनी उन चीज़ों को छिपाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि सोशल मीडिया है या समाज है, या हमेशा हम जब भी देखते हैं तो हमेशा हमें खुशी की चीज़ों को दिखाया जाता है, हमेशा खुशी को ही बढ़ावा दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है। तो हमें लगता है कि उदास होना या कमज़ोर होना गलत है, लेकिन कभी भी आपकी उदासी आपकी कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं, होता है ना, दोनों पहलू होते हैं, कभी पॉजिटिविटी होती है तो कभी नेगेटिविटी भी होती है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि जब खुद को, जैसे हम स्ट्रेस में जब खुद होते हैं और आसपास पॉजिटिविटी भी देखते हैं तो हमें वो नेगेटिव ही साइड लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर वक्त पॉजिटिविटी का ही वो नहीं पहन के रखना चाहिए। अगर नेगेटिविटी है तो आपको उसे बिल्ड करते रहना चाहिए।
1: ये जो प्रॉब्लम है इसका जो निवारण है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है तो इसका निवारण भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं होती जिसका कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन ना हो। अगर उसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर होता है। तो लेकिन हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद आएंगे आपका इसका निवारण ज़रूर से लेंगे।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं
5: दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के। अभी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था जो कि था कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक ये कहा जा सकता है कि अगर स्वस्थ मानसिक अगर जीवन होता है ना, अगर हमारा जैसे मानसिक स्थिति हमारी अगर सही होती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम फैसला अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अभी दो पॉइंट बताए थे अंशिका ने, और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि हमारी भावनाओं को व्यक्त होने दें और उसे जैसे उससे दूर नहीं भागना चाहिए, या फिर अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि अगर हमारे साथ कोई उसकी सहानुभूति हो रहा है तो वो भी हो सकता है। उसका निवारण जो है वो बहुत ही अच्छा है। आइए तो हम सीधे बात करते हैं आज उसके निवारण पर, यानी कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं वाकई में, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिविटी को जन्म देते हैं अपने घर में हो या फिर बाहर हो। तो सबसे पहला है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। पहला पॉइंट है कि ये समझना जरूरी है कि उदासी, गुस्सा, डर और निराशा भी इंसानी स्वभाव का हिस्सा होता है और ये पूरी तरह से नॉर्मल होता है। ये आना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आएंगी तो हम अंदर से कहीं ना कहीं एक गहरे सोच में जा रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोग आजकल सभी की लैंग्वेज में ये आता है कि भाई वो एक बहुत ही गहरे हुए डिप्रेशन में जा रहा है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी भावनाओं को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं, उदासी हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, डर हो जाता है, निराशा हो जाती है, तो हम उसे अकेले अकेले पीते रहते हैं। और एक बार फिर ऐसा स्टेज आता है कि जो कि वो बच्चे और वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये ऐसी भावनाएं अगर आ रही हैं तो उसको खुलकर व्यक्त करना चाहिए और ये नॉर्मल है। दूसरा पॉइंट है कि सहानुभूति वाला जो एक भाषा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ये कहने के बजाय मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे साथ बहुत कठिन है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस, ये कहना किसी के लिए, इसको कहते हैं मॉरल सपोर्ट। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई भी अगर ऐसा इंसान कोई है जो आपको मॉरली सपोर्ट कर रहा है कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ और आई एम ऑलवेज विथ यू, तो ये लगता है कि हाँ हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शेयर आउट कर सकते हैं किसी के साथ में। थर्ड पॉइंट इज कि भावनाओं को हमेशा से कहते हैं ना कि व्यक्त करना, किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना। जब रोने का मन करे तो रोएं, दुख को दबाने के बजाय उसे बाहर निकालने का रास्ता दें। कहा जाता है कि जब किसी के घर किसी की कोई किसी अपने की डेथ हो जाती है तो लोग उसे जबरदस्ती रोने देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका असर सीधे आपकी मानसिक स्थिति पे पड़ सकता है। तो इसीलिए ऐसे ही सारी भावनाएं होती हैं। जब कभी कुछ ऐसा होता है कि हाँ हमें किसी की बात हर्ट हो जाती है, किसी को देख के कुछ हर्ट हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं पर हमें उसको झेलना पड़ता है, तो उसको सुनते करते हुए हमें क्या होता है कि बहुत दुख होता है। तो जब भी रोने का मन करे, दुख को दबाने के बजाय उसे बाहर निकालें, क्योंकि दुख को अगर रास्ता मिलता है तो मन उससे हल्का होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक टॉपिक आता है कि सोशल मीडिया से दूरी। इंटरनेट पर दिखने वाली परफेक्ट लाइफ के जाल से बाहर निकले और असल जिंदगी को जाने कि वो क्या है और आपके लिए कितना परफेक्टली वो है। क्योंकि कहा जाता है कि पर्दे पर दिखाई देने वाले लोग जरूरी नहीं है कि उनका सामने का व्यक्तित्व कुछ और है और उसके पीठ पीछे का व्यक्तित्व कुछ और है।
4: बिल्कुल, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि सारी ही चीज़ें किस तरीके से करनी चाहिए और कहीं ना कहीं बिल्कुल सोशल मीडिया से थोड़ा सा हमें दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि हमें लगता है ना कि सब कुछ परफेक्ट है, बट हमेशा सब कुछ परफेक्ट होता नहीं है। इसलिए अगर नेगेटिविटी को आजमा रहे हैं, उसको स्वीकार रहे हैं, तो पॉजिटिविटी भी स्वीकार रहे हैं, दोनों ही साइड्स हमें स्वीकारने चाहिए। तो आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: Delicious.
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
7: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो जिसका की नाम है सुन सहेली, जो लेकर आती हैं आपकी अपनी RJ समता और RJ अंशिका। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले हमारे सेगमेंट की तरफ, जो कि है कि अभी तक हमने जाना कि किस तरीके से आप अपने रिश्तों को निखार सकते हैं, उनमें एक निखार ला सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को दूर कर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है किस तरह आप अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। तो आज के दिन हम आपको ब्यूटीफुल सा डे इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम ब्यूटीफुल रेमेडीज भी आपको बताते हैं। तो आइए चलिए बताते हैं कि हमारे जो हाथ होते हैं ना, मतलब फीमेल्स के तो मन में होता ही है ना कि उनके हाथ सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही खूबसूरत हों। तो आज हम बताएंगे अपने हाथों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ ब्यूटीफुल सी रेमेडीज़। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अपने हाथों की जो स्किन होती है उसे सॉफ्ट और शाइनी रखने के लिए सबसे पहला जो टिप आज हमारे पास है वो ये है कि रात को सोने से पहले थोड़ी सी दूध की जो मलाई होती है, मतलब जो आप दूध लेते हैं तो घर में मलाई निकलती है ना, वो मलाई ले लेनी है और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर इसे अपने हाथों पर तब तक रगड़ना है कि जब तक थोड़ी देर रगड़ना है, जैसे 5 से 10 मिनट आप रगड़ें और उसके बाद में 10 मिनट बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें।

0: इससे हाथों का कालापन जो होता है वो दूर हो जाता है और आपकी जो स्किन होती है वो भी सॉफ्ट हो जाती है। अब आते हैं कि कुछ लोगों के हाथ पर डेड स्किन बहुत हो जाती है, मतलब देखा होगा आपने कि जगह जगह काले काले जैसे धब्बे जैसे हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब क्या करें, कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने हाथों से डेड स्किन को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक चम्मच नारियल का तेल और आधा चम्मच चीनी ले लेनी है। एक चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए, आधा चम्मच उसमें चीनी मिला लीजिए और हाथों पे स्क्रब करिए। इसके बाद हाथों को धो करके आप मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजर अगर नहीं है तो नारियल का तेल लगा सकते हैं।
1: और आज मैं आपको बताऊंगी नारियल तेल से भी केवल एक नारियल तेल जो कि हर घर में हर किचन में होता है। तो बहुत सारे टिप एंड टेक्निक्स पहले अंशिका बता ले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक नॉर्मल नारियल का तेल जिसको आप लोग कहते हैं अरे नारियल के तेल से कौन सी फेस पैक बनता है, बट नारियल का तेल इतना कुछ इफेक्टिव हो सकता है हमारी स्किन के लिए कि मैंने उसका इस्तेमाल किया है और फिर मैं उसका रिजल्ट आपको खुद बताऊंगी इस चीज़ को।
0: तो चलिए जानेंगे नारियल के तेल से बहुत ही अच्छी सी हम रेमेडी। उससे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि हाथों को थोड़ा सा जैसे डेड स्किन हो जाती है ना मैम, कई बार होता है हाथ काले पड़ जाते हैं कई जगहों से, तो उसके लिए था कि हाथों को धो करके थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। दूसरा आता है कि बर्तन या कपड़े धोने के बाद कई बार हाथों में सूखापन जैसे ड्राइनेस हो जाती है, तो उसके लिए है कि रोज़ाना कुछ बूंद अगर आपके पास हो तो जैतून का तेल ज़रूर लगाना चाहिए। अगर रोज़ आप कुछ बूंदे जैतून का तेल लगाएंगे तो इससे आपके हाथों में वो जो रूखापन आ जाता है ना कपड़े धोने की वजह से वो नहीं आएगा। और जैतून का तेल अगर नहीं है तो जैतून के तेल की जगह पे बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी स्किन जो ड्राई हो जाती है ना वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है।
1: एग्जैक्टली। तो अब मैं बताऊंगी आपको नारियल के तेल से फेस पैक, यानी आप सुन करके आपको लगेगा और आपके किचन में भी मतलब हर किसी के बाथरूम में हर किसी के किचन में नारियल का तेल होता ही होता है। तो मैं आपको बताऊं कि केरला साइड में तो नारियल का तेल जो होता है ना उसमें खाना बनाते हैं वहाँ की महिलाएं, और उसके आपने देखा होगा कि केरला की जो महिलाएं होती हैं उनके बालों की लेंथ और उनकी स्किन इतनी शाइन करती है, मतलब एज इतनी बड़ी भी हो जाती है लेकिन फिर भी उनकी जो स्किन की जो शाइनिंग होती है ना वो बहुत ही बेहद अच्छी होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगी कि आप नारियल का तेल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ले लेना है कि कोई भी अगर आपने घर का कुछ बनाया हुआ है पैक, भाई मेरे पास तो मैं बनाती हूँ, जैसे गर्मियों में क्या होता है सर्दियों में ऑरेंज आता है तो उसको पील करके उसका जो छिलका होता है उसको सुखा लेती हूँ और उसका पाउडर बना लेती हूँ और वो उसको स्टोर करती हूँ, यानी पूरी गर्मी भर चल जाता है नवंबर तक। और फिर नवंबर में आ जाते हैं संतरे तो खैर अभी भी मिलते हैं, आप किसी भी सिटी में चले जाओ तो अब तो हर एक फल हर एक मौसम में मिल रहा है, लेकिन जो नेचुरल आते हैं सर्दियों में संतरे वो आपको इस मंथ में नहीं मिल सकते हैं। तो मैंने उसको मैं क्या करती हूँ उसके छिलकों को सुखा करके उसको अच्छे से मिक्सर में या किसी में आप उसको ग्राइंड कर लें और उसका फाइन पेस्ट बना लें उसको सुखा करके। आपको एक चम्मच अपनी स्किन अपने फेस के हिसाब से एक चम्मच या आधा चम्मच आपको वो ले लेना है, यही जो कि किसका
0: अभी आपने बताया ना संतरे के
1: छिलके का पाउडर उसमें मिला देना है, आधा चम्मच आपको चावल का आटा और 2-3 ड्रॉप आपको डाल देनी है नारियल के तेल की और 1-2 ड्रॉप आपको डाल देनी है उसमें बादाम रोगन, उसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल और गुलाब जल से इसको अच्छे से आप पेस्ट बना लें और आप इसको कम से कम 15 दिन तक लगाएं। जो आपकी डेड स्किन है, जो आपकी स्किन काली पड़ चुकी है, जिसमें आपकी टैनिंग हो चुकी है, 100% मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ कि अगर जिन्होंने ये 15 दिन तक ये पैक लगा लिया ना तो इतनी अच्छी स्किन हो जाती है। और मैं तो इसको इतना अच्छे से संभाल के रखती हूँ, जब कहीं ऐसा बहुत मेजरली कहीं जाना होता है ना फिर मैं उस पैक को यूज़ करती हूँ कि लगाने के बाद ना इंस्टेंट ग्लो आ जाता है फेस पे। तो इसको लगाएं और अपने इसका जो इस रेमेडी का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सेकेंड थिंग कि आपकी आँखों के नीचे और नहीं आँखों के नीचे का मैं बाद में बताऊँगी, पहले बताऊँगी आईब्रोज के बारे में कि किसी की बहुत हल्की होती है और ब्लैकिश भी कम होती है, तो क्या करना है कि एक बादाम को आपको थोड़ा सा जला लेना है, उस पर आपने गैस पे रख के चम्मच की सहायता से या चिमटे की सहायता से उसको पूरा जला लें, एक बादाम को बिल्कुल काला कर लें, छिलका नहीं उसका उतारिएगा, छिलके से तो उसको बिल्कुल काला कर लें और फिर उसको ठंडा होने दें, उसको पीस लें, मतलब बिल्कुल काला हो जाए फिर उसको पीस लें और नारियल के तेल में मिला के आप इसका 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल

0: कर सकते हैं कि आप इसको, जो लोग बहुत आईब्रो पेंसिल लगाती है ना, जिनके बहुत डार्क होते हैं, आपने उसमें इस्तेमाल कर लेना है हल्की सी एक पेंसिल लेकर के। और अगर आपको परमानेंट चाहिए तो आपको नाइट में लगा के सो जाना है 15 से 20 दिन तक, आपकी आईब्रो और आई लैशेस जो हमारी आंखों की पलके होती हैं वो भी डार्क करने के लिए ये रामबाण एक रेमेडी है। तो इसको अपनाएं और इसका फीडबैक हमें ज़रूर से दें।
1: वाह, मतलब मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे, संतरे वाले भी और आईब्रोज वाले भी। तो आप इन दोनों को यूज़ करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा जैसे कि मैम ने कहा। तो आइए चलिए चलते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून।

हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट पे पहुंच गए हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं आज अपने कुछ रिश्तों के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि लेकर के आए हैं।
2: तो पहला हमारा टिप जो आज है वो ये है कि सराहना करें। अक्सर हम अपनों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनके छोटे छोटी चीज़ों के लिए उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, अगर वो छोटे छोटे अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, यानी कि अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी भी है, तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने अपनों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और जब आप उनके साथ बैठे हों तो कभी भी टीवी, फ़ोन या लैपटॉप की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे मैम हमें थोड़ा टाइम मिलता है अपनों के साथ, लेकिन उसमें भी अगर चार लोग हैं, चार फ़ोन हैं, तो चारों अपनी ही फ़ोन में रहते हैं। तो अगर कोई बात करना चाहता है आपसे या कुछ कहना चाहता है तो उसे इग्नोर फील होगा।
1: तो आजकल तो यही हो गया है कि अगर एक रूम में चार लोग बैठे हुए हैं तो सब जगह सब लोग अपनी अपनी फ़ोन को लेकर के ही बैठते हैं।
2: तो उसे मान लीजिए किसी के हाथ में फ़ोन नहीं या उन्हें कुछ बात भी आपसे करनी हो तो वो इग्नोर फील करेंगे कि अरे ये तो अपने फ़ोन में है ना, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप उनसे बात कीजिए जो भी वो कहना चाहते हैं। दूसरा आता है कि स्पेस ज़रूर देना चाहिए। हर इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में अकेले समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब वो अकेला रहना चाहता है, कुछ टाइम लेना चाहता है चीज़ों को समझने के लिए, जो उसे ज़रूर देना चाहिए। अपनी हॉबीज़, आपकी जो भी हॉबीज़ हों, आप अपने स्पेस टाइम में उन्हें ज़रूर करें।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि अगर अपने स्पेस टाइम में हम अपनी हॉबीज़ को करते हैं तो वो धीरे धीरे हमें खुशी दे देती हैं।
1: Exactly.
2: दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी किसी से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। गुस्से में रिश्ते जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए सोच समझ कर अच्छे से बात करें। दूसरा पॉइंट है कि कभी भी अकेलेपन का एहसास रिश्तों में नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना मैम कि सबके साथ रहते हुए भी हमें अकेलेपन का एहसास होता है कि हम अकेले हैं। तो वो घर के लोगों की और लोगों की जिम्मेदारी होती है कि एक इंसान को कभी भी रिश्तों में अकेलापन ना लगे। अगर हमारे रिश्तों में हमें अकेलापन लगने लगता है तो वो धीरे धीरे आपके रिश्तों को कहीं ना कहीं खोखला कर देता है। दूसरा आता है पॉइंट कि कभी भी जैसे ताने नहीं मारने चाहिए। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना किसी एक खास चीज़ को लेकर के बार बार पिंच करना। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर किसी की हाइट कम है या किसी का रंग सांवला है या कोई भी ऐसी चीज़ है, ये तो बॉडी को लेकर के बात हो गई। कई बार हम किसी के बिहेवियर को लेकर के पिंच करते हैं कि अरे उनकी तो आदत ही है ना ऐसे बोलने की, तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही सही, पर ये कई बार रिश्तों में हर्ट कर जाती हैं। और जब चीज़ें हर्ट होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम बात भी नहीं करते तो वो खाई बनती जाती है, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को भी रिश्तों में पिंच नहीं करना चाहिए।
1: एग्जैक्टली exactly. और क्योंकि अगर एक घर की बात है, देखो एक कार्य जहाँ पर कोई जॉब की बात होती है तो चलो ठीक है, कोई नहीं, वो ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अगर कोई अगर एक जगह पर आप अपने एक ही घर में हैं तो अगर चार लोग आपस में इस तरीके से हैं तो फिर काफ़ी अनबन के साथ में उस घर में वाकई में फिर एक घुटन का माहौल होने लगता है कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके हमें अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से सुदृढ़ बना करके रहना होता है। और लेकिन ये जिम्मेदारी केवल एक तरफा नहीं होती है, जब तक दोनों तरफ से रिश्ता बनाने के लिए एक उत्साह और एक लगन ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक ही लोग अगर बार बार रिश्ता निभाता रहे और दूसरा सिर्फ और सिर्फ उन्हें यूज़ करता रहे तो ये भी रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं और बहुत जल्दी ख़राब होने की कगार पे होते हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधे चैट बॉक्स में और माफ़ी चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हमने नाम नहीं लिया था, बट कोई नहीं। नव्या गुंडा मैसेज लिख रही है कि सब सो रहे हैं क्या? हाँ नव्या, मुझे लग रहा है कि सभी लोग सुन सहेली में सो जाते हैं क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसा है दिन और दोपहर का, तो सभी लोगों को नींद भी आती है। महेंद्र जी लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, वेलकम है महेंद्र जी। सबलू जी स्वागत है, आशु जी आपका भी स्वागत है, और प्रीति जी शुभ दोपहरिया, एंड उस्मान खान जी हेलो आरजी मैम, तो हेलो गुड आफ्टरनून, और जंतर मंतर आरक्षण हटाओ आंदोलन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी। और उसके बाद में आ गए हैं कोई हमारे नए लिसनर्स हैं, वो हैं मुकेश जी। अच्छा वो तो मॉर्निंग में ही आए थे, लेकिन नव्या जी सबसे पहले आ गई थी जो कि 1:45 पर ही। तो चलिए कोई नहीं, और अब हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन आएंगे आपसे टाटा।

बाय करने के लिए एक छोटे से प्यारे से सॉन्ग को सुनेंगे। मैं ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा छोटा कोई गाना मिल जाए ताकि हम अभी एक गाना सुनाएंगे और चलते चलते आपको बाय करेंगे, यानी कि चलते चलते वाला सॉन्ग के साथ।

0: एग्जैक्टली और कल मिलेंगे, यानी कल का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल वाला होता है। आप सभी को पता है कि कल है सैटरडे, हमारा वीकेंड वार भी होता है, क्योंकि कल के बाद हमारी परसों एक दिन की छुट्टी होती है। तो कल हम लोग बहुत ही अच्छे से, मजे से, मस्ती से, और जिसे कहते हैं ना मन भावन वाले तरीके से हम शो भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बाकी दिनों में भी शो करते हैं, बट कल के दिन सैटरडे के दिन होती है बहुत सारी मस्ती एंड धमाल। तो मिलेंगे कल आपसे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
5: बल्ली कित्थे?
6: ओ देश मेरे।

नमस्कार आदाब, स्वागत करते हैं आपका हम आपके अपने वाले एफएम रेडियो 99.6 एफएम। यह गोंडा शहर की धड़कन पर वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं आपके अपने फरमाइशों का कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा फ्राइडे स्पेशल। भैया आज होने वाला है पूरे 2 घंटे आपके अपने फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्जुनती और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, आई होप आपने मुझे भी मिस किया होगा। फिलहाल आइए चलते हमारे पहले गाने की तरफ और पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो सब जी की आई थी, हालांकि अभी तक उनका गाना हमें नहीं मिला है। तो आइए चलते हैं, हम बढ़ते हैं देवी प्रसाद जी की फरमाइश की ओर, उनके गाने को एंजॉय करते हैं। लता जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना उन्होंने फरमाइश कर दी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और गाने का नाम है बता दो क्या लाना है। भैया जब तक बताते हैं इस गाने में लता जी क्या लाना है तब तक के लिए आप अपनी अपनी चीजें बता दीजिए हमारे देवी प्रसाद जी के लिए, क्या आपको क्या चाहिए। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, आई रिपीट 6393316429 और हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

देवी प्रसाद जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और मशरू सुल्तानपुरी के बोल। प्यारा सा नजराना पिया याद रखोगे या भूल जाओगे, देवी प्रसाद जी ने हमसे पूछा था, बता दो क्या लाना है। और हमको लगता है कि इस गाने में लता मंगेशकर जी ने बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। फिलहाल के लिए अगले गाने की तरफ यानी कि अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप सुन रहे हैं आप सभी का फेवरेट वाला FM रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा यानी कि आपके फरमाइशों वाला कार्यक्रम। और हम अपनी अगली फरमाइश को तब ट्यून करेंगे जब हम अपने चैट बॉक्स में मैसेजेस ले लेंगे। तो भैया हमारे साथ जुड़े हैं चैट बॉक्स में रिजू जी, उसके बाद हैं मोहम्मद मुसीफ जी जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजी उन्नति जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। सबलू सावन जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखा है नमस्कार आरजी उन्नति मैम जी, नमस्कार आपको भी, कैसे हैं आप? एंड सबलू जी लिख रहे हैं नमस्ते आरजी उन्नति जी, छोटा भीम

आप बरेली वाली मैम है। ओ माय गॉड, इतने सारे नाम हैं कि हमारे सब लोग जी कन्फ्यूज हैं, कौन कौन से वाला दें, कौन सा आज ना दें, किसको छुट्टी पर भेज दें और किसकी अटेंडेंस आज हम लगा ही दें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे सारे नाम याद दिला दिए। राजू टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी स्वागत कर लेते हैं हम उनके अपने शो कॉल ट्यून गोना में। एंड इसके बाद लिखा है, समय के साथ सब कुछ भूलना पड़ता है जनाब। ओ माय गॉड, ये समय और सब कुछ भूलने वाली जो बातें हैं ना, ये मेरे को हजम ही नहीं हुई आज तक, पता नहीं क्यों, लेकिन दिमाग इतनी ज़्यादा याददाश्त रख लेता है मेरी कि जो चीज़ें मुझे भूलनी है वो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलती हूँ। जो मुझे याद रखना है, जैसे मम्मी कह देती हैं कि बेटा दूध उबलने ना पाए, वही मैं भूल जाती हूँ। अगर मुझसे कोई कहेगा ना कि जनाब वक्त के साथ कुछ चीज़ें भूल जाओ, ना, वो मेरे दिमाग से नहीं जाता। कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेन बॉनमीटा मेरे दिमाग के अंदर चला गया है, जाना उसे मेरी हड्डियों में था लेकिन वो पहुँच के मेरे न्यूरॉन्स में गया, और इसलिए हम नहीं भूल पाते हैं जनाब। फिलहाल के लिए बात तो बहुत सही कही है आपने, वक्त के साथ भूलना पड़ता है, लेकिन हर एक चीज़ भूली नहीं जाती। कुछ चीज़ों को आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो उन्हें भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हो। आप भूलते कुछ भी नहीं हो, बस एक्सेप्ट करते हो। फिलहाल क्या ख्याल है, अगले गाने की तरफ बढ़े? अगर हाँ तो आइए चलते हैं और हम ट्यून कर लेते हैं अपने सबलू जी की फरमाइश, और क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो हमारे सबलू जी सुनना चाहते हैं चंदा रे मेरे भैया से कहना, क्या कहना है आइए सुनते हैं रक्षाबंधन स्पेशल। हालांकि मैं भी सोच रही हूँ इस बार जाके 15-20 राखियाँ ले आऊँ और सबको राखी बांध दूँ एक लाइन से, बस तोहफे का इंतजाम आप लोग कर लीजिए, राखी मैं लेकर आती हूँ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉलर ट्यून गोंडा। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन।

हमारे सबलू जी की फरमाइश तो आपने एंजॉय कर ली है और अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश की ओर बढ़ने का। हमारे मोहम्मद मुसीब जी ने इतने खूबसूरत गाने की फरमाइश की कि सुनने के बाद आपको मजा आ जाने वाला है, क्योंकि गोविंदा का गाना है, करिश्मा कपूर उसके अंदर नजर आई है। और हम आपको बता दें, जब गोविंदा और करिश्मा कपूर साथ में आते हैं तो क्या ही आइकॉनिक गाना बनता है। 1994 से खुद्दार फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं कुमार सानू अलका जी की आवाज, अनु मलिक का म्यूजिक, राहत इंदौरी के बोल। गाने का नाम है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। एंड इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद चांद जी जुड़ गए हैं फ्रॉम हथियागढ़, आपका स्वागत कर लेते हैं। एंड धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिख रहे हैं, उन्होंने जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक, माय सॉन्ग भुला ना सकोगे हमें भूल कर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच क्योंकि आपने मुझे बेस्ट ऑफ लक भी कहा है। आप जब भी आते हैं ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने की अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए आप अपनी फरमाइश भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

राहत इंदौरी के बोल हैं और आवाज दी है कुमार सानू अलका जी ने। अनु मलिक साहब ने इसमें अपना संगीत लगाया है, संगीत से खूबसूरत से गाने में चार चांद लगाए हैं। और खुद्दार फिल्म से आप सुन रहे हैं, 1994 में फिल्म रिलीज की गई थी, मोहम्मद मुसीफ जी की फरमाइश थी, बेहद खूबसूरत बेहद ही प्यारी। और हमारे धर्मेंद्र मोहन जी भी तारीफ कर रहे हैं इस गाने की। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, अगले गाने की ओर। लेकिन उससे पहले आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि आज है फ्राइडे स्पेशल, यानी कि आपके दो घंटे का प्रोग्राम, 3 से 5 लगातार आपकी अपनी फरमाइशों का कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, बहुत ही प्यारी, गाने का नाम भी इतना खूबसूरत है कि गाने का नाम ही खूबसूरत है। फिलहाल हम आपको बता दें, रोग से आप सुनने जा रहे हैं नीलेश मिश्रा जी। हाँ, ये वही नीलेश मिश्रा हैं जो आपको यादों का एडिट बॉक्स नाम के कहानियाँ सुनाया करते थे, अगर आपको याद होगा तो। ये उनका लिखा हुआ गाना है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही खूबसूरत है। MM करीम साहब ने इस गाने में आवाज़ दी है। इन्जॉय करते रहिए रिजु जी की फरमाइश, खूबसूरत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

जैसा नाम वैसे ही गाने की बोल और वैसी ही आवाज़। एमएम करीम साहब ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है, गाने का नाम ही खूबसूरत है ऑफ कोर्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये गाना कितना प्यारा होने वाला है। नीलेश जी ने लिखा था 2005 में, रोक फिल्म में इसको रिलीज़ किया गया था और आपके फेवरेट एक्टर इसके अंदर नज़र आए थे जिनका नाम ऑफ कोर्स आप जानते हैं, इरफान खान। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और ये फरमाइश थी हमारे नीलेश जी, ये फरमाइश थी हमारे रिजू जी की। नीलेश जी हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं और अगली फरमाइश जो हमारी आई है वो सुनील कुशवाहा जी की आई है और अगेन बहुत ही प्यारा सा गाना है कुमार सानू की आवाज़ में, दिल का क्या कसूर फिल्म से आप इंजॉय करने जा रहे हैं, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत गाना आप इन्जॉय कर रहे हैं 90s के। एंड ऑफ कोर्स आप अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। और हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक जी फ्रॉम हथियागढ़ गोंडा, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजीवती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए अपनी फरमाइशें भेजते रहिए कॉल ट्यून गोंडा में। फिलहाल के लिए इन्जॉय कीजिए सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

की आवाज गा रहा हूँ इस महफिल में। दिल का क्या कसूर फिल्म से आप एंजॉय कर रहे हैं और इतना खूबसूरत गाने की जो बोल है वो हमारे लिखे हैं अनवर सागर साहब ने, नदीम श्रवण का संगीत है। इस खूबसूरत गाने के बाद आइए चलते हैं एक बढ़िया सा, अच्छा सा और 18 बरस वाला गाना सुनते हैं, क्योंकि अगली फरमाइश हमारे चांद बाबू की तरफ से आई है, 18 बरस की होने को आई। अमिताभ बच्चन रेखा पर फिल्माया गया गाना सुहाग फिल्म 1979, लता जी की आवाज़। इंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोडा विद आरजी उन्नति आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर। एंड नव्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, नाइस सॉन्ग, क्रेडिट गोज टू सुनील कुशवाहा जी। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

हंस जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गाना चांद बाबू जी की फरमाइश पर। और अगली फरमाइश आई है हमारे पास रीना शर्मा जी की फ्रॉम उत्तराखंड, और आइए चलते हैं उनकी फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी फरमाइश है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। गाएगा ना जी हाँ, मोहब्बत में कोई गाना नहीं गाए तो बात क्या। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते भी रहिए। बहुत ही प्यारी फरमाइश है एंड हमारी रीना शर्मा जी ने उत्तराखंड से हमें मैसेज भी भेज दिया था। हेलो मैम, उन्नति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, और आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजू जी, इन चैट बॉक्स लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून।

0: What are you waiting for? Come on. Please, it's not me.
1: Go ahead.
2: Everybody.
3: अगिना तुम भी डांस करो।
4: मैं मेरी बात सुनो। आप क्या?
3: मैं?
4: जी?
5: रीना शर्मा जी की फरमाइश थी हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और इस खूबसूरत गाने को आवाज़ दी थी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सिंगर्स ने, लता जी ने, मुकेश ने और महेंद्र कपूर ने। इतने प्यारे गाने के बाद आइए चलते हैं हमारे अगली फरमाइश की ओर। तो करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास आई है राजू टेलर्स जी की, और ये है एक प्यारी सी कवाली। तो आइए इंजॉय करते हैं इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। बहुत ही प्यारी सी कव्वाली है मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर यानी कि अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

राजू जी की फरमाइश थी और आप सुन रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन सी कव्वाली मोहम्मद रफी आशा जी की आवाज में, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपनी अगली फरमाइश की ओर। जानवी जी की अगली फरमाइश आई है हमारे पास, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। राजा हिंदुस्तानी फिल्म से आप एंजॉय करेंगे ये नगमा। इसके अलावा आपको बता दें भैया कि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। भूलिएगा नहीं, आपका प्रोग्राम चल रहा है कॉल ट्यून गोंडा फ्राइडे स्पेशल, यानी कि पूरे दो घंटे बैक टू बैक नॉन स्टॉप आपकी अपनी फरमाइशें विद और अर्जुन रहती। तो अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, और उदित जी की आवाज़ में एंजॉय करते रहिए नदीम श्रवण का संगीत समीर साहब के बोल। स्टे ट्यून्ड।

समीर साहब के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत, उदित नारायण की आवाज, राजा हिंदुस्तानी फिल्म और फरमाइश थी हमारी जानवी जी की, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, करिश्मा जी और आमिर खान पर फिल्माया गया गाना। एंड इसी के साथ आइए चलते हैं कॉलर ट्यून गोंडा की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। अगली फरमाइश आवाज विकास से धर्मेंद्र मोहन जी की आई है, भुलाना सकोगे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, किसी को भुलाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा उदास कम हुआ करें। बेवफाई फिल्म से आप सुन रहे हैं, 2005 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था एंड बहुत ही प्यारा सा गाना है आगम कुमार निगम की आवाज में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोंडा 99.6 FM रेडियो ग्यारह स्लीपर।

धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे हैं। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने से पहले ओके, तो मंजू जी पूछ रहे हैं कि आकांक्षा मैम कहाँ गई हैं। भाई आकांक्षा मैम अपने फ्यूचर प्लान को और भी ज़्यादा खूबसूरत, अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए कुछ अलग प्लान कर रही हैं और इसीलिए वो अब हमारे साथ रेडियो स्टेशन पर नहीं जुड़ पाएंगी। एक्चुअली उन्होंने अपने बेटर फ्यूचर के लिए रेडियो स्टेशन छोड़ दिया है। एंड इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं, सबिया जी की फरमाइश को एंजॉय करते हैं। 2020 में इस गाने ने बहुत धूम मचाया था, हर कोई कोविड के वक्त में इस गाने को एंजॉय कर रहा था और उस वक्त जब टिकटॉक चल रहा था तो ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। गाने का नाम है यारा, ममता शर्मा की आवाज़, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते रहिए। एक रोमांटिक गाना है, 2019 में वैसे तो रिलीज़ किया गया था लेकिन 2020 और 21 में इतनी धूम मची थी इस गाने को लेकर के कि हर एक टिकटॉक स्टोरी पर जो भी रोमांटिक सॉन्ग्स की स्टोरीज बना रहे थे उनके में ये गाना आपको ज़रूर मिलता था। एक ट्राइंगल लव स्टोरी, एक्चुअली कहें तो इसमें चार लोगों की लव स्टोरी है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए सब्या जी की फरमाइश को।

जी हाँ, सबिया जी की फरमाइश, दुआ में तुझे याद करते हैं 100-100 बार करते हैं। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और लवली सॉन्ग लिखा है हमारी मंजू जी ने, क्रेडिट गोज टू सबिया जी। और नाइस सॉन्ग आया है हमारे महेंद्र जी, दीपन जी की तरफ से, तो बहुत ही प्यारा सा गाना था और सबिया जी को तारीफें मिल चुकी हैं चैट बॉक्स में। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश पर। रमेश कुमार फ्रॉम महाराष्ट्र, और उन्होंने फरमाइश कर दी है रिम झिम फ्रॉम कुमार सानू की आवाज़। तो आइए इन्जॉय कीजिए 90s का एक, अगेन 1942 लव स्टोरी फिल्म में रिलीज किया गया ये गाना है। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, आर डी बर्मन का म्यूजिक और मुकुल दत्त के बोल। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि ये है आपका फ्राइडे स्पेशल कॉलर ट्यून गोंडा, जो कि होता है पूरे के पूरे 2 घंटे के लिए विद आरजे उन्नति। एंड आपने ट्यून किया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्ली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन।

रमेश कुमार जी की फरमाइश को आप एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया के गुप्ता जी फ्रॉम श्रृंगा कॉम्प्लेक्स, लिख रहे हैं स्पीड वाली उन्नति जी नमस्कार, आपके लिए स्पेशल वाली चाय, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। मैम जी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। और सॉन्ग को बहुत सारे गुलाब और दिल दे दिए हैं उन्होंने, साथ ही लिखा है मैंने अपना फोन चेंज किया था, इसमें आईडी ही नहीं बन पा रही थी, अब बन पाई है तो मैं जुड़ गया हूँ। जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एंड मंजू जी का सवाल कि उनका गाना कहाँ है, आपका गाना मेरे पास ही है, लाइन के अंदर लगा हुआ है, बस कुछ देर में आप तक पहुंच जाएगा। आज आप फिक्र ना करें क्योंकि 2 घंटे का प्रोग्राम है, सो आपका गाना जरूर से टाइम से प्ले हो जाएगा। फिलहाल आइए चलते हैं रेणु तिवारी जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। क्या बात है भैया, बड़ा ही रोमांटिक गाने की फरमाइश आ चुकी है हमारे पास, तो आइए एंजॉय करिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर, यानी कि अगले डिमांडेड सॉन्ग जो कि राम नरेश जी की होने वाली है। तो उनकी डिमांड को सुनने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपकी फरमाइशें नहीं आई है, बहुत इंतजार मत कीजिए क्योंकि फ्राइडे स्पेशल देता है आपको पूरा पूरा 2 बार मौका, 2 घंटे का, कि लगातार अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

0: भाई इतना प्यारा गाना, हमारी फरमाइश थी रेनू तिवारी जी की, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। हम सभी लोगों ने उदित जी की आवाज अलका जी के साथ कई बार सुनी है और बहुत हिट जोड़ी मानी जाती है बॉलीवुड में। लेकिन राधा पौडवाल भी कोई कम नहीं है बॉस। जब भी वो आती हैं, फिर चाहे वो किसी भी सिंगर के साथ आएं या फिर सोलो आएं, उनके गाने इतने प्यारे होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि ऑलमोस्ट हर दिल को छू जाते हैं। और ऐसे रोमांटिक गाने आप सुनते रहिए। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास कबीर जी के दोहे आ चुके हैं, तो आइए। वैसे कबीर जी के दोहे, वो भी एकदम बॉलीवुड स्टाइल आपके लिए पेश करते हैं हम। यह फरमाइश हमारी राम नरेश जी की, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के। एंड बेशक के गुप्ता जी, बस आप कॉल कर दीजिए, आपकी कॉल का इंतजार हमें रहेगा। कॉलिंग नंबर वही है 6393316429। और लिखा है जबरदस्त सॉन्ग, क्रेडिट गोज टू रेनू तिवारी जी जिनकी ये फरमाइश थी।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो बात।

0: एक हाथ में कर दूं चंगा, लंगड़ी टंगड़ी छुरी कटारी सब रह जाए धरी।
1: हमारी राम नरेश जी की फरमाइश को एंजॉय करते ही हमारे साथ छड़ी है सोनिया तिवारी जी। लिखनी हाय एवरीवन, हाय कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं कॉल ऑफ यून गोना में। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है रई साहब की, कितने दिनों के बाद मिले हो, क्या बात है भैया, बहुत दिनों के बाद। वैसे सिर्फ एक ही दिन का ब्रेक लिया था मैंने, लेकिन हाँ हो गया है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिलहाल इंजॉय करते रहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ में नदीम श्रवण का म्यूजिक। और लिखा है समीर साहब ने, बहुत ही प्यारा सा गाना है, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, एंजॉय करते रहिए। गोविंदा पे फिल्माया गया सॉन्ग आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद राजनीति रेडियो ज्ञान 89.6 FM पर।

भाई रईस साहब की फरमाइश थी कितने दिनों के बाद मिले हो, और ये गाना हमारे के गुप्ता जी को बहुत ज्यादा पसंद आया है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए हम। ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भैया, पहले किसी को दोस्त बनाओ, उसके साथ आप दिन रात सुबह शाम न जाने कितने ही यादें बनाओ, और फिर जाकर लास्ट में कहो चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाओ। ये कौन सी बात होती है? ऐसे गुनाहों की माफी मैं मेरे पास तो है नहीं, और ऐसे दर्द भरे नगमे की माफी भी मेरे पास नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल सॉन्ग है। एंड जस्ट इमेजिन, आप किसी के साथ अभी तक बहुत अच्छे रिश्तों के साथ हैं, आप बहुत कमाल के रिश्ते में हैं, और अचानक से आप कह रहे हो चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। हम किस तकलीफ और दर्द के साथ इस गाने को लिखा गया है, फिलहाल एंजॉय कीजिए। इरशाद जी की फरमाइश है, और आई होप इरशाद जी जिस तरह का पेनफुल सॉन्ग आपने डिमांड की है उस तरह से पेनफुल चीजें आप फील ना कर रहे हो इस वक्त।

महेंद्र कपूर ने आवाज दी है, साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और इस गाने को मुझे पेन से कम पेन से ज़्यादा लिखा हुआ सुनाई पड़ता है। इरशाद जी की फरमाइश थी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम। और इसी गाने के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत कर लेते हैं कॉल ट्यून गुंडा में। अगली फरमाइश आई है राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में, कैसा ये इश्क है। इंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए आपका अपना शो कॉल ट्यून गोंडा विद राजनीति 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर।

राहत फतेह अली खान की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं कैसा ये इश्क है। और इसी के साथ हम आपको बता दें, हमारी समरीन जी की फरमाइश थी और वक्त है अब हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने का। मंजू जी ने फरमाइश कर दी है, हमारे पास किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, आपके पसंदीदा आपके चहीते दो एक्टर हैं शिल्पा जी और SRK यानी कि बादशाह। आशा जी की आवाज में एंजॉय करते रहिए 90s का सुपर डुपर हिट गाना। और ये वो फिल्म है जिसके अंदर जब शाहरुख खान की डेथ दिखाई जाती है तो फैंस उनके इतने भावुक हो जाते हैं कि आज भी वो रोने लग जाते हैं, बिकॉज टॉप नॉच एक्टिंग करते हैं SRK साहब। फिलहाल एंजॉय कीजिए कॉलर ट्यून गोंडा, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। मंजू जी की फरमाइश को एंजॉय करते रहिए। अगली फरमाइश मोहम्मद रफी खान की।

बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, आशा जी ने सवाल किया था विनोद राठौड़ से, और फरमाइश थी हमारी मंजू जी की। एंड मंजू जी की इस फरमाइश को काफी सारे स्टार्स मिल चुके हैं। वाह मंजू जी की क्या चॉइस है, लिख दिया है के गुप्ता जी ने। सुपर, मेरा फेवरेट सॉन्ग लिखा है महेंद्र जी ने। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। रफी खान जी की फरमाइश आ चुकी है, तौबा कैसे है नादान। तो आइए एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा पुराना सॉन्ग लेकिन आपको फील वही देने वाला है लता जी की आवाज में। एंजॉय करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद राजनीति।

हाँ जी, तो आपने इंजॉय किया मोहम्मद रफीक जी की फरमाइश, और अब वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का, जो कि हमारे उस्मान खान जी की है, कस्मे वादे प्यार वफा। और इसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली फरमाइश को ट्यून करने, जो कि हमारे पास आई है के गुप्ता जी की, आनंद शर्मा जी की एंड इम्तियाज अहमद जी की। तो सुनते रहिए मेरे साथ, बने रहिए आपके अपने शो कॉल ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी उन्नति, एंड ये है आपका अपना रेडियो कैनल 89.6 FM, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन।

उस्मान खान की फरमाइश थी उपकार फिल्म से आप सुन रहे थे कस्मे वादे प्यार वफा और वक्त है अगली फरमाइश की तरफ बढ़ने का। हमारे के गुप्ता जी की फरमाइश और उन्होंने हमारी पसंद के गाने को कहा है, तो आइए आपको एंजॉय कराते हैं 90s का स्पेशल सॉन्ग तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिव्या भारती पर फिल्माया गया गाना है अलका जी की आवाज में, रंग फिल्म से 1993 में रिलीज किया गया। आप सुनते रहिए कॉलर ट्यून को, ना मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

तुझे ना देखू तो चैन मुझे आता नहीं है, ये फरमाइश थी हमारी के जी की। और अब वक्त है अगली फरमाइश का, जो कि हमारे आनंद शर्मा जी की है। और आइए एंजॉय करते हैं उनकी फरमाइश पर, आंखों में नींद ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। एंजॉय करते रहिए, अलका जी की आवाज़ है। और इसी के अलावा हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारे इम्तियाज जी और महेंद्र दीपन जी की है। स्टे ट्यून्ड।

ये थे हमारी आनंद शर्मा जी की फरमाइश, और अब वक्त है अगली फरमाइश का, जो कि हमारी इम्तियाज अहमद जी की है, और ऑल इज वेल से उन्होंने मेरा पसंदीदा गाना फरमाइश कर दी है, योलो। तो आइए एंजॉय करते हैं, बिकॉज जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, एक दफा मिलती है, और इसीलिए गाना आपको याद दिलाता है कि जितनी भी है, जो भी है, कर लो, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, एंजॉय करना मत भूलना, बाकी सब तो होता रहेगा, टेंशन आता रहेगा, एंजाइटी आती रहेगी, जाता रहेगा, सब कुछ ठीक होता रहेगा, लेकिन जो एक चीज आप कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं वो है आपकी अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो सारी टेंशन को बाय बाय करते हैं, एंजॉय करते हैं, यो लो, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आपने इंजॉय किया इम्तियाज जी का गाना। गाना भले ही छोटा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और आई चलते हैं महेंद्र जी की फरमाइश को ट्यून कर लेते हैं। और उनकी फरमाइश हमारे पास आई है जोड़ी नंबर वन से, लाल चुनरिया वाली पे दिलाया रे। तो इंजॉय करते रहिए गोविंदा का बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और जाने से पहले एक डेडिकेटेड सॉन्ग जो मैं हर वक्त आपको देकर जाती हूँ वो जरूर दूंगी, लेकिन तब तक के लिए इंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार आपके गाने की तरफ। स्टे ट्यून्ड।

और ये थी फरमाइश हमारे महेंद्र जी की फ्रॉम राजस्थान। और के जी ने लिखा है कि वाओ डांसिंग सॉन्ग, जी हाँ बहुत ही प्यारा सा गाना था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी आखिरी फरमाइश की ओर, और ये फरमाइश किसी और की नहीं, मेरी है आप सभी के लिए, यानी कि आपका डेडिकेटेड सॉन्ग जो हर वक्त मैं आपको देकर जाती हूँ। तो आज का स्पेशल सॉन्ग, क्योंकि हम बहुत देर से रोमांटिक गाने इन्जॉय कर रहे थे, तो जाते जाते थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर डाल कर जाते हैं और थोड़ा सा इन्जॉय कराते हुए जाते हैं। सुनते रहिए, आप सुन रहे थे कॉलरट्यून गोंडा की आखिरी फरमाइश, जो कि ऑफकोर्स मेरी है आप सभी के लिए। दुपट्टा तेरा नौ रंगा, कॉलरट्यून गोंडा। प्रिया इंजॉय आपने बहुत किया होगा, आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। और घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, तैयार रहिएगा कल के लिए आपके अपने कॉलिंग वाले और कुछ क्वेश्चन आंसर वाले यानी कि केबीसी वाले प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अब तक आपके साथ मौजूद थी आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव।
5: और मैं रचना शर्मा,
4: लेकर हाजिर हूँ गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में आयली परसोली में 500 बाढ़ राहत सामग्री किट का वितरण किए गए हैं, और 6 कृषकों को 5,000 रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। बाढ़ पीड़ित को हर हाल में पहुंची राहत, जिलाधिकारी गोंडा ने कहा। बता दें कि जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री आशीष पटेल ने आयली परसोली गांव पहुंचकर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री वितरण कराया है। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में उनकी अध्यक्षता में जनपद स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और शासन की प्राथमिकता वाली योजना की समीक्षा भी की गई है। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों एवं प्रभावी निगरानी की सराहना करते हुए जिलाधिकारी एवं अधिकारियों को राहत कार्यों को पूरी तत्परता से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। आयली परसोली में आयोजित राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री 500 बाढ़ राहत सामग्री किट वितरण कराया। इसके अलावा नदी कटान से प्रभावित 6 कृषकों को 5,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया है।
5: गोंडा में बारा वफात पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार शाम 5 बजे पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक खुड़ारे थाना क्षेत्र के गौरा पुलिस चौकी अंतर्गत बभन जोत ब्लॉक सभागार में हुई। इसकी संयुक्त अध्यक्षता SDM मनकापुर उदित पवार और क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालीवाल ने की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों से बारा वफात पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया।
4: शासन की मनसा अनुरूप कोविड कर्मचारियों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन, 3 दिन में जमा करने होंगे अभिलेख। बता दें कोविड-19 महामारी के दौरान जनपद में विभिन्न वित्तीय स्रोतों से कार्यरत कोविड कर्मचारियों से पुनः कार्य लिए जाने के संबंध में शासन के निर्देशों के क्रम में उनके दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कोविड महामारी के दौरान कार्यरत रहे ऐसे कर्मचारी, चाहे वे अटेंड पेटेंट मैनेजमेंट सिस्टम AMS ऐप पर पंजीकृत रहे हों या अपंजीकृत से संबंधित अभिलेख सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जनपद गोंडा में कोविड महामारी के दौरान कार्यरत रहे कोविड कर्मचारियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर स्वप्रमाणित दस्तावेज CMO कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के लिए कर्मियों को स्वप्रमाणित समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ 2 फोटोग्राफ, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा संबंधित अवधि का बैंक द्वारा प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट, COVID-19 के समय आउटसोर्स एजेंसी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र तथा सक्षम अधिकारी CMO, CMS अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा।
5: गोंडा जिले में मौसम विभाग ने तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को सचेत रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी भी दी है। कटरा बाजार, करनैलगंज, खरगोपुर और कौड़िया बाजार सहित आसपास के इलाकों में बीते 3 घंटे से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। इन 3 घंटों में गोंडा में 10 mm बारिश दर्ज की गयी। जिले के अलग अलग हिस्सों में काले घने बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के लिए भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गोंडा जिले में सुबह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिले के कुछ हिस्सों में बारिश ना होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। रेड अलर्ट जारी होने के बाद गोंडा जिला प्रशासन ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गोंडा कलेक्ट्रेट में एक जिला आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कोटेदार की लिए बड़ी सौगात दिया है। बता दें कि लाभांश बढ़कर अब 125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सिंगल स्टेप डोर टू डोर डिलीवरी के अंतर्गत ई पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ हो चुका है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं राशन कार्ड कोटेदार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके लाभांश में 35 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं को 90 रुपए के स्थान पर 125 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश प्राप्त होगा। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जनपद रामपुर में सजीव प्रसारण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था से संबंधित फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। राशन वितरण प्रणाली में तकनीक के प्रभावी उपयोग के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निगरानी और अधिक सुरक्षित होगा। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक जनपद गोंडा में करीब 900 उचित दर विक्रेताओं को लाभांश वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।
5: गोंडा में रोडवेज पुलिस चौकी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक चाय की दुकान से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। ये घटना बीते मंगलवार 18 अगस्त देर रात करीब 11 बजे हुई, जो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक मौके का फायदा उठाकर चाय की दुकान के अंदर घुसता है। वो इधर उधर देखने के बाद जब सुनिश्चित कर लेता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो वो काउंटर पर रखे मोबाइल चुरा कर फरार हो जाता है। पीड़ित चाय दुकानदार ने मोबाइल चोरी की इस घटना को लेकर रोडवेज चौकी प्रभारी को तहरीर दी। उसने पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। रोडवेज चौकी प्रभारी के साथ साथ नगर कोतवाली पुलिस भी इस मामले की जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार चाय की दुकान पर अक्सर काफी भीड़ रहती है और कई ग्राहक दुकान के अंदर जाकर चाय सिगरेट भी पीते हैं। दुकानदार को लगा कि चोर भी ग्राहक है, इसलिए वो कुछ काम के लिए बगल में चला गया। इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया।
4: जनपद गोंडा में बैंक के 2 प्रबंधकों व छापर गमन के लिए FIR दर्ज। बता दें कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की बड़गांव शाखा में ऋण खाते में 20.10 लाख रुपए के गमन के आरोप में 2 तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 8 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। कौड़िया थाना क्षेत्र के चैनापुर गांव निवासी रुकमणी सिंह की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई सुनिश्चित किया है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों और उनके कथित सहयोगियों ने मिलीभगत कर ऋण खाते से रकम की हेराफेरी की है। रुकमणी सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 9 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की बड़गांव शाखा में बचत खाता में 26 जुलाई को ऋण खाता खुलवाया था। उनके नाम 30 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर, सहायक प्रबंधक और उनके कथित सहयोगियों ने मिलीभगत कर ऋण खाते की रकम एरी फेरी।
5: गोंडा के जानकी नगर स्थित NRHM घोटाले आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और बलरामपुर स्वास्थ्य विभाग में तैनात क्लर्क भाई अजय श्रीवास्तव के आवास पर अयोध्या विजिलेंस की 20 सदस्यीय टीम ने बुधवार को करीब 12 घंटे तक छापेमारी। ये कार्रवाई बहराइच, बलरामपुर और गोंडा में हुए NRHM घोटाले और क्लर्क भाई अजय श्रीवास्तव और मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच के सिलसिले में की गई। टीम ने आवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए और 6 कमरों को सील किया। छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव और भाई अजय श्रीवास्तव के 1 मंजिला और 2 मंजिला भवन में स्थित 6 कमरों की तलाशी ली गई। इसके बाद सभी कमरों को सील करके पूरे मकान को सील कर दिया गया। घर के जिस हिस्से में नौकर और जानवर रहते थे उसे खुला छोड़ा गया है। विजिलेंस टीम जाते समय आवास में लगे CCTV कैमरे भी अपने साथ ले गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टीम काफी संख्या में दस्तावेज और अन्य कागजात भी अपने साथ ले गई है।
4: मत्स्य पालक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। बता दें कि मत्स्य पालन के लिए 24 अगस्त तक करें आवेदन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मध्याकार RAS रेयरिंग यूनिट तालाब और बैकयार्ड RAS महिला वर्ग परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक लोग 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। मत्स्य पालन विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारद लाल राणा ने बताया कि परियोजना वार अलग अलग आवेदन करने होंगे। आवेदन व जरूरी अभिलेखों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित मत्स्य पालक विकास अभिकरण से संपर्क किया जा सकता है।
5: गोंडा में कांग्रेस निशक्त जन विकलांग प्रकोष्ठ के बैनर तले सैकड़ों दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव अरुण कुमार तिवारी के नेतृत्व में दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टिन शेड के नीचे प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर DM प्रियंका निरंजन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को संवेदनशीलता के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए। दिव्यांगों ने वर्तमान में मिल रही 1,000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। सभी दिव्यांगजनों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने और पात्र परिवारों को अंत्योदय कार्ड जारी कराने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में जिला अस्पतालों में दिव्यांगों के लिए अलग काउंटर स्थापित करने की मांग की गई ताकि उन्हें पर्चा बनवाने और दवा लेने के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
4: गोंडा प्रशासन हुआ सख्त, बिना मान्यता के स्कूलों पर होगी अब कार्यवाही। जनपद में बिना मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक किया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में संचालित मान्यताविहीन विद्यालयों को चिन्हित कर सूची तैयार करवाया जाएगा। BSC ने बताया कि ऐसे विद्यालयों को पहले नोटिस जारी कर संचालन बंद करने की चेतावनी दी जाएगी। उसके बाद विद्यालय अगर बंद नहीं किया गया तो भवन को सील करने के साथ संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में बिना मान्यता विद्यालयों का संचालन नहीं होना चाहिए।
5: गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली से लौटने के बाद गुरुवार दोपहर 12 बजे अपने नवाबगंज विश्नोहरपुर स्थित आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने गोंडा समेत आसपास के जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता हर वो काम करते हैं जो देश के बहुसंख्यक समाज को बुरा लगे। उन्होंने वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि यदि वे 1937 की बात करते हैं तो 1947 में देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था। श्री सिंह ने ये भी पूछा कि राम जन्मभूमि मंदिर में मूर्ति 1949 में किसके समय में रखी गई थी।
4: जनपद गोंडा के 9 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2010 से 2018 के बीच हुई 38 तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति और उनके वेतन भुगतान का मामला 5 साल बाद ही सुर्खियों में आ गया है। शासन के आदेश पर वर्ष 2021 से चल रही जांच अब राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा लखनऊ पहुंच गई है। प्रकरण की विवेचक इंस्पेक्टर शोभा सोलंकी ने शिकायतकर्ता शिक्षक नेता विनय कुमार शुक्ला को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया है। उन्हें 3 दिन के भीतर लखनऊ स्थित राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराने को कहा गया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में बयान नहीं देने पर यह माना जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। शिकायत में आरोप है कि वर्ष 2010 से 2018 के बीच 9 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया था। इसके बावजूद प्रबंधकों ने कथित तौर पर नियुक्तियां कर दी थी और बाद में इन शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान भी हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस नियमों के विपरीत बताते हुए सरकारी धन की क्षति का आरोप लगाया था। शिक्षक नेता विनय कुमार शुक्ला के मुताबिक निर्धारित अवधि में बयान दर्ज कराया जाएगा।
5: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरी के नौवा पूर्वा को जाने वाली सड़क पर जलभराव से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या बारिश के मौसम में और भी गंभीर हो जाती है। ग्राम सभा पिपरी के पास स्थित ये नवनिर्मित सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। 2 साल पहले ग्राम प्रधान द्वारा सड़क की भराई के बाद खड़ंजा कार्य संपन्न कराया गया था। ये सड़क कई गांवों को जोड़ती है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। स्थानीय ग्रामीणों जिनमें अतुल कुमार चौबे, नंद कुमार चौबे, शोभा राम और संत राम शामिल हैं, ने बताया कि बारिश के पानी के जमा होने से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। इस संबंध में ग्राम सभा के प्रधान मनोज तिवारी ने बताया कि बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह पानी जमा हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही व्यवस्था की जाएगी और लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाई जाएगी। प्रधान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने उम्मीद जताई और प्रसन्नता व्यक्त की है।
4: जिलाधिकारी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण, पौधारोपण एवं माल्यार्पण कर देशभक्ति का दिया संदेश। स्वतंत्रता के 80वें आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर जिलाधिकारी गोंडा श्रीमती प्रियंका निरंजन द्वारा विविध कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक चेतना का संदेश दिया गया। सबसे पहले जिलाधिकारी ने अपने कैंप कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया एवं देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ध्वजारोहण के पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। उसके पश्चात जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने नगर स्थित अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक समरसता एवं संविधान के मूल्यों को याद किया। जिलाधिकारी ने बाबा साहब के आदर्शों को आत्मसात कर जनसेवा में सहयोग देने का आह्वान भी किया है।
5: गोंडा के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार दोपहर तरबगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित एली परसौली गाँव का दौरा किया। दोपहर करीब 1 बजे पहुँचे मंत्री ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे के साथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान 500 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की गई। जमीन कटान से प्रभावित 6 परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना होनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर मौके की स्थिति भी देखी। मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाए।
4: जिलाधिकारी के जनता दर्शन में फरियाद लेकर पहुंचे दिव्यांग सहित 2 जरूरतमंद परिवारों को मिली राहत। बता दें कि कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन के समक्ष दिव्यांग व्यक्ति त्रिवेणी पुत्र शिव बच्चन निवासी ग्राम बेसिया चैनपुर विकास खंड पंडित कृपाल तथा समान शिकायतकर्ता सरोज कुमारी पत्नी स्वर्गीय पुतन निवासी ग्राम बरबटपुर विकास खंड हलदरमऊ ने उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत करा। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है तथा परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य भी नहीं है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें परिवार के भरण पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने दोनों प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया और जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित परिवारों की पात्रता की जांच कर नियमानुसार राशन कार्ड जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि पात्र पाए जाने पर राशन कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
5: धानीपुर गोंडा आखिरकार खबर का असर दिखाई दिया और नगर पंचायत धानीपुर प्रशासन ने शक्ति संगम घाट के पास डंप कूड़े को तत्परता से साफ करा दिया। घाट की बदहाल स्थिति और कूड़े से उठ रही तेज दुर्गंध को लेकर लोगों में नाराजगी थी। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद नगर पंचायत प्रशासन हरकत में आया और सफाई कर्मचारियों को मौके पर भेजकर घाट के आसपास जमा कूड़ा हटवाया गया। कुछ माह पहले तैयार हुआ शक्ति संगम घाट पिछले दीपावली पर्व पर दीपों से जगमगा उठा था। नगरवासियों ने यहां बड़ी संख्या में पहुंचकर दीप जलाए और पूजा पाठ भी किया था। लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले वर्षों में भी घाट पर इसी तरह के धार्मिक आयोजन होंगे और ये स्थान नगर की पहचान बनेगा, लेकिन घाट से कुछ ही मीटर की दूरी पर कूड़ा डंप होने से पूरा वातावरण दुर्गंध से भर गया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि जिस स्थान पर लोग श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और दीप दान करते थे वहाँ कुछ देर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। कूड़े के कारण घाट की सुंदरता और धार्मिक महत्व दोनों प्रभावित हो रहे थे। इसको लेकर नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे थे। मामला सामने आने के बाद चेयरमैन प्रतिनिधि मनसाराम वर्मा ने कूड़ा जल्द हटवाने का आश्वासन दिया था। अब नगर पंचायत ने कार्रवाई करते हुए घाट की सफाई करा दी है।
4: जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन के अध्यक्षता में पंच सम्मेलन विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के समस्त ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की गति प्रदान करने के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश उपलब्ध कराना रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी होगा जब उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता देते हुए निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए। कार्यक्रम में अधिकारियों ने सभी संबंधित कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से योजना के उद्देश्य को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अधिकारियों द्वारा योजना से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं एवं कर्मचारियों को जानकारी प्रदान की गई है। सम्मेलन में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, डीसी एनआरएलएम सहित संबंधित अधिकारीगण मौके पर उपस्थित रहे। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: अरे सुना
4: क्या?
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे

बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

सभी भैया और बहनी लोगन के प्रणाम और सावन के जुन भींजल भींजल नमस्कार सबका कहे के समय है वो सांझे के होत है। तो सबका भाई नमस्कार है और हमरे जितना सखी सहेली सहेला सब लोग हैं सब तनी आए जाएं और एक एक कप चाय लेके बैठ जाएं। कहे कि देखा मौसम जब होत है सुहाना तब संगीत के साथ याद आवत है आपन जमाना, और आपन जमाना मतलब आपन कल्चर, आपन लोकगीत, आपन संगीत और आपन अंदाज और आपन लोग। और ऐसे आपन लोगन के साथ है आज हम आपका सुनाए वाली हन हमरे गोंडा शहर के बहुत सारी ऐसी सखियन ही, और जेमा मसे आप सबका मतलब अगर बताई तो आप सब पोस्टर पे देखे भी होगो कि कौन कौन सखी आज हमरे स्टूडियो में है हमरे साथ है। और आप सबका अपने आवाज़ में सुंदर सुंदर कजरी और आज अपने अवधी भाषा के गीत सुनाए वाली हैं। तो सबसे पहले तो सबके भाई स्वागत है, और जैसा कि बाहर बादल घिर आए हैं, कहूँ रिमझिम फुहार पड़त है, तो कहूँ आम के डार जोन है तो झुलवा झुलावत है, लेकिन का करी सावन जोन है ना ये बड़ा परेशान करत है। और कहा है ना कि सावन के महीना माँ अगर कजरी गीत ना गवाए तो सावन अधूरा रह जाए। कहा है ना कि बरस

भाषा जब बरसत है बदरिया रूम झूम के, बस आपन भाषा अपन गीत और का नहीं याद आवत है। और जब का याद आवत है तो अपने पिया के तो याद जरूर आवत है, और प्रेम के जब बरसात होती तब सब कुछ भुलाए जात है। तो देखा पहले तो कजरी के बारे में बगर बताई तो कजरी कोनो गीत ना होए, इस वो एहसास है जोन की मौसम और इंसान के बीच के जो नेगो दूरी है उका दूर करते। लेकिन आज जो सावन है वो खाली न जाए देव हम, आज पकड़ ले बकाते ना, आज लपट जाए तो हमें ना बच्चे जोन भी है जैसन भी है, आज सावन का लपट के कजरी गीत गावक है, बस यह सोच लिया। और लोक सुर के साथे जब सावन के बूंद भी थिरके लागत थी ना, आपन जोन थाप दिए थी तो वो बड़ा मजेदार होते। कजरी केवल गीत नहीं है सखी, और कजरी ता बिटिया के मायके के याद है, सखियन के संग झूला के वो एहसास है, ननन भौजाई के ठिठोली है, पिया से बियोह के दर्द है, और गांव के मिट्टी से जुड़ एगो पूरा सांस्कृतिक जोन संसार है। और आप सबको बताएगी सावन औते मान जोन है सबसे पहले जोन काम होत रहा पहले के जमाना में, तो झूला पड़त रहा और झूला पे बैठ के सब सखी लोग खूब बढ़िया से कजरी गाएं और एक दूसरे का छेड़ें, एक दूसरे वाले के नाव से छेड़ें। और क्यों केहू का रास्ता बिरस्ता डगरिया केहू का देख लिए अपने पिया का आवत जात, मतलब पहले बड़ी मतलब वो रही कि एक नजर भी केहू से नजर मिल जाए तो उसका बड़ा माना जात रहा, उसका बड़ा तवज्जो रहा, और कहते रहे कि वो प्यार के एहसास भी बड़ा खास रहा। तो कहते हैं कि एगो गाना हम सुने रहें

अब सबसे पहले अब आपका बताई कि कजरी जोन है एकर गाय के कहाँ से शुरुआत है। कजरी उत्तर भारत के प्रमुख लोक गायन के परंपरा में से एक है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार के कुछ क्षेत्रन में सावन भादो में मौसम जोन लागत है तब कजरी गायन के परंपरा शुरू हो जात है। खाद खेते में धान बैठावत के संगे संग जब नागपंचमी होते सब त्योहारन में ये सब गीत गाय के शुभ मंगल की इनका जात रहा। कजरी नाम के जोन अलग अलग लोग मानता है। लोग कहते हैं कजरा यानी कि आँख के काजल से जुड़ा जात है। सावन के जोन बादल है करिया होत है यही से एक नाम कजरी रखा गया कि अखिया के जैसे कजरा करिया होत है वैसे मेघ आवत है करिया करिया और हमें सबका जुड़वाए के जात है। और सबके गांव के अगर बात करी तो कुछ लोग कहा थी कि उनके सबके यहाँ जब कजरी गावत हिन तो गांव के औरत लोग सब टोली बनाए लेते रहीन और एक सुर उठावत रही और बाकी सब संगत के निहायत पीछे पीछे गावत रही। और सबसे मजेदार बात ये होत रही कि गीत माँ घर परिवार के पूरी कहानी भी आ जात रही केहू के जेठ केहू के जेठानी केहू के देवर केहू के जाई सब चीज। और जैसे लागत रहा कि कजरी के खासियत तो सबसे खास तब है जब पिया से मिलन के आस लागत है। कबो ससुराल मा केलापन तो कबो मायके के याद आवत है। कबो सावन के झूला तो कबो सखियन के नोक छोक सतावत है। यह है कजरी के सौगात जो हम सबका एक दूसरे के पास बुलावत है। सावन प्रकृति के त्योहार है। हमारे सबके त्योहार नहीं है प्रकृति अपन त्योहार मनावत है। बारिश होती पेड़ पौधा सज जाते हैं हरे हरे रंग मा सबके एकदम जैसे कहते ना श्रृंगार हो जात है। तो भाई त्योहार जैसे हमारे सबके वैसे प्रकृति के धरती भींजत थी पेड़ पौधा हरियर होते हैं नदिया में पानी बढ़त है आकाश में बदरा छाए जाते हैं। गांव के बिटिया मन में सावन का लेके एगो अलग जो कहते ना आस लगाए रहा थी। पहले के जमाने में बिटियन का गांव में शादी होत रही लड़कियन के तो उन्हें कहा सावन में मौका। अब तो किसी भी समय हम सब उठाई थे बैग पहुंच जाए थे अपने घर लेकिन पहले कहा था सावन एक ऐसा मौका होता रहा जब एक इंतजार होता रहा साल भर सावन गवा फिर सावन में जाए का मिली। तो यही से सावन और कजरी ये दोनों स्त्री के जैसे लागत है कि श्रृंगार है। तो चलिए अभी एगो तनी भर मतलब कहा जाए ना अपने संगीत से सज ली जाए तनी कजरी सुन ली जाए। तो हंसत रहा मुस्कुरावत रहा बजावत रहा अपन वाला फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सी 89.6 FM या गोंडा शहर की धड़कन। आप सुबह सुनत हो अपने आरजे पीना के संगे भोजपुरिया शाम आपके नाम।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: सो वापस से सभिन का भाई ए बूंदन भरा राम राम और नमस्कार प्रणाम का हाल है भाई। और ई कजरी गीत सुने के बाद मन तो करत है कि जाई झूला पे बैठ के कुछ देर ई कजरी सुनी और ई सावन गाना अपने बचपन वाले अंदाज में जिए के कोशिश करी। वैसे आप लोग बताई हैं कि आप लोगन के का मन की ही ई कजरी सुने के बाद। और सबसे खास बात है कि हमारे सबके जब अपन चौपाल लागत है ना, तब अपने खास लोगन के संगे बात, पंचायत, हंसी ठिठोली और ये सब गीत और गाना जैसे लागत है कि एक दुनिया बसाए दिया थे। सखी सहेलिन के लोग गीतन के जो किताब होत रही उनो पैदा नहीं होत रही। ओका जैसे कहा था ना कि लोगन के जीवन से लिखा जात रहा। कजरी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे का सिखाई जात रही, दादी से, नानी से, और दादी नानी से अम्मा का, और अम्मा से उनके बिटिया का। ये मौखिक परंपरा रही। कबो भी आपका कोनो स्कूल या कॉलेज में कजरी लिखी पढ़ी नहीं सुनवत मिली हुई। अब तो भाई परंपरा बदल गई ही, जैसे की लुप्त होती कुछ कला तो का किताबन में संजोवा जाए लग है। लेकिन पहले ये सिर्फ मौखिक परंपरा रही। लोग अपने सुन सुन के, जैसे खिस्सा कहानी होता पहले अपने पिता और अपने दादी दादा इन सब से सुन के हम सब सीखत रहे, वैसे ही कजरी के भी रहा। पहले ना तो मोबाइल रहा, ना गीत सिखाए के लिए दादा दादी नानी पास बैठे रही, मैं सुनावत रही और हम सब सीख लेते रहे। दादी के पास बैठे के टाइम अब आज के जमाना में मोबाइल हमें देते नहीं है। अब यह बात है कि तकनीक बुरी तो नहीं है, लेकिन अपनी जो जड़ है उसे जुड़ब बहुत जरूरी है। और आज सिर्फ कजरी का मनोरंजन के रूप में ना देखें, एक लोक स्मृति और अपन बचपन के रूप में देखें। फिलहाल सावन के महीना है, पकौड़ी पर चर्चा ना हो कैसे हो सकत है, तब गरम पकौड़ी और चाय और कजरी हमारे साथ है। मतलब कजरी गाय वाली हमने सखी है और हम भी थोड़ा बहुत सुर लगाए लिप्स के साथ है। वैसे हमें ज्यादा कजरी वजरी तो नहीं होते, लेकिन हाँ कोशिश तो हम करे से पीछे नहीं हटे, ये तो हमारे ही है। और हमारे सखी एक जनी हमसे पूछिन कि अगर आपके पिया आपका बहरे से फोन कह दिए तो आप क्या करिए, उनका पकौड़ी बनाए के भेजने हैं? तो हम कहें कि ना, पकौड़ी बनाए भेजब तो ना, लेकिन हम वीडियो कॉल कही के हम बनाए के खाब और दिखाइब। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले के जमाना में इंसान दुखी होता रहा, लेकिन अभी दुखी होए के मौके नहीं मिलते कि कजरी गाए। तो मोबाइल का कर जैसे ना कि कजरी से दूर करे के लिए हमें सबका वीडियो कॉल दे जैसे कि भाई कजरी ना गाओ, वीडियो कॉल पर बात कर लो। और बादर देखो गरजे लाखे जोर से, और सखी कहा थी कि चाय बनाओ। अब चाय बन के आ चुकी है, फिर भी चाय बनावे कहती कहे कि कहा थी कि इतना चाय कम पड़ जाए, मतलब दो बार चाय पिए के मूड लागत है। तो ये मूड जोन है बरकरार रही और कजरी का जो सौगात है वो चलत रही। और जिसन की एगो कजरी हमका भी याद आवा थी, आपका सुनाई इतनी भर सुन के बताई है कि कैसन है ये कजरी। और प्रयास करी थे अगर आपका अच्छा लगे तो जरूर, जैसे कहा था ना कि सबके कोशिश है कि मन मोह लिए, ऐसन कजरी सुनाई सुनी। कई

कैसन लाग आप सबका ई गीत। वैसे हमें तो थोड़ा बहुत आवत रहा जोन हम अपन प्रयास कहके आप सबका सुनाए दिए ने, लेकिन अब आप सबके बारी है कि आप चैट रूम में अपन अपन कजरी जरूर लिख के भेजें कि कौन आप सबका बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे पसंद नापसंद के बातें नहीं, लोकगीत अपन पसंद बना ही लिए थे अपने आप। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे सबके यूपी बिहार में जो अलग अलग स्थान है वहाँ के शैली और गायन सब जगह अलग अलग है। पूर्वांचल में कजरी विशेष तौर पर गाई जाती है, जिसमें मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, आसपास के क्षेत्र और लोक संस्कृति एवं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और यह नहीं, कजरी केवल महिलाएं के गीत सीमित नहीं है, एवं पुरुष कलाकार भी मंच पर एक गीत गाय के एक शोभा बढ़ावत है। यानी कि मतलब कजरी सिर्फ गाँव मनाई है, आज बड़े बड़े मंच पर गाई जाए थी। कहते न कि लोक कला का यात्रा है, पहले आंगन, फिर चौपाल, फिर मेला और मंच, और देखा आए वाले समय कहाँ पहुँच जाई। तो चली फिर सुना जाए गो और कजरी अपने सखी लोगन से पूरा म्यूजिक के साथ। कहूँ जाई है ना, सुनत रहे आपन फेवरेट वाला कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला अपने आरजे बीना के संगे।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: तो वापस से अपने सखी लोगन के स्वागत करीत है हमारे स्टूडियो में। सब भाई गावत बजावत ही और आज एकदम माहौल बनाई और संगे संग पूरे शहर का, यानी कि गोंडा शहर का, पूरे देश का, आज कजरी वाली जोन कहा था ना कि भावना है वो आई जाई कहे कि जे भी अभी तक ना गाय हुई ना सुने हुई, जे मतलब अभी दूर हुई कजरी से, वैसे तो कभी ना कभी तो सुने हुई है, लेकिन अब से सावन जे ना सुने हुई ते अब की बार जरूर 89.6 FM के संगे सावन जरूर मनाई है। कहे कि ये त्यौहार सिर्फ एक मनई के मनावे वाला त्यौहार नहीं है, ये पूरे पूरे मतलब देश का, पूरे पूरे संस्कृति का मनावे वाला त्यौहार है। कहा था कि सावन भादो मा जोन प्रसिद्ध परंपरा है ओका जियब एगो खुशी का जियब होत है। पूरे साल हम सब अलग अलग त्यौहार मनाए थे, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य के त्यौहार मनाए भी जिम्मेदारी हमारे सबके हो जाती। सावन, सखी, मायका, पिया, बादर और मन के बात, अगर ये सब चीज हो जाए तो भाषा बदल जाए। सावन ता आए के भी चाहे ना आई, लेकिन उभाव जोन है उस सावन का कहूँ भी हो तो बुलाए ली। तो ये सब खास बात है हमारे सबके लोक संस्कृति के, जो उनकी हमें सबका एकदम अपने दिल से जोड़ के रखे। अब समय हमारे श्रोता परिवार के भी कुछ ना कुछ कहे के, आप सबन के भी कुछ कहे के कि आपके शहर और गांव माँ का कजरी गाई जाती हाँ या नहीं। अगर हाँ तो 3 दिल भेजी हैं, अगर ना तो 1। आपके सबसे पुरानी सावन के कौन याद है, मतलब कितने साल के, कै बरस के रहे हो जब आप सावन माँ पहली बार झूला झूले हो रहा या कजरी सुने हो रहा, जो भी जोन भी है। का आप अपने दादी से कबो लोकगीत सुने हो है? अगर हाँ तो फिर आपके दिल के साथे एगो स्माइली भी हम देखा चाहिए थे। अब आप ये बताइए हैं कि का आप नीम या आम के डाली पर झूला जब झूले हो कि नहीं। हम तो भाई झूले हैं बहुत ज्यादा, हम तो डाली भी तोड़ दी हैं। एकरे साथे सावन के पसंद आपके का है, झूला कजरी या चाय पकौड़ी? हमार तो दोनों है, फिलहाल हम दोनों के लिए जाब, अगर चाय पकौड़ी है तो दिल और झूला कजरी है तो अपन स्माइली, और हमार दोनों है कहे कि हमें दोनों पसंद है, हमें चाय पकौड़ी भी चाहिए और झूला कजरी भी चाहिए। और आप सबसे जाना चाहिए थे कि अगर आपका ऐसा कोनो मौका मिले जहां आपके दोस्त यार सब बुलावे और गीत संगीत हो तो वो मौका बिल्कुल ना छोड़िए, कहे कि सखी सहेलिन के साथ अपने जो कहते ना कि भाव के आदान प्रदान करब, यो एगो त्यौहार है। और अपन खुशी भी कहा थी कि खुशी माँ शिकायत होती, इंतजार होते और बड़ी इच्छा होती एक दूसरे से मिले के। कहा थे कि कजरी माँ बोलत नारी का मन, कबहू हसी कबहू पीर, सावन के बूंद संग बह जाए मनवा के हर तस्वीर। और यह कारण है कि कजरी आज भी सबके दिल छुअत है। ता आज के जो नी श्रृंखला है ई ना सिर्फ एगो मतलब कहते ना कि घर घर पहुंचे के है, बल्कि अपने साथे एगो रस्सी के झूला बांधब है जिमा हम अकेले ना बैठी। ई कजरी के झूला मा हमरे सारे श्रोता लोग हमरे साथे बैठे और ई संगीत के संगे झूला झूला झूल के एकर जो हवा है उका महसूस करें। झूला झूला तो चेहरे पर हवा लागत थी, वो हवा जब लागत थी मन कहते कि अरे बस झूला झूला करें और क्यों झूलावे। तो ये जमावड़ा ऐसने बना रही और आगे जो सखी सहेलिन और ये जो कहते ना कि बातन के जो माहौल है वो कबू ना खत्म हुई। तो सबसे पहले जैसन कि आप सबके मन में कोई सवाल भी है तो आप सब ये सोचें कि अगर मन में कोई सवाल है तो सवाल कई के काहे ना होकर उत्तर ले लिया जाए। तो अगर आपके मन में भी कबोई आवा हो कि अरे कजरी कहाँ गए, अगर आप सबका एग्जाम माँ या पेपर माँ कहूँ के कोनो संस्कृति के बारे में लिखे ना हो तो आप सब पढ़ोबो ना करो कि संस्कृति का है और एक इतिहास का है। तो जैसन कि आज आपका हम सावन से रूबरू कराएं, बारिश के बूंदन से, खेत खलिहान से, खास तो हमें वो लागत है जब हम छोटी रहन, बहुत छोटी रहन, तो हमारे गांव में जब धान के रोपाई शुरू हुए तो पानी भरा रहे और जिससे पानी गिरे लागे तब तो इतना तेज तेज सब औरतें कजरी गावे लागे, इतना अच्छा, कोनो कहे कि हमार वाली, कोनो कहे हमार वाली कजरी गावा जाई, मतलब वही मैया लड़ाई हो जाए कि हाँ मेरी हमार वाली कजरी ज्यादा अच्छी है, हमार वाली कजरी ज्यादा अच्छी है। और ये चक्कर माँ कब सावन बरस के चला जाए पता ना चले। और सबसे पहले तो आपको बताई कि कजरी गीत के जो उत्पत्ति रही ये मिर्जापुर के जिले में जो मान माँ विंध्यवासिनी के माता जी के मंदिर है वहाँ से भय, वहाँ सावन भादो के महीना माँ जब बादल खूब बरसे हरियाली और खूब मतलब सब आस पास जैसे माहौल बदल जाए तो सब झूला पड़े और वहाँ प्रेम और विरह के उल्लास के गाना गावा जाए। एका देवी वंदना भी पहले कहा जात रहा और कजरी गीत जोन है स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी देवी के गुणगान और महिमा में पहले गावा जात रहा, उकरे बाद धीरे धीरे एकर शैली के विख्यान भय। और अगर ऐतिहासिक कथा के बात करी तो एक लोक कथा के अनुसार कहते हैं कि कंतित मिर्जापुर के राजा के एक राजकुमारी रही जेकरा के नाम कजरी रहा, वह अपने पति से बहुत प्रेम करत रही, पति से वियोग और अलगाव के दुख माँ वह विरह गीत गायन और उही का कजरी कहा जाए लाग। और कहा थे कि एगो राजा रहे दान बरैया प्रसंग जेका जन श्रुतियन मा बूढ़े नाथ मंदिर और हुआ के राजा दान बरैया के इतिहास में जोड़ा जात है। कहा थे कि उनके यहाँ सावन के महीना मा ई गीत गाय के ईश्वर के आराधना की जात रही। और अगर देखा जाए तो प्रकृति श्रृंगार के एगो गीत है जो उनकी वर्षा ऋतु से जुड़ा है, कहे कि ई समय ऐसा है जब सुंदरता हर तरफ फैल जाती, राधा कृष्ण के प्रेम लीला और प्रीतम से विरह के जो वर्णन है वो दिखावा जात है। जैसे गजल के गायकी है जब मन कहा था ना कि जब क्यों दिल टूटा थे, क्यों क्यों प्यार अलग हुई जात है तो गजल लिख दिया था मैंने, वैसे कजरी जो है वो विरह मतलब दूरी के, मतलब अलग ना ही भय है लेकिन बस दूरी है, डिस्टेंस है, उकरे विरह में जो गीत लिखा जाता है वही का कजरी कहा था। ये शैली जोन है विशुद्ध रूप से देवी गीत और मौसमी लोक गीत के शैली है। एका समझे के लिए बस आपका थोड़ा सा दिल खोले की जरूरत है और दिल खोली है तो अपने आप आपका उत्तर आपके मिल जाए हैं। तो ही के साथ है आरजे बीना का दिए इजाजत, सुनत रहे बजावत रहे आपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM हगोंडा शहर के धड़कन। आप सुनत हो आपन शो आरजे बीना वाला गोंडा मैसेज मसाला भोजपुरी अंदाज में।
3: बदरिया

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: now, listen close what I gotta say.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धरती।

सांसों पर एहसान किए हैं, अपने ही सांसों पर एहसान किए हैं, इन धड़कनों को बेहद परेशान किए हैं। आईने से आंखें मिलाने की जिद में, आईने से आंखें मिलाने की जिद में अपने ही चेहरे पर निशान किए हैं। अब खुद से बेरुखी का ये आलम है कि दर्द को सीने में मेहमान किए हैं। खुद को मनाते मनाते एक शाम हुई, खुद को मनाते मनाते एक शाम हुई, फिर खुद को खुद से अनजान किए हैं। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की फ्राइडे की शाम में बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात और जज्बात मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र जी राजस्थान से, धर्मेश त्रिपाठी आश्रम मिश्रा जी लखनऊ से, शशि सिंह जी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, मुस्तफा जी साउदी से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, निधि सीतापुर से, नव्या गोंडा से, रौनक तिवारी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। मालवे नगर से राजेश सिंह जी ने, बजरानी बाजार सोनारगली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबेहा गोंडा से और निशा पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। और डेफिनेटली दोस्तों लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपकी, जज्बात आपकी और क्या आपकी, अर्जी सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक। हाँ, महेंद्र का कहना है राजस्थान से, मत सोचो कि आगे क्या होगा, मत सोचो कि आगे क्या होगा, जो आज तक हुआ वो कौन सा सोचा हुआ था, वक्त के हर मोड़ पर एक नया सवेरा मिला, जो मिला बेहिसाब मिला, कभी मांगा नहीं हुआ था। क्यों फिजूल में कल की फिक्र में आज खोते हो, ये तो बहुत पॉइंट की बात है, क्यों फिजूल में कल की फिक्र में आज खोते हो, जो होना है वो होकर रहेगा, जो हुआ वो भी रचा हुआ था, भरोसा रख उस रब की रहमत पर ए मुसाफिर। आहां, भरोसा रख उस रब की रहमत पर ए मुसाफिर, तेरी तकदीर का हर पन्ना उसी का लिखा हुआ था। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की ही, राजस्थान से, उनको सुनना है गाना देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, सो जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, जहाँ की बोली में रंगोली सातों रंग। एंजॉय करेंगे बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा पैट्रियोटिक सॉन्ग, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा रंग में हमारे महेंद्र की फरमाइश पर। और ऐसे में पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वे बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आहा

मेला रंगीला देश मेरा रंगीला हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बढ़ते हमारी आज के लिए फरमाइशी गीत की तरफ बढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। उस्मान खान एंड सबिता दुबे जी, आपका स्वागत है आपके अपने शो में। नव्या गोंडा से स्टे ट्यून्ड, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी जी की। एंड यू नो व्हाट गाइस, धर्मेश त्रिपाठी जी को सुनना है गाना यमला पगला दीवाना का टाइटल सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से।

गाना धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पे जो कि है गोंडा सेना, और लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं? और इतना ज्यादा हाई एनर्जी हाई बीट वाला गाना सुन के मुझे तो बहुत ही ज्यादा आनंद आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। रेनू तिवारी गोंडा से, तरबगंज गोंडा से आपका स्वागत है। और एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना सावन में मोरनी बनके नाचो आए हाय। काहे सावन में ही, सावन भादो जितने भी महीने होते हैं, हर एक मौसम में हर एक दिन हर एक पल हर एक क्षण हमको मोरनी बनके नाचना ही चाहिए। ये जिंदगी मिला ही इसीलिए कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात, इस चार दिन की चांदनी में इतना खुशियां बिखेरना चाहिए, इतना खुशियां बटोरना भी चाहिए कि बस लोग कहें आखिर किस चक्की का आटा खा के इतनी खुशियां बटोर के लाते हो और इतनी खुशियां बांटते हो। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, फिलहाल एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, मींस आशु मिश्रा जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड। आज आप लोग की जिंदगी में कुछ स्पेशल नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में तो आज बहुत स्पेशल, बहुत अच्छी चीज है। मैं आप लोग को चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताऊंगी, मैं आप लोग को जाते जाते जरूर बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आपके लिए अगर कोई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी जज्बात है, बहुत ही अच्छी गॉसिप है, कुछ स्पेशल है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हो।

सरंगमा फाल्गुनी पाठक की आवाज में हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश वजह की है। लखनऊ से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि तुम मिले तो लगा हर कमी पूरी हो गई, ये आप सभी के लिए है और सच में दिल से है। तुम मिले तो लगा हर कमी पूरी हो गई, वरना इस शहर में जीने की कोई वजह ही ना थी। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना टिप टिप बरसा पानी। सो मोहरा काल का याग्निक उदित नारायण की आवाज में हाउ रोमांटिक लव्ड वाला बारिश वाला सामन वाला रंग में एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग, हाँ सबको पसंद होगा, सब अभी जाएंगे इमेजिनेशन वाली दुनिया में, क्यों सही कहा ना मैंने।

की इम्तिहान चाहता हूँ, तेरे इश्क की इम्तिहान चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सनगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों। हमारे कार्तिक कश्यप की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश है शशि सिंह जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना मेरे होश ले लो। सो एंजॉय करते हैं आशा जी की और किशोर कुमार जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला बहुत ही खूबसूरत सनगमा बंदिश पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ शशि सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और मुकेश जी आपका स्वागत है। और नव्या का कहना है सिंपल, मैम मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। तो आप मुझसे क्यों नाराज हो मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं नव्या जी ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

दे, बाना बना दो। किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में बंदिश पिक्चर का ये नगमा हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं हमारी आज की फरमाइशी की तरफ दोस्तों। चलिए चलिए चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन आप लोग आपस में इतना बात कर रहे हो, मुझे अकेले छोड़ दिया है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करो, मेरे से भी कुछ पूछो, मेरे से भी कुछ बात करो। आपस में इससे गप्पे लड़ा रहे हैं चैट बॉक्स में, ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं, बस आ रही हूँ माइक पे आप लोग का नाम बोल के इधर उधर पक पक करके चली जा रही हूँ। हाँ, नो इंटरेस्ट हूँ, सब दिख रहा है, रोना आ रहा है, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस आप लोग ऐसे खुश रहो, ऐसे प्यार से रहो, और क्या चाहिए मुझे। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है सोनिया तिवारी की, और सोनिया तिवारी को जानते हैं कौन सा गाना सुनना है, जाना ना नैन मिला के। सो एंजॉय करेंगे मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। लेकिन उसके पहले, तुम आओ तो आए बहारे मोहब्बत, ये आप सभी के लिए एक बार फिर से। तुम आओ तो आए बहारे मोहब्बत, तुम्हारे बगैर इस चमन में रखा क्या है। सब एंजॉय कर लेते हैं सोनिया तिवारी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड। नाजिया अंसारी, स्वागत है आपको।

0: सोनिया तिवारी जी, आपकी फरमाइश तो वाकई लाजवाब थी, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। चलेंगे अपने अगले फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों, तकदीर का शिकवा कौन करे, तदबीर की बातें सोचे। तकदीर का शिकवा कौन करे, तदबीर की बातें सोचें, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे वाली सोचें। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में, हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,
1: सुर में गाना सीखिए।

किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ पढ़ने का। फरमाइशें इतनी सारी हैं कि मुझे बोलने का समय ही नहीं मिल रहा। अभी मैं आप लोगों से ऐसे गपशप करने लगूंगी ना तो फरमाइशें पीछे रह जाएंगी, और फरमाइशें पीछे रह जाती है, एक भी फरमाइश छूट जाती है तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि घर जाके एक बाइट खाना मैं कम खाने वाली हूँ। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग से। उनको सुनना है गाना, मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। अगर साजन को यही दुआ करना होता कि उनसे बिछड़ के आप उनसे फिर से मिलें, तो साजन काय को ऐसा कुछ करते। अगर साजन की गलती नहीं है तब तो फिर एकदम सही गाना है। सो एंजॉय कर लेते हैं ये स्टीट्यून्ड। वैसे आई लव दिस सॉन्ग, पता नहीं क्यों मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद है। मैं दर्द महसूस करना चाहती हूँ। रॉक स्टार में कहा जाते हैं ना कि तुम्हें सिंगर बनने के लिए दिल तोड़ना पड़ेगा, दर्द को महसूस करना पड़ेगा। मुझे सिंगर तो नहीं बनना लेकिन मुझे लोगों के दर्द को ज़रूर महसूस करना है। कुमार सानू, कविता जी की और अलका याग्निक की आवाज़।

पल, अगर मुझसे मोहब्बत है तो हर लम्हा मेरे नाम कर। टुकड़ों में मिला प्यार मुझे मंजूर नहीं, तुझ पर सिर्फ मेरा हक हो ऐसा कोई इंतजाम कर। या तो अपनी पूरी दुनिया सौंप दे मुझे, या तो अपनी पूरी दुनिया सौंप दे मुझे, या फिर इस अधूरे सिलसिले को यहीं तमाम कर। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, और उनको सुनना है साजन पिक्चर का गाना जिए तो जिए कैसे बिन आपके। सो इंजॉय करते हैं एक बार फिर से सुपर डुपर हिट मेलोडियस सॉन्ग, लेकिन इस बार मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों जी तो जी कैसे बिना आपके साजन पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है मुस्तफा जी की फरमाइश पर जो कि है सऊदी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और क्या आप लोग को पता है अगली फरमाइश किसकी है? एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सबलू सावंत मुंबई से आपका स्वागत है और क्रिकेट लवर आपका भी स्वागत है। नाम लिखते तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है रेनू तिवारी की तरफ गंज रोड गोंडा से। उनको सुनना है गाना हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हर दिल में बसने वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ रेनू तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

किशोर कुमार जी की आवाज ने हमें एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला बहुत ही खूबसूरत सरंग मां। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे लिसनर हैं सबलू सावंत, उनका कहना है कि मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही रोता है। कहां रखे हैं हम शीशे सा दिल अपना, हर किसी के हाथ में पत्थर नजर आता है। दिन हंसते हुए गुजर जाते हैं और रात को तन्हाई का पहरा होता है। ये कहना है सबलू सावंत का मुंबई से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी सबलू सावंत से कि जख्म गहरे हैं बहुत जिनको मैं सी नहीं रहा। जख्म गहरे हैं बहुत जिनको मैं सी नहीं रहा। मैं जिंदा दिख तो रहा हूँ मगर जी नहीं रहा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है अंबा पिक्चर का गाना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। लगा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाज में सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

बलम तो फेल हो गया. हमने एंजॉय किया मोहम्मद अजीज जी की आवाज में और अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उषा कश्यप की फरमाइश पर जो की है गोंडा से. और दोस्तों जानते हैं अगली फरमाइश किसकी है. अगली फरमाइश है निधि की सीतापुर से. और निधि को सीतापुर से सुनना है गाना राजा कैसे बैठूं तोहरी मोटरिया में. सो एंजॉय करते हैं साधना सरगम और सुदेश जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निधि की फरमाइश पर. स्टे ट्यून्ड एवरीवन.

राजा कैसे बैठूं तुम्हारी मोटरिया माँ। हमने एंजॉय किया है साधना सरगम और सुधीर जी की आवाज में जीवन युद्ध का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नव्या की गोंडा से, उनको सुनना है गाना महबूब मेरे। सो एंजॉय करते हैं पत्थर के सनम का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुकेश जी और लता जी की आवाज में।

0: आ गिरा, पलकों की हद को तोड़ कर दामन पे आ गिरा, एक अश्क मेरे सब्र की तौहीन कर गया। वाह, बहुत ही खूबसूरत सी लाइन्स थी। अब इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड, जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर आना, मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की।
1: तेरे बिना दिल लगता नहीं।
0: ये फरमाइश है रौनक तिवारी की गोंडा से।

0: क्या
1: से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
5: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। PLI केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन IP को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
6: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
7: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक, कहाँ बोलो ना बोलो ना बोलो ना, क्योंकि आज है बोलने का दिन और सुनने का दिन। आज नहीं हर दिन होता है, हर शाम ये महफिल लगती है, हर शाम ये महफिल सजती है, बस इंतजार रहता है तो दिल के जज्बात का, बस धीरे धीरे धीरे धीरे निकलने का और दिल के थोड़ा सा हल्का होने का। अनूप मिश्रा जी का कहना है कि वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी, वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी, इतनी तो उम्र भी ना थी जितने सबक सीख लिए हमने। बहुत खूब कहा आपने अनूप मिश्रा जी, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश को एंजॉय करेंगे दोस्तों। अगली फरमाइश है बजरंगी भाईजान पिक्चर के गाने की, तू जो मिला, और इसकी फरमाइश आई हुई है अक्षय कुमार की तरफ से, जो कि हैं गोंडा से, और ही इज माय सीनियर, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को, बिकॉज आज है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल का हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू सो मच मिस्टर अक्षय कुमार फ्रॉम गोंडा, थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट, लव यू सो मच, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं मेरे सीनियर की तरफ से मुझे डेडिकेट किया हुआ ये वाला बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, स्टे ट्यून, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के।

धड़कन मैं दिल हमने एंजॉय किया अक्षय कुमार की फरमाइश पर ये नगमा और ये हैं गुंडा से और इन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था आपके आर्ट सिंपल आर्ट सिंपल को लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच इट मींस रियली रियली रियली अ लॉट सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है रितेश साहू की गोंडा से और रितेश साहू को गोंडा से सुनना है गाना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया सो मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो जाता है फिर उसके बाद में बोलता है कि गोरा रंग तो परेत का रंग होता है गोरे रंग पे विश्वास नहीं करना चाहिए है

लिए हमने इंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा नगमा इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय पाल यादव की ललहुआ लखीमपुर खीरी से, और ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव को सुनना है गाना शहर में चर्चा है। सो आसपास का ये गाना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ विजय पाल जी की फरमाइश पर। एंड थैंक यू सो मच अनूप मिश्रा, थैंक यू सो मच।

बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले नमस्कार एंड वेलकम इन योर शो आरजे मनु, आपका स्वागत है, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच, इट मींस रियली अ लॉट। एंड हाँ, योर आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल एंड यू नो वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर, इट मींस रियली अ लॉट। और आज मैं आपको सच में मिस कर रही हूँ, आज आपका वीक ऑफ नहीं होना चाहिए था। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा पिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की, उनको सुनना है गाना आंखों से तूने ये क्या कह दिया, मींस इसका 2.0। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, तड़कता भड़कता सा नए जमाने वाला नगमा हमारे नए जमाने के मिश्रा पिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवी नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना फिर मुलाकात। एंजॉय करते हैं ये गाना। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि कल मैं मिलूंगी आप सभी को आपके अपने डॉक्टर लव में, आपके अपने फरमाइशी की महफिल में। सो बरकरार रहिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल की तरफ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बाय बाय। I love this song. I really love this song. बहुत कुछ याद दिलाता है।

मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: बचपन में कभी जब उदास बैठते थे या किसी मामूली सी वजह से, तो दादी जरूर पूछती थी कि आज गुमसुम क्यों बैठे हो, जिस पर हम कहते कि जब कुछ बोलता हूँ ना तो उल्टा ही निकल जाता है, इससे अच्छा बोलो ही ना। जिस पर हमेशा दादी कहती कि अच्छा है, दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। खुशामदीद करते हैं आपका 89.6 FM पर आपके रात के हम सफर RJ अदनान, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रात का वो दौर जहां लफ्जों में खुली होती है मोहब्बत, यानी आपका अपना शो आपका बहारे गजल। ये जो दादी या नानी से हम बातचीत करते थे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई गलती हो जाए और हम अपनी दादी या नानी के सामने ज़रा फिक्रमंद हैं तो ज़रूर पूछती थी कि आखिर हुआ क्या है, और अगर हम बताते थे अपना मसाला कि ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसा लगता था जैसे घर के बुज़ुर्ग एक ही लाइन में ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा सिखा देते थे। उन्होंने उस बचपन की खामोशी पर एक कमाल की बात भी कही थी, यही ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा छोड़ भी दे। कितनी गहरी बात है ना, पासबान अकल यानी दिमागी समझदारी का वो चौकीदार जो हमें हर वक्त तोल मोल कर बोलना सिखाता है। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी में दिमाग का होना जरूरी है, लेकिन हर वक्त लॉजिक, हर वक्त हिसाब किताब, क्या ऐसी भी कोई जिंदगी होती है? कभी कभी इस अक्ल के चौकीदार को छुट्टी दे देनी ही चाहिए, अपने इस दिल को थोड़ा तन्हा थोड़ा आजाद छोड़ देना चाहिए, ताकि ये बिना किसी डर पाबंदी के खुलकर धड़क सके, खुलकर अपनी बातें कह सके। तो आज बहारे गजल में हम इसी दिल और दिमाग की कश्मकश की बात करेंगे। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं एहसास से जुड़ी ये पहली बेहतरीन गजल।

रात के इस मोड़ पर जब खामोशी हमसे गुफ्तगु करने लगती है तो अक्सर बचपन की कुछ यादें सिरहाने आ बैठती हैं। मुझे याद है बचपन में जब जरा सी भी चोट लगती थी और मैं रो पड़ता था तो मेरी प्यारी नानी मुझे गोद में लेकर सहलाती और कहती कि बेटा ये मुश्किलें ही तो इंसान को लोहे से फौलाद बनाती हैं। जी हाँ, आज जब जिंदगी के सफर में हमारे सामने कई सारे इम्तहान आते हैं तो मिर्जा गालिब साहब का वो शेर जरा जहन में याद आ जाता है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। फलसफा कितना सीधा है ना इसका। जब आप मुश्किलों से डरकर भागने की बजाय उन्हें गले लगा लेते हैं तो अपना आदि बना लेते हैं तो वो तकलीफें अपना असर खो ही देती हैं। इसे आज के दौर पर अगर देखें तो वो आम नौकरी पेशा लोग जो सुबह की कड़कती धूप या फिर सर्दियों की ठिठुरन में भी सिर्फ इसलिए काम पर निकलते हैं क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, एक वक्त के बाद वो मुश्किलें उनके लिए रोज का आसान हिस्सा बन जाती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रास्ते में लुट गया है तो क्या काफिला तो है, यारों ने सफर का भी हौसला तो है, हाथों में हाथ ले यहां से गुजर चले, कदमों में पुल सिरात सही रास्ता तो है ना। जब आप इस कश्मकश से तपकर बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर वो हौसला पैदा होता है जो जिगर मुरादाबादी साहब ने कहा था कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। अपनी अहमियत को पहचानिए, मुश्किलों को अपने आगे घुटने टेकने दीजिए और आप सुनते रहिए बहारे गजल में ये खूबसूरत सी गजल।

शब की इस तन्हाई में आप सुन रहे हैं बहारी गजल। मैं हूं आपका रात का हमसफर आरजे अदनान। हमारे समाज में एक अजीब सी रीत है, जब कोई इंसान छोटी सी कामयाबी पा लेता है या किसी मुश्किल दौर से गुजर कर जरा संभल जाता है तो लोग कहते हैं बस अब तो ठहर जाओ। लेकिन मेरी नानी हमेशा कहती थी, जिंदगी ठहरने का नाम नहीं, जब तक सांस है तब तक हर दिन नया सवेरा नई जंग है। इन्हीं की बात से, यानी ऐसी बात जो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद दिला देती है। उन्होंने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी है। यानी एक मंजिल पर पहुंचकर रुक जाना तो जिंदगी को थका देना है। अगर आज हम एक रास्ता बंद हुआ है तो हौसला रखेंगे और आगे की राहें आसान हो जाएंगी। जैसे हमारे आसपास बहुत छोटा सा कारोबार करने वाले या स्टूडेंट्स होते हैं, एक एग्जाम खराब हुआ या दुकान नहीं चली तो वो हिम्मत नहीं हारते, वो अपने अंदर एक जुनून पाल कर रखते हैं। इसी बात को अतर साहब अपनी गजल में कुछ यूं कहते हैं कि अभी तवक्को बनाए रखना, अभी उम्मीदें जगाए रहना, बहुत घना है अंधेरा शब का दिलों में शमय जलाए रहना, खुदा ही जाने कि आने वाली ऋतुओं में क्या हो जहां की हालत, अभी ये नगमे न बंद करना, अभी ये महफिल सजाए रहना,

ये देखना है कि दम है कितना, गनीम लश्कर के बाजुओं में सफों को अपनी सजाए रखना, सुरों को अपने उठाए रहना। यहाँ कहाँ बस्तियों की रौनक, यहाँ तो सन्नाटा चीखता है। उजाड़ सहरा का ये है सफर, दिलों की दुनिया बसाए रहना। अभी है खतरा नफस नफस पर, अभी है कातिल गली गली में। शकील आंखें ना बंद करना, शकील खुद को जगाए रहना। इसी बात पर अमीर गजल बाश साहब का वो शेर भी मुझे याद आ जा रहा है कि मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ये जो आज अंधेरा दिख रहा है ना, इसी की पेट से कल की रोशनी आएगी। बस अपनी कोशिशों में कभी कमी मत आने दीजिएगा, बढ़ते रहिएगा। और ये सुनिए हसीन सी गजल सिर्फ आपके नाम।

आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगल सका इसको, न तवारीख तोड़ पाई है, वक्त की मौज पर सदा बहता

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बाहर गजल की इस महफिल में मैं हूं आपका दोस्त आरजे अदनान। अक्सर जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो दिल में एक अजीब सी मायूसी घर कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ धुंध है। ऐसे वक्त में एक बात याद आती है, वही बुजुर्गों की कही बात कि रात चाहे कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, वो कभी सुबह का रास्ता नहीं रोक सकती। सूरज तो अपने वक्त पर ही निकलेगा। फैज अहमद फैज साहब इसी बात को बहुत ही सादे और गहरे अंदाज में समेटते हैं, ये कहकर कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। नाकामी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उम्मीद का दामन छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ एक दौर है, एक शाम है जो ढल जाएगी। हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बीमारी से, पैसों की तंगी से लड़ रहे हैं, लेकिन हर सुबह एक नई आस के साथ फिर से उठ खड़े होते हैं। साकी अमरोहवी साहब भी इसी हौसले को जगाए अपनी गजल में लिखते हैं कि मंजिले लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा, चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रस्ते में बिखर जाऊंगा, दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा, याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरे तस्वीर में भर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। और हमें भी उसी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना है, हौसला हार कर बैठना नहीं है, क्योंकि हौसला हार गए तो समझो जिंदगी वहीं रुक गई। आइए ये खूबसूरत सी गजल हमको जीने के हौसले की तरफ लेकर जा रही है।

सफर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी एक जैसा सीधा मखमली नहीं होता। जिंदगी का भी यही दस्तूर है। बचपन में जब हम थोड़ी दूर पैदल चलकर थक जाते थे तो छांव ढूंढने लगते थे, तो हमारे घर के बुजुर्ग कहते थे कि जिंदगी मैदान के पक्के साए नहीं मिला करते बेटा, यहां तो अपनी धूप खुद ही झेलनी पड़ती है और दूसरों के लिए साया बनना पड़ता है। और इसी फलसफे को ये गजल बखूबी बताती है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। जिंदगी कुछ ख्वाब और चंद उम्मीदों का ही तो नाम है। कभी हालात हमारे हक में होते हैं तो कभी हमारे बने बनाए आशियाने बिखर जाते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि अगर एक आशियाना जल भी जाए तो दूसरे की उम्मीद जिंदा रहे। जैसा कि कौसर साहब अपनी गजल में कह गए हैं, बुलंद बर्ग को आगे हौसला रखना, जले तो एक नशेमंद तो दूसरा रखना। इसी बात को राहत साहब अपने अल्फाज में कुछ इस कदर पिरोते हैं कि हौसले जिंदगी के देखते हैं, चलिए कुछ रोज जी के देखते हैं। नींद पिछली सदी की जख्मी है, ख्वाब अगली सदी के देखते हैं। रोज हम एक अंधेरी धुंध के पार काफिले रोशनी के देखते हैं। धूप इतनी कराहती क्यों है, छांव के जख्म सी देखते हैं। टिकटिकी बांध ली है आंखों ने, रास्ते वापसी के देखते हैं। पानियों से तो प्यास बुझती नहीं, आइए जहर पी के देखते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, हर कोई किसी न किसी कश्मकश में है, वहां आपस में हाथ मिलाए रखना, एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा सच है। अपनी आंखों में ख्वाब सजाए रखिए, उम्मीदों के दीप जलाए रखिए और सुनते रहिए बहारे गजल अपने आरजे अदनान के साथ। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते इसी शो में इसी दिन वापस से मुलाकात होगी, कुछ चंद अलग बातों के साथ, कुछ गजलों के साथ और कुछ नगमों के साथ। पर हाँ, आप हमेशा याद रखिएगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।

जिंदगी के शोर, राजनीति की आपाधापी, रिश्ते नातों की गलियों और क्या खोया क्या पाया के बाजारों से आगे सोच के रास्ते पर कहीं एक ऐसा नुक्कड़ आता है जहां पहुंचकर इंसान एकाकी हो जाता है, तब जाग उठता है कवि। फिर शब्दों के रंगों से जीवन की अनोखी तस्वीरें बनती हैं, कविताएं और गीत सपनों की तरह आते हैं और कागज पर हमेशा के लिए अपने घर बना लेते हैं। अटल जी की ये कविताएं ऐसे ही पल, ऐसे ही क्षणों में लिखी गई हैं, जब सुनने वाले और सुनाने वाले में तुम और मैं की दीवारें टूट जाती हैं, दुनिया की सारी धड़कनें सिमट कर एक दिल में आ जाती हैं और कवि के शब्द दुनिया के हर संवेदनशील इंसान के शब्द बन जाते हैं।

हायो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रात दुनिया का शायद सबसे ईमानदार समय, दिन की भीड़ से इंसान बहुत कुछ छिपा लेता है, अपने चेहरे, अपनी मुस्कान, अपने आंसू। लेकिन रात किसी को झूठ बोलने नहीं देती, क्योंकि जब सारी आवाजें सो जाती है तब सिर्फ दो चीजें जागती है, यादें और वो आवाजें जिन्हें दुनिया सुनना नहीं चाहती। मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो। स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो में। अगर इस समय आपके कमरे की लाइट बंद है तो उसे जलाइए मत। अगर आप अकेले हैं तो घबराइए मत। और अगर आपके पास कोई बैठा है तो एक बार उसकी तरफ देख लीजिए, सिर्फ ये यकीन करने के लिए कि सचमुच वही है जिसे आप समझ रहे हैं। आज की कहानी किसी भूत की नहीं है, किसी शैतान की नहीं। आज की कहानी उन मासूम बच्चों की है जिन्होंने आखिरी सांस तक यकीन किया कि कोई उन्हें लेने जरूर आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। दुनिया में बहुत जगह ऐसी होती है जहां जाने के लिए किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बिना लिखे ही समझ जाते हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही एक जगह है, एक पुराने जंगल के बीच आज भी खड़ी है, घने पाइन के पेड़ों के पीछे धुंध से ढकी हुई, समय से हार चुकी एक चार मंजिला इमारत। कभी ये बच्चों का बोर्डिंग स्कूल था, नाम सेंट गैब्रियल्स रेजिडेंशियल स्कूल, लेकिन अब कोई उसे इस नाम से नहीं बुलाता। आज हर नक्शे, हर सरकारी रिकॉर्ड और आस पास के हर गांव में सिर्फ उसकी एक पहचान है, द शावर्स। उस इमारत के सामने एक पुराना पत्थर रखा है, उस पे सिर्फ तीन पंक्तियां लिखी है, सेंट गैब्रियल्स रेजिडेंशियल स्कूल 1938 to 1970। और उसके नीचे किसी ने बाद में चाकू से खरोच कर लिख दिया था, नेवर वेट फॉर द वॉटर। किसने लिखा, क्यों लिखा, कोई नहीं जानता। अजीब बात जानते हैं, सरकार ने इस इमारत को कई बार गिराने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ न कुछ हुआ। एक बुलडोजर, वो अचानक बंद हो गया। दूसरे दिन ड्राइवर ही गायब हो गया। तीसरी बार जब मजदूरों ने काम शुरू करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा उन्हें नीचे बेसमेंट से बच्चों के गाने की आवाजें सुनाई दे रही है, जबकि पूरा स्कूल 55 साल से खाली पड़ा था। अगर आप ध्यान से सुने श्रोतागण, तो अभी भी कभी कभी वहाँ बच्चों की हंसी की आवाजें आती है, लेकिन जो लोग उस हंसी के पीछे गए वे कभी पहले जैसे लौट कर नहीं आए। सन 1970 की बात है, दिसंबर की आखिरी रात, बाहर तेजी से बर्फ गिर रही थी, अंदर हॉस्टल के डॉर्मेट्री में 27 बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। सबसे छोटा सिर्फ 7 साल का था और सबसे बड़ा 10 साल का। उनमें से एक था थॉमस, जिसे हर रविवार को अपनी माँ का पत्र मिलता था। एक थी एमिली, जो सोने से पहले अपनी छोटी सी प्यारी सी डायरी निकालती थी और लिखती थी। सैमुअल, जो हमेशा कहता था कि वो बड़ा होकर फायर फाइटर बनेगा। और सबसे छोटी एनी, जिसके हाथ में हमेशा एक कपड़े की छोटी सी गुड़िया रहती थी। उस गुड़िया का नाम था लूसी। एनी बिना लूसी के कभी नहीं सोती थी। उसकी माँ ने बोर्डिंग स्कूल में छोड़ते समय उससे कहा था, एनी जब भी तुम हमको मिस करना, इस लूसी को गले लगा लेना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और उस दिन आंखों में आंसू भरे एनी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था, मगर उसे क्या पता था कि वही गुड़िया उसकी आखिरी साथी बनने वाली है।
रात के 2:17 थे। नीचे बेसमेंट में एक पुरानी इलेक्ट्रिक पैनल से एक छोटी सी चिंगारी निकली चट, और दूसरी ओर फिर आग। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा, और ऊपर डॉर्मेट्री में एमली सबसे पहले जागी। उसे लगा शायद कोई लकड़ी जल रही है, लेकिन अगले पल उसकी सांसें रुकने लगी। उसने थॉमस को झकझोरा, उठो उठो, और फिर थोड़ी देर में पूरा कमरा चीखों से भर गया था। बच्चे खांस रहे थे, रो रहे थे, दौड़ रहे थे, और फायर अलार्म वो तो खरा वो बज ही नहीं रहा था। श्रोतागण, उस रात उन बच्चों ने एक नहीं दो गलतियां की। पहले उन्होंने सोचा उन्हें कोई बचाने आएगा, और दूसरा उन्होंने भरोसा किया उस जगह पर जिसका नाम था द शावर, वहाँ पे वो चले गए। लेकिन उसके शावर्स तो खराब थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उस रात उनकी मौत आग से नहीं बल्कि सिर्फ इंतजार से लिखी है। कुछ दरवाजे कभी खुलते नहीं, कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, और कुछ बच्चे आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं लेट नाइट हॉरर शो सिर्फ 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो पर। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आज की इस लंबी ठंडी और

पेड़ों के पीछे डूब चुका था। आसमान पे धुंध उतरने लगी थी। रेबेका कॉलिंस अपने टीम के साथ आखिरकार उस वीरान स्कूल के मुख्य गेट के सामने खड़ी थी। लोहे की विशाल गेट जंग से लगभग काला पड़ चुका था। उसके ऊपर लटका स्कूल का पुराना बोर्ड हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। उस पर धुंधले अक्षरों से लिखा था, सेंट गैब्रियल्स रेजिडेंशियल स्कूल। नीचे किसी ने वर्षों पहले सफेद रंग से लिख दिया था, द शावर्स। और उसके ठीक नीचे लाल पेंट से एक चेतावनी लिखी थी, नीचे मत जाना, डोंट गो डाउनस्टेयर्स। डैनियल ने मुस्कुराते हुए कैमरा चालू किया और हंस के कहा, लोगों को इस तरह की वार्निंग्स बहुत पसंद है। माइकल भी हंस पड़ा, अरे ये तो बस एक अबैंडेंड बिल्डिंग है। मगर प्रोफेसर आर्थर हेयर ने बाकी तीनों लोगों से अलग कुछ देर तक उस बोर्ड को ध्यान से देखा और फिर कहा, कभी कभी ये वार्निंग्स सच होती है। मगर रेबेका ने उस पे ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी घड़ी पे देखा, 6:07 थे। उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। और चारों धीरे धीरे स्कूल परिसर में दाखिल हुए। अंदर हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी, झूले टूट चुके थे, बास्केटबॉल कोर्ट में अब पेड़ उगाए थे, एक कोने में लोहे की छोटी सी स्लाइड अब भी खड़ी थी, हवा चल रही थी और जब भी वो चलती तो वो स्लाइड अपने आप हल्के से हिल जाती। रेबेका ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, प्रकृति ने ये सारी जगह अपने कब्जे में कर लिया है। डैनियल ने कैमरा नीचे किया, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, रेबेका क्या तुमने कुछ सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस रहा है। चारों रुक गए, हवा थम गई, पूरा परिसर फिर से सन्नाटे में डूब गया। माइकल मुस्कुराते हुए बोला, लोमड़ियां हैं। लेकिन डैनियल का चेहरा बता रहा था कि उसने लोमड़ी की आवाज तो नहीं सुनी थी। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, तरह तरह की आवाजें आ रही थी। वे मुख्य इमारत के भीतर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। रेबेका ने टॉर्च जलाई। लंबा अंधेरा कॉरिडोर, दोनों तरफ पुरानी कक्षाएं, दीवारों पर बच्चों की बनाई हुई रंग बिरंगी पेंटिंग्स जो अब धूल और समय से धुंधली पड़ चुकी थी। एक चित्र पर नीले रंग से लिखा था, माई होम, दूसरे पर माई मदर। रेबेका कुछ पल रुकी। उसने कहा, बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कभी इसको छुआ ही नहीं। प्रोफेसर हे ने धीमे से कहा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इन यादों को कलेक्ट करने के लिए कभी लौट कर नहीं आया। डैनियल ने तुरंत कैमरा ऊपर घुमाया। दूसरी मंजिल कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज अब भी आ रही थी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई छोटा बच्चा नंगे पांव गलियारों में चल रहा हो। टक टक टक टक, माइकल ने ईएमएफ मीटर देखा। स्क्रीन बिल्कुल सामान थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज अब उनके ठीक ऊपर से आ रही थी। रेबेका ने जोर से कहा, क्या कोई है वहाँ? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर बहुत दूर से एक मासूम सी आवाज आई, इतनी हल्की जैसे हवा में घुल रही हो। वी आर डाउनस्टेयर्स, हम नीचे हैं, आप लोग नीचे आइए। चारों ने एक साथ एक दूसरे को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार रेबेका कॉलिंस के चेहरे पर सवाल दिखाई दिए। क्या वाकई इस इमारत में वे अकेले नहीं थे? कभी कभी डर आंखों से दिखाई नहीं देता, वो एक आवाज बनकर धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है। रेबेका और उसकी टीम कुछ

पल वहीं खड़ी रही। चारों के पास हर आधुनिक उपकरण था, लेकिन उस एक मासूम सी आवाज का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था। सिर्फ आवाज आ रही थी, हम नीचे हैं, वी आर डाउनस्टेयर्स। बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियां धूल से ढकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई वहां नीचे नहीं गया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, इतनी ठंडी कि रबेका की सांस धुएं जैसी दिखाई देने लगी। डैनियल ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, टेम्परेचर 5 डिग्री तापमान है। माइकल ने कहा, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाहर तो 20 डिग्री है। प्रोफेसर हे ने धीरे से कहा, कुछ जगह अपने जाड़ों को हमेशा याद रखते हैं। नीचे पहुंचते ही एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने पाइप जिन पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी। गलियारों के आखिर में लोहे का एक भारी दरवाजा, उसके ऊपर अब भी आधा टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, द शावर्स। रबेका धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसने दरवाजे को छुआ। वही धातु बर्फ की तरह ठंडी थी। उसी पल एनी की छोटी सी गुड़िया लूसी दरवाजे के पास धीरे से लुढ़क कर आ गई। चारों के कदम वहीं रुक गए। डैनियल ने फुसफुसा के कहा, क्या किसी ने इसको हम लोग की तरफ फेंका है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब ने देखा था गुड़िया अपने आप उनकी ओर आई थी। रबेका ने कांपते हाथों से लूसी को उठाया। गुड़िया के कपड़े आधे जले हुए थे, उसकी एक कांच की आंख गायब थी, लेकिन उसके छोटे से कपड़े के हाथ में एक मोड़ा हुआ कागज फंसा हुआ था। रबेका ने उसे सावधानी से खोला। कागज पर बच्चों जैसी लिखावट थी, अंग्रेजी में सिर्फ एक पंक्ति, मम्मी ने कहा था कोई न कोई हम लोग की मदद के लिए हमेशा रहेगा। रबेका कुछ क्षण कुछ बोल नहीं पाई। प्रोफेसर हे की टॉर्च पास पड़े एक लॉकर पर पड़ी। लॉकर आधा खुला था, अंदर धूल से ढकी एक छोटी सी नीली डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, एमिली कार्टर, एज 9 वर्ष। रबेका ने धीरे धीरे आखिरी लिखा हुआ पन्ना खोला। स्याही धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी पढ़े जा सके थे। उस पे लिखा था, चारों तरफ धुआं है, थॉमस कह रहा है हम लोग एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएं, हम साथ रहें। एनी बहुत रो रही है, और हम लोग इस शावर रूम में आ गए हैं, पर ये शावर चल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ धीमे धीमे टप टप थोड़ा सा पानी गिर रहा है। आई थिंक समवन विल कम, कोई हमारी मदद के लिए आएगा। मम्मी हमें बहुत डर लग रहा है। इसके बाद एक पन्ना खाली था। रबेका की आंख अनायास भर आई। माइकल ने धीरे से कहा, चलो हम लोग बाहर चले। पहली बार उसकी आवाज में डर था, लेकिन रबेका वहीं खड़ी। उसने कहा, नहीं, ये लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। उसी समय गलियारे में बच्चों के कदमों की आवाजें गूंजने लगी, फिर कुछ कदम, तीसरे, और देखते देखते ऐसा लगने लगा कई छोटे छोटे बच्चे चारों ओर चल रहे हों, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। बहुत धीरे धीरे बच्चे काउंटिंग कर रहे थे, 1, 2, 3। रबेका ने धीरे से सिर उठाया, गिनती जारी थी, 4, 5, 6। प्रोफेसर हेस की आंखें फैल गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये लोग अपने आप को गिन रहे हैं। फिर आवाज आई, 7, 8, 9, और अब हर संख्या के साथ एक नई आवाज जुड़ रही थी, 10, 11, 12। रबेका की आंखों से अनजाने से आंसू बह निकले।
उसे लगा जैसे हर आवाज किसी बच्चे की पहचान हो। 24, 25, 26 पूरा बेसमेंट सन्नाटे से डूब गया। फिर बहुत धीरे एक आखिरी बहुत मासूम सी आवाज सुनाई दी। 27 कुशन पूर्ण मौन। फिर रबेका के ठीक पीछे से एक नन्ही सी बच्ची ने बहुत मासूमियत से पूछा, क्या आप हमको घर ले चलेंगी आंटी? रबेका ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, वे सिर्फ किसी का इंतजार करते हैं। कुछ मासूम आवाजें मौत से नहीं, भुला दिए जाने से डरती हैं। आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर लेट नाइट हॉरर शो। जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। समंदर सारी दुनिया में।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। अभी कुछ ही पल पहले रेबेका कॉलिंस ने उस वीरान बेसमेंट में एक ऐसी आवाज सुनी जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाई। एक मासूम बच्ची जो 55 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या आप हमको अपने घर ले जाएंगी? और शायद यही सवाल यह पिछले 55 सालों से हर उस इंसान से पूछ रही थी जो उसके स्कूल के भीतर आया। रेबेका धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी गीले पैरों की छाप जो धूल से भरे फर्श पर अचानक उभर आई। 1, 2, 3, 4 वे निशान सीधे उस लोहे के दरवाजे की ओर जा रहे थे जिस पर अब भी लिखा था द शावर्स। रेबेका घुटनों के बल बैठ गई। उसने उन निशानों को छुआ, फर्श सूखा था लेकिन वे पच्चन मानो अभी अभी पानी से निकल कर बने हो। माइकल ने कांपती हुई आवाज में कहा, रेबेका चलो यहाँ से चलते हैं, अभी तुरंत। रेबेका ने उसकी ओर देखा भी नहीं, उसकी नजर बस उन छोटे छोटे पैरों के निशानों पे टिकी थी। प्रोफेसर आर्थर है धीरे धीरे दीवार के पास पहुँचे, वहाँ आग की कालिक अब भी जमी हुई थी। उन्होंने अपनी हथेली धीरे से उस दीवार पे फेरी, तभी कालिक का एक हिस्सा झड़ गया। उसके नीचे छोटे छोटे हाथों के दर्जनों निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बंद बच्चों ने आखिरी सांस तक दीवारों को पकड़कर जीने की कोशिश की है। प्रोफेसर हे की भी आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान। उसी समय डैनियल का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा। किसी ने उसे छुआ नहीं था। स्क्रीन पर गलियारा बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में स्पष्ट आवाजें आने लगी। पहले धीमी सिसकियां, फिर खांसी, फिर एक बच्चे की आवाज, एमिली, फिर दूसरा, थॉमस, छोड़ के मत जाना, यहीं रहो। रेबेका ने कैमरे का स्पीकर बढ़ाया। अब कई बच्चे एक साथ बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में डर कम था। वे लोग चिल्ला चिल्ला करके एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। अचानक एमिली की डायरी रेबेका के हाथ से अपने आप फर्श पे गिर गई और एकदम आखिरी पन्ना हवा के बिना ही धीरे धीरे पलटा। लेकिन अब इस बार उस खाली पन्ने पर शब्द उभरने लगे जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी अभी उसे लिख रहा हो। रेबेका कांपते हुए पढ़ने लगी। चारों तरफ अंधेरा है, धुआं और भी गहरा हो गया है, सैमुअल सांस नहीं ले पा रहा है, एनी रो रही है, वो अपनी मम्मी को बुला रही है, मिस्टर विल्सन ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, वो हमें लेकर के क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे देखो चारों तरफ आग पड़ रही है, हम लोग क्या करें? रेबेका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मिस्टर विल्सन पहली बार उस रात वार्डन का नाम सामने आया। प्रोफेसर हे ने धीरे से कहा, स्कूल के रिकॉर्ड में हमने मिस्टर एडवर्ड विल्सन का नाम पढ़ा था, वो ही सिर्फ इस आग में बच पाए थे। पूरा बेसमेंट एक पल के लिए और भी ठंडा हो गया। रेबेका ने फुसफुसा के पूछा, फिर उन्होंने इनको बचाया क्यों नहीं? वो आए क्यों नहीं इन 27 मासूम बच्चों की मदद के लिए? प्रोफेसर हे ने आंखें बंद कर ली क्योंकि दरवाजा गलती से बंद हो गया था और वो खुल नहीं रहा था और प्रोफेसर विल्सन को अपनी जान बचाने की ज्यादा चिंता थी। वो बिना सोचे समझे, बिना इन बच्चों को बचाए इस बिल्डिंग से बाहर भाग गए। तीनों स्तब्ध रह गए। माइकल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है? प्रोफेसर हे ने कांपते हुए आवाज में उत्तर दिया कि इस आग के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि बच्चे जब तक वो उनकी मदद के लिए पहुँचे वो मर चुके थे, सो इसलिए उन्होंने वो शावर का रूम नहीं खोला। उन्होंने बहुत कोशिश किया बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन वे नहीं बचा पाए, जो कि बिल्कुल झूठ था। अचानक बच्चों की सामूहिक सांस, जैसे किसी ने बहुत देर बाद दर्द याद किया हो। रबेका के हाथ से वो छोटी सी गुड़िया धीरे से फर्श पर गिर गई और उसी पर पहली बार बेसमेंट के उस अंधेरे कोने में एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। घुटनों तक अपनी वाली नीली नाइट ड्रेस पहने, बाहों में एक गुड़िया लिए हुए और बड़ी बड़ी सी डरी हुई आंखें, एनी कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ रबेका को ध्यान से देख रही थी। फिर बहुत धीरे से उसने अपना छोटा सा हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे एक बच्ची अब भी उम्मीद कर रही हो कि कोई इस बार उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उस पल रबेका कॉलिंस को समझ में आ गया कि वो किसी भूतिया जगह पे नहीं थी। वो एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहाँ पे 55 साल पहले सारे वादे टूट गए थे और शायद आज उसे ही वो वादा पूरा करना था। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक। आज की इस लंबी और सर्द रात में हम पहुंच चुके हैं उस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जहां डर धीरे धीरे दर्द में बदलने वाला है। अभी भी बेसमेंट में दूर से पानी की एक एक बूंद टपकने की आवाज आ रही है। रबेका अब एनी के बिल्कुल सामने खड़ी थी, छोटी सी गुड़िया अपने सीने में लगाए हुए बस एक टक रबेका को देख रही थी। उसके आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ इंतजार था। रबेका घुटनों के बल बैठ गई, धीरे से बोली, हेलो एनी, मैं रबेका हूँ। एनी ने फिर बहुत मासूमियत से पूछा, क्या आप हैं जो हमारे लिए आई हैं? हमको हमारे घर पहुंचा देंगी? रबेका का गला भर गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द आंसुओं में खो गए। प्रोफेसर थे धीरे धीरे शावर रूम के भारी लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च दीवार के उस हिस्से पे डाली जो वर्षों से कालिख से ढका हुआ था। वहाँ दमकल विभाग का एक पुराना निशान बना था। उसके नीचे एक धातु की छोटी सी प्लेट जड़ी हुई थी। उन्होंने वो धूल साफ की। उस पर लिखा था, दरवाजा खुला 6:42 पे सुबह, और आग लगी थी 2:17 पे। सुबह 6:42 पर दरवाजा खुला, यानी कि 4:25 तक वे बच्चे जिंदा थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, मदद के लिए बुला रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। पूरा बेसमेंट रो रहा था उस समय। रबेका ने एमली की डायरी अपने सीने से लगा ली और रोते रोते बोली, हमें माफ कर दो, किसी को तो मदद के लिए आना चाहिए था, किसी को यह दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसी पल गलियारे में एक एक करके 27 छोटे छोटे साए दिखाई देने लगे, और सभी बच्चे, कोई रो नहीं रहा था, कोई चीख नहीं रहा था, वे बस रबेका की ओर देख रहे थे जैसे कोई उनकी बात को पहली बार सुन रहा हो, उनके दर्द को समझ रहा हो। एनी धीरे धीरे रबेका के पास आई। उसने लूसी को रबेका की गोद में रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि मम्मी हमेशा कहती थी कि अच्छे लोग बच्चों की मदद जरूर करते हैं, वो बच्चों को कभी नहीं भूलते। रबेका की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने एनी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां हवा को ही छू सकी। प्रोफेसर हे ने बहुत धीमे से कहा, इन्हें भूत प्रेत उतारने की क्रिया की जरूरत नहीं है, इन्हें जरूरत है सिर्फ एक प्यारे से गुड बाय की। रबेका ने अपनी आंखें बंद की और एक एक बच्चे की तरफ देखा, थॉमस, एमली, सैमुअल। फिर उसने 2700 नाम धीरे धीरे सम्मान के साथ पुकारे। हर नाम के साथ एक बच्चा मुस्कुराने लगता था, जैसे दुनिया ने आखिरकार उसे फिर से पहचान लिया हो। आखिरकार रबेका ने उनकी तरफ देख के कहा, ये टाइम है अब तुम लोगों का यहाँ से जाने का। कुछ पल पूरा बेसमेंट पूर्णतः शांत रहा। फिर एनी ने अपने दोनों हाथ रबेका की ओर बढ़ाए और धीरे से कहा, क्या आप हमको याद रखेंगे? रबेका ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, हर क्रिसमस पर बच्चों, हर जाड़े में, और हर बार जब हम ये कहानी किसी को सुनाएंगे, हम तुम सबको याद रखेंगे। एनी की आंखों में अब सुकून था। उसने मुस्कुरा के कहा, फिर तो हम लोग अब अकेले नहीं हैं। कुछ ही देर में बच्चों की तेज तेज हंसने की आवाजें आने लगी, बिल्कुल शांत और बिल्कुल निश्चिंत। धीरे धीरे 2700 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे, जैसे उस रात उन्होंने आखिरी बार पकड़ा था। लेकिन इस बार वे धुएं की ओर नहीं, रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। एनी सबसे आखिर में रुकी। उसने मुड़कर रबेका को देखा, हाथ हिलाया और सब धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। बेसमेंट में पहली बार 55 सालों के बाद पूरा सन्नाटा छा गया और टप टप करता हुआ शावर हमेशा के लिए रुक गया। अगली सुबह रबेका और उसकी टीम स्कूल से बाहर निकली। उसके हाथ में एमिली की डायरी नहीं थी, लूसी भी नहीं थी, दोनों वहीं रह गई थी। लेकिन मुख्य द्वार से निकलते समय प्रोफेसर है अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, दूसरी मंजिल की एक टूटी खिड़की में 27 छोटे छोटे हाथ एक साथ हाथ हिला हिला करके उन्हें गुड बाय बोल रहे थे। और उसके बीच एनी अपने लूसी को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। इस बार उसकी मुस्कान में इंतजार नहीं था बल्कि शांति थी। प्यारे दोस्तों, कभी कभी सबसे डरावनी जगह वो नहीं होती जहाँ भूत रहते हैं, सबसे डरावनी जगह वो होती है जहाँ किसी का इंतजार बहुत लंबा हो जाए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपके एक फोन, एक मुलाकात या एक वादे का इंतजार कर रहा है, तो उसे और इंतजार मत कराइए, क्योंकि हर कहानी का अंत इतना खूबसूरत नहीं होता। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे थे अपना लेट नाइट हॉरर शो। फिर मिलेंगे एक नई रात, एक नई कहानी और एक नई दस्तक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course. मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चनाय का, क्योंकि अलीशा चनाय का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चनाय। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चनाय के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चनाय का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चनाय। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चनाय। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक्स को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चनाय के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

एलिशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था एलिशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ एलिशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो एलिशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर एलिशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन एलिशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि एलिशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों

सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद

उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चिनायत। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चिनाय था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चिनाय से मिली। मदन चिनाय ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ, दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चिनाय का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजय पथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजय पथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिकाओं को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।